特里广播电台，这次普通话节目播送到这里，谢谢大家收听，再会。

श्री राम अवतार की कई कथाओं में एक कथा आदि पुरुष मनु तथा उनकी पत्नी शत्रुपा से संबंधित है, जिन्हें प्रभु ने एक अद्भुत वरदान दिया था। हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के फलस्वरूप मनु को भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। भक्त ने भगवान से अपनी मनोकामना प्रकट करते हुए उनके चरणों में ऐसी प्रीति मांगी जैसी पिता के हृदय में पुत्र के लिए होती है। उन्हें ये वांछित वरदान मिला। वर देते हुए श्री हरि ने कहा, स्वर्ग के बहुत से सुख भोग कर कुछ काल बीत जाने पर आप अवध के राजा होंगे और तब मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। एक अन्य कथा राजा प्रताप भानु की है। उसके दो पुत्र हुए, प्रताप भानु और अरिमर्दन। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु को राज्य सौंपकर भगवत भजन के लिए वन की राह ली।

अधिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडावार्तासु, बैंकॉक नगरे थाईलैंड ओपन बैडमिंटन क्रीडा मालिकायाः पुरुष युगल वर्गीय निर्णायक द्वंद्वे अद्य भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी च इंडोनेशिया देशस्य लियो रॉली कार्नांडो डेनियल मार्थिनाभ्याम स्पर्धिष्येते। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ कोलकातायाः ईडन गार्डन्स क्रीडांगणे आयोजिते द्वंद्वे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन गुजरात टाइटन्स दलम् ऊनत्रिंशत् धावनांकैः पराजितम्। आदोपणं विजित्य गुजरात टाइटन्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। अद्यतने द्वंद्वद्वये प्रथमं धर्मशालायां अपराह्णे सार्धत्रिवादने पंजाब किंग्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन स्पर्धिष्यति। सायं सार्धसप्तवादने दिल्ल्यां दिल्ली कैपिटल्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।

0: Harap Anda telah menikmati lagu-lagu tadi. Dengan demikian selesai acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, spotlight, dan seperti yang biasa, kami mengakhiri acara dengan sari acara esok hari ini. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan, dan saran kepada kami melalui email di air.indonesia313@gmail.com. Saya ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com.
1: Namaskar, Akashwani se Samachar Prabhat ke saath, main Lavleen Nigam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
2: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येथिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि

0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई

0: पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय राय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणि हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 4 ATP चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट UG पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार NTA ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से CBSE के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। इंडिया एंड द नेदरलैंड्स एलिवेट देयर टाइज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉलोइंग टॉक्स बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज डच काउंटर पार्ट रॉब येटन। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू रीच गोथेनबर्ग टुडे ऑन अ 2-डे विजिट टू स्वीडन to hold talks with his Swedish counterpart, Ulf Kristersson. Archaeological Survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhojshala temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to reduce value-added tax on aviation turbine fuel in national capital from 25% to 7%. And in badminton, Indian duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to the level of a strategic partnership following wide-ranging discussions between Prime Minister Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. During the talks, the two leaders reviewed cooperation across sectors, including trade, defense, technology, water management, clean energy, healthcare, and education. Several agreements were also signed to deepen collaboration in priority areas. Announcing the elevation of ties to a strategic partnership, Prime Minister Modi said, "India-Netherlands ties had witnessed significant progress over the last decade," and described the Netherlands as one of India's key European partners.
4: हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच टैलेंट मोबिलिटी, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप और ज्वाइंट R&D को भी और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया नीदरलैंड पार्टनरशिप इज ब्राइटर देन एवर बिफोर।
3: Highlighting cooperation in sectors such as water management, healthcare and education, Mr. Modi said, "Democratic values, market economy and responsible behavior are part of our common approach." Calling for greater collaboration in emerging sectors, Prime Minister Modi said, "India and the Netherlands should combine Dutch expertise with India's speed and skill to expand cooperation in innovation, sustainability, investment and defense."
4: भारत और नीदरलैंड के बीच मजबूत हो रही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे बिजनेस रिलेशंस को नई प्रेरणा दे रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप भारत में अपना स्कोप, इन्वेस्टमेंट और एम्बिशन बढ़ाएंगे और आपके साथ पूरे यूरोप का इनोवेशन इकोसिस्टम भी भारत आएगा। आपका देश सदियों से नए अवसरों की खोज में आगे बढ़ता रहा। मैं आपको आश्वासन देता हूं, भारत में आपकी ये खोज सफल होगी और सार्थक भी। अब आपको भारत में और बोल्डली वेंचर करना है।
3: Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden.

0: Tribune, calling it a moment heavy with history and symbolism, writes that the Leiden University announced its decision to return the plates after an official inquiry concluded that they were taken during the Dutch colonial rule without the consent of their rightful custodians. And finally, an elephant has given birth to twin calves at the Corbett Tiger Reserve, reports Hindustan Times. Wildlife experts have described it as a rare event among elephants. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and the Netherlands elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart, Rob Jetten. Prime Minister Modi to reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden to hold talks with his Swedish counterpart, Ulf Kristersson. Archaeological survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhojshala temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to reduce value-added tax on aviation turbine fuel in national capital from 25% to 7%. And in badminton, Indian duo Satwik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के उनके हम मनसब रॉब जेटन के दरमियान बातचीत के बाद दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में बदल दिया है। वजीर आजम मोदी स्वीडन के अपने दो रोजा दौरे पर आज गोटेनबर्ग पहुंचेंगे। इस दौरान वजीर आजम स्विट्जरलैंड के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत करेंगे। महकमा आसार कदीमा ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदुओं को भोजशाला मंदिर में बिला रुकावट दाखिले की इजाजत दे दी है। हुकूमत ने चांदी की दरामद में कटौती करते हुए इसे पाबंदी वाली अशिया के जुमरे में डाल दिया है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में हवाई जहाजों के ईंधन पर वैल्यू एडिड टैक्स में कटौती करते हुए इसे 25% से घटाकर 7% कर दिया है। और बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन के फाइनल में आज सत्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया की जोड़ी से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के वजीर आजम रॉब जेटन के दरमियान हेग में वसी तर मुजाकरात के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने अपने बाहमी ताल्लुकात को एक कलीदी शराकतदारी की सतह पर ले जाने से इत्तेफाक किया है। बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, दिफा, टेक्नोलॉजी, पानी के बंदोबस्त, साफ तवानाई, हिफ्जाने सेहत और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में तआवुन का जायजा लिया।
3: हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच टैलेंट मोबिलिटी, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप और ज्वाइंट R&D को भी और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया नीदरलैंड पार्टनरशिप इज ब्राइटर देन एवर बिफोर।
2: तरजीही शोबों में वसी इश्तराक के लिए कई समझौतों पर भी दस्तखत किए गए। बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकतदारी तक ले जाने का ऐलान करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि पिछली एक दहाई में भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान ताल्लुकात में खातिरख्वाह पेशरफ्त हुई है और उन्होंने नीदरलैंड को भारत का एक कलीदी यूरोपीय शराकतदार करार दिया। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मुश्तरका जमहूरी अकदार मजबूत माशी तआवुन और अवाम से अवाम के दरमियान गहरे रिश्तों पर मबनी है।
3: हम नीदरलैंड को भारत के सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर में से मानते हैं। नीदरलैंड भारत के टॉप 5 इन्वेस्टर्स में से एक है। हमारे हिस्टोरिकल, कल्चर और पीपल टू पीपल टाइज भी बहुत गहरे हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मार्केट इकोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ये हमारी साझी सोच का हिस्सा है। हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए।
2: नीदरलैंड के वजीर आजम रॉब जेटन ने भारत के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात की अहमियत पर भी जोर दिया और माशी और कलीदी शोबों में मजबूत तआवुन की हिमायत की। وزیر اعظم نریندر مودی

0: स्वीडन के दो रोजा दौरे पर आज गोटेनबर्ग पहुंचेंगे। ये दौरा भारत और स्वीडन के दरमियान वसत पा रहे इश्तराक के लिए एक तारीखी संगे मील साबित होगा। जनाब मोदी बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेने की खातिर स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत करेंगे और बाहमी बातचीत को तिजारत को बढ़ाने के साथ साथ मसनूई जहानत, AI, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, स्टार्टअप्स, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, दिफा, खला, आबो हवा से मुतालिक कार्रवाई और अवाम के दरमियान रिश्तों और कार्रवाई माहौल दोस्त बदलाव की जानिब मुंतकली को बढ़ाने के लिए तआवुन के नए मौके तलाश किए जाएंगे। दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म सनद के लिए यूरोपियन गोलमेज कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे, जो यूरोपियन कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डर लायन के साथ एक सरकर्दा पैन यूरोपियन सरबराहों का फोरम है। ये बातचीत वजीर आजम के वसी यूरोपी दौरे के तीसरे मरहले का एक हिस्सा है और जनवरी 2026 में हुए भारत यूरोपियन आजाद तिजारती मुआहदे FTA के बाद से खित्ते का ये पहला दौरा है। ये दौरा बाहमी ताल्लुकात का जायजा लेने की गरज से तैयार किया गया है और इसका मकसद तेजी से बढ़ती हुई तब्दीलियों और पेचीदा जोग्राफियाई चैलेंजों के दौर में तआवुन का पता लगाना है। ये दौरा इक्तिसादी सरगर्मियों में तेजी के रुझान के बाद हो रहा है, जहां दो तरफा तिजारत साल 2025 में रिकॉर्ड 7.75 अमरीकी डॉलर हो गई और साल 2000 से 2025 के दरमियान भारत में स्वीडन के रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का हजम 2.825 अरब डॉलर्स रहा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: स्वीडन, जो दुनिया की सबसे ज्यादा इख्तराई मईशतों में से एक है, भारत के डिजिटल पूल के साथ कुदरती हम आहंगी तलाश कर रहा है। फिलहाल 280 से ज्यादा स्वीडिश कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, जबकि 75 भारतीय फर्म स्वीडन में कायम हो चुकी हैं। इस दौरे की एक खास बात वज़ीरे आज़म की यूरोपीय कमीशन की सदर के साथ यूरोपीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस बराए सनद से मुश्तरक तौर पर खिताब है। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन सनती इंजमाम की तरफ बढ़ते हुए एक मरकजी सुतून में तब्दील हुआ है। इन ताल्लुकात की जड़ें 2009 के दिफाई ताउन के माहदे और 2019 के जनरल सिक्योरिटी माहदे में पेवस्त हैं। मसनूई जहानत, AI और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में ताउन इस शराकतदारी की बुनियाद फराहम करता है। इसके अलावा दोनों ममालिक खलाई तहकीक में भी ताउन कर रहे हैं। स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स इसरो के वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए आला फराहम कर रहा है। आखिर में वजीर आजम का गोटेनबर्ग का दौरा तारीखी एतमाद को मुस्तकबिल के लिए तैयार अहदाफ से जोड़ता है। गोटेनबर्ग स्वीडन से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: भारत और स्वीडन के दरमियान तिजारत और अवाम से अवाम के दरमियान राब्तों की विरासत है, जो एक सदी से ज्यादा अरसे पर मुहित है और इसकी जड़ें बाहमी एहतराम, पुरअमन बका और अहिंसा के नजरिए में पेवस्त हैं। इस गहरे ताल्लुक की निशानदेही नोबेल इनाम याफ्ता रविन्द्रनाथ टैगोर के साल 1926 के स्वीडन दौरे के 100 साल मुकम्मल होने से होती है। आज ये ताल्लुकात सकाफती बुनियादों से आगे बढ़कर जामे सनती इक्तिसादी शराकतदारी में बदल रहे हैं। कीमती धातुओं पर इजाफी कस्टम ड्यूटीज आयद करने के कुछ ही दिनों बाद हुकूमत ने अब चांदी की दरामद में कटौती की है। गैर मुल्की तिजारत के डायरेक्टोरेट जनरल DGFT ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि चांदी पर सोने का पानी चढ़ी चांदी और प्लेटिनम समेत चांदी पर दरामदी पॉलिसी को फौरी तौर से आजाद से पाबंदी शुदा के जुमरे में तब्दील किया गया है। हुकूमत ने बुध के रोज कीमती धातुओं पर दरामदी ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी थी। पाबंदियां आयद किए गए जुमरे की अशिया की दरामद के लिए हुकूमत की लाइसेंस की जरूरत होती है। दिल्ली हुकूमत ने एक अहम कदम उठाते हुए कौमी दारुल हुकूमत में एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैल्यू एडिड टैक्स को 25% से घटाकर 7% करने का फैसला किया है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि यह फैसला वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से कनेक्टिविटी और माशी सरगर्मियों को मजबूत बनाने पर जोर देने से मुताबकत रखता है, जिसका मकसद शहरी हवाबाजी के शोबे को राहत फराहम करना, सियाहत और लॉजिस्टिक्स से मुतालिक सरगर्मियों को फरोग देना है। वजीर आला ने बताया कि ये रियायती शरह आइंदा 6 माह तक नाफिज रहेंगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। महकमा आसार कदीमा।

0: एएसआई ने मध्य प्रदेश के धार जिले में वाके भोजशाला कॉम्प्लेक्स इमारत में हिंदुओं को पूजा पाठ और दीगर मकासिद के लिए बिला रुकावट रसाई की इजाजत दे दी है। महकमा आसार कदीमा का ये फैसला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले के एक दिन बाद आया है, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार जिले में भोजशाला को सरस्वती देवी का मंदिर करार दिया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: महकमा आसार कदीमा के हुक्मनामे का हवाला देते हुए एक अफसर ने बताया कि भोजशाला मंदिर के अलावा संस्कृत जबान, कवायद और अदब सीखने सिखाने और तहकीक का मरकज भी रही। अफसर ने मजीद बताया कि हिंदू बिरादरी के सरस्वती देवी की पूजा और सीखने सिखाने के कदीम तरीक़ेकार से ताल्लुक़ की बिना पर उन्हें कॉम्प्लेक्स में बिला रुकावट रसाई की इजाज़त होगी। इससे पहले जुमे के रोज़ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार जिले के भोजशाला कॉम्प्लेक्स को सरस्वती देवी का मंदिर करार दिया था और कहा था कि मरकज और एएसआई इसके इंतजाम व इंसराम तय कर सकते हैं। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने 7 अप्रैल 2023 के महकमा आसार कदीमा के उस हुक्मनामे को भी कलअदम करार दिया, जिसमें मुसलमानों को हर जुमा को भोजशाला कॉम्प्लेक्स में जुमे की नमाज अदा करने की इजाज़त थी। दलाइल की समाअत कर रही बेंच ने यह भी कहा कि मुसलमान बिरादरी जो एएसआई के तहफ़ वाली 11वीं सदी की इमारत को कमाल मौला मस्जिद मानती है, वो ज़िले में मस्जिद की तामीर के लिए अलहदा ज़मीन अलाटमेंट की खातिर रियासती हुकूमत से रुजू कर सकती है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: सीबीआई ने नीट पेपर लीक केस के सिलसिले में पुणे से एक और अहम मुलजिमा को गिरफ्तार किया है। मुलजिम प्रोफेसर मनीषा मंधारे पुणे में एक कॉलेज में बॉटनी के उस्ताद हैं। सीबीआई के मुताबिक कौमी जांच एजेंसी ने इम्तिहान के अमल में एक एक्सपर्ट के तौर पर उनका तकर्रुर किया था। इससे पहले 14 मई को एक और मुलजिमा मनीषा वाघमारे को भी पुणे से गिरफ्तार किया गया था। दोनों मुलजिमान को पुणे की एक अदालत में पेश किया गया था और बाद में मजीद तफ्तीश के लिए उन्हें दिल्ली लाया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस शंपा सरकार और जस्टिस तीर्थांकर घोष की एक डिवीजन बेंच की जानिब से आरजीकर मेडिकल कॉलेज असमतदरी और कत्ल केस की समाअत की जाएगी। इससे पहले इस हफ्ते जस्टिस राजा शेखर मांथा और जस्टिस राय चट्टोपाध्याय ने ज्यादा मसरूफियत का हवाला देते हुए खुद को इस केस से अलग कर लिया था। इस केस में संजय राय जनवरी 2025 में उम्र कैद की सजा पाने वाले वाहिद मुजरिम हैं। मुतवफी डॉक्टर की वालिदैन ने कोलकाता की सियालदा अदालत में एक केस दायर किया था, जिसमें उन्होंने टीएमसी के साबिक एमएलए निर्मल घोष, संजीव मुखोपाध्याय और घोला पुलिस स्टेशन के उस वक्त के इंचार्ज की गिरफ्तारी की अपील की थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 के निफाज के जरिए भारत के चीफ जस्टिस को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 33 से 37 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कानून और इंसाफ की वजारत की तरफ से शाया करदा एक गेजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक इस ऑर्डिनेंस में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक एक्ट 1956 में तरमीम की गई है। एक मुल्क एक चुनाव बिल से मुतालिक मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी ने कल सियासी पार्टियों, कानूनी बिरादरी और सिविल सोसाइटी के साथ बेंगलुरु में वसी तर तबादला ख्याल किया। बाद में अखबार नवीसों को जानकारी देते हुए कमेटी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने बताया कि मुख्तलिफ रियासतों के अपने दौरे के दौरान मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी की तरफ से एतराजात और सिफारिशात जमा की जा रही हैं। बैडमिंटन में बैंकॉक में जारी थाईलैंड ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में आज सत्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रॉली कॉर्नेंडो और डेनियल मार्टिन से जोड़ी से होगा। इससे पहले कल सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी मलेशिया के गोजीफी और नूर इजुद्दीन को हराकर फाइनल में पहुंची है। टेनिस में आलमी नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर इटालियन ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में रोम के कैंपो सेंट्रल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। आज फाइनल में सिनर का मुकाबला कैस्पर रूट से होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया तौर पर जगह दी है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड दौरे की खबर को सफे अव्वल की शहसुर्खी बनाया है। वजीर आजम कल एम्स्टरडेम पहुंचे, जहां भारतीय बिरादरी ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। इस दौरान वजीर आजम ने कहा कि मशरक वस्ता में जंग और बढ़ती आलमी गैर यकीनी कई दहाइयों की तरक्की को उलट सकती है और बड़ी आबादी को दोबारा गुर्बत में ढकेल सकती है। रोजनामा हिन्दुस्तान एक्सप्रेस ने तमिलनाडु में وزراء میں قلمدانوں کی تقسیم سے متعلق خبر کو

0: आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। आज के इस अंक में प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की जयंती के अवसर पर आप सुन सकेंगे परिचर्चा। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री दिनेश कांडपाल।
1: नमस्कार, सभी श्रोताओं का स्वागत है इस खास परिचर्चा में। आप इस परिचर्चा को आज सुन रहे हैं और आगे भी कई बार कई मौसमों में सुनेंगे, लेकिन जिस मौसम में ये परिचर्चा रिकॉर्ड की जा रही है और जिनके लिए ये परिचर्चा रिकॉर्ड की जा रही है, उसकी शुरुआत मैं एक कविता से करना चाहूंगा। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल, गिरिका गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित इस कविता का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि इस वक्त तपती गर्मी पड़ रही है, और अगर कहीं सुमित्रानंदन पंत ने इस गर्मी का एहसास लिया होता तो अवश्य वो अपने कौसानी को याद करके इस कविता को बार बार दोहरा रहे होते जो उन्होंने ही रची थी। मेरा नाम है दिनेश कांडपाल। हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत ही प्रबुद्ध विद्वान इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ हैं श्री मदन कश्यप जी, आप वरिष्ठ कवि और समालोचक हैं।
2: नमस्कार।
1: हमारे साथ हैं श्री प्रियदर्शन जी, आप वरिष्ठ लेखक और पत्रकार हैं। और हमारे साथ हैं श्री राम किशोर उपाध्याय जी, आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं।
3: नमस्कार।
1: आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। मदन जी, जिस कविता से मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, इस तपते मौसम से आप भी अभी बाहर से स्टूडियो के अंदर आ रहे हैं, तो पंत जी की कोई कविता झलक रही थी या कोई उनकी बात याद आ रही थी?
2: प्रकृति का जो चित्रण उनके, हालांकि यह कविता उस तरह से जिस तरह से सुकुमार की बात कर रहे हैं तो इसमें सुकुमार जी कहाँ है, ध्वनि तो ये तो निराला की ध्वनि है जो सुपरिचित ध्वनि है, तो असल में ये होता है, लेकिन है तो प्रकृति ही, प्रकृति का चित्रण है, तो ये उस दृष्टि से देखिए तो आ ही रही है। असल पे एक बात अब मुझे कहनी है, सबसे पहले अगर मुझसे आपने शुरू किया है तो थोड़ी परेशानी भी हो रही है कि मैं ये कहूँ कि नहीं कहूँ। किसी भी कवि के बारे में या किसी भी रचनाकार के बारे में जब इस तरह का एक मुहावरा बना दिया जाता है, जैसे केदारनाथ सिंह बिम्बो के कवि हैं, पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, तो इसका होता क्या है कि उसकी एक खास विशिष्टता की ओर तो हमारा ध्यान चला जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं, निसंदेह है ये बात, लेकिन बहुत सारी विशेषताएं तब दब जाती है और आदमी उसी पर अपने को केंद्रित करने लगता है कि वो इस तरह के कवि हैं। इसलिए ऐसे मुहावरे से कवि को अगर व्यापक रूप में समझना है तो ऐसे मुहावरे से बचाना चाहिए। और फिर ये भी देखिए कि क्या मूल योगदान क्या था, यही कि प्रकृति का चित्रण है उनके यहाँ, बहुत सुंदर चित्रण है, तो जितना उनके यहाँ है उतना प्रसाद के यहाँ भी है, निराला के यहाँ भी है। निराला के यहाँ वो ध्वनि और ज्यादा कुछ पौरुष, हालांकि ये गलत शब्द है, पौरुष कुछ अगर कुछ अलग से होता है विशिष्ट को बना दिया जाए और कुछ अलग से स्त्री, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो ध्वनि है, फिर भी प्रकृति है और माधुरी भी है। आप गीतिका के गीतों को देखें आप तो वहां पर वो माधुर्य भी है। फिर उसी तरह से पंत जी के यहाँ भी उस तरह की ध्वनि है, परिवर्तन जैसी कविता भी है जहां पर हमें वो ध्वनि दिखाई देती। तो असल में जब हम ऐसा करते हैं तो एक पक्ष है कि हम एक खास दिशा में केंद्रित

0: के उस रचनाकार की विशेषताओं को सीमित कर देते हैं। पहली बात तो ये है। बावजूद इसके ये सही है कि वो प्रकृति का चित्रण जितना सुंदर उनके यहाँ हुआ है बहुत कम, और शुरुआती दौर में देखिए आप, वो दुर्लभ है हिंदी की जो परंपरा है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण है कि पंत वो कवि हैं, पहले कवि, अकेले पहले कवि, निराला बाद में, और प्रसाद तो और भी बाद में, क्योंकि प्रसाद अपने शुरुआती दौर में ब्रजभाषा में लिख रहे थे। प्रसाद जी ज्यादा ट्रेडिशनल थे, ट्रेडिशन को तोड़ने वाला कवि, जिसने हर युग में और हर कवि, अच्छे कवि के आने के बाद कविता का नया शिल्प तो आता है, लेकिन शिल्प ही नहीं बदला, शिल्प तो सबका है, निराला के भी है। प्रसाद कविता के स्थापत्य को बदल दिया, संरचना को। दो ही बार हिंदी 20वीं शताब्दी में कविता का स्थापत्य बदलता है, एक बार छायावाद में, उसके पहले पूरी तरह कविता परंपरागत है, भक्ति काल से लेके और आप मैथिलीशरण गुप्त तक चले आइए तो वो स्थापत्य बदलता है, और फिर नई कविता के समय। तो अब हम व्यापक में नहीं जाएंगे, लेकिन उस स्थापत्य को बदलने का श्रेय अगर किसी को है सबसे पहला तो पंत का है। पंत ने वो काम किया, और उस महत्वपूर्ण काम को लोग भूल जाते हैं हम, कि हिंदी कविता में छायावाद ने जो स्थापत्य को बदला है उसमें ज्यादा नाम निराला का इसलिए आ जाता है कि उन्होंने छंद को तोड़ा।
1: महत्वपूर्ण बात कही, और जब उनकी जयंती पर जब ये बात कर रहे हैं तो ये मदन कश्यप जी ने एक बहुत सही दिशा दी है पूरी बातचीत को।
2: बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप, मुझे लगता है मेरी राय जानना चाहते हैं।
1: जी जी,
2: जब भी हम पंत के बारे में बात करते हैं तो उनको निराला से, महादेवी से और प्रसाद से अलग करके विचार करना बहुत मुश्किल काम होता है। निछायावाद की ये जो चार बहुत प्रमुख कवि हैं, इनके बिना एक तो हिंदी कविता की बात असंभव है, और पंत के बिना छायावाद की बात असंभव है। प्रकृति के सुकुमार कवि का वास्ता मुझे लगता है असल में शायद उनके जीवन से था, उनकी कविता से कम था। मतलब निराला में जो दुर्धर्षता है या प्रसाद में जो स्वच्छंदता है, उसके मुकाबले पंत जो है
0: वो सुकुमार तो थे,
2: सुकुमार थे, तो सुकुमार कवि वहां से बने। अच्छा, दूसरा है कि उनकी कविता का सफर, जो उन्होंने कहा कि शुरुआत उन्होंने की प्रकृति से होता हुआ आध्यात्मिक चिंतन की ओर, कहीं कहीं बौद्धत्व की ओर भी जाता है। प्रकृति चित्रण में उनके जो सबसे खास बात मुझे लगती है, प्रकृति उनके यहाँ जड़ बहुत कम मिलती है, यानी वो चित्रमयता पे नहीं जाते हैं, प्रकृति लगातार उससे संवाद करते हैं। लगता है कि हर चीज, जैसे मैं उनकी कविताओं को देख रहा था तो पा रहा था कि हमेशा कुछ तरंगित होता हुआ, कुछ हिलता डुलता
1: बहता हुआ,
2: बहता हुआ। और संवाद में कुछ कविताएं उनकी लेके आया था
1: जी।
2: जैसे प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने यह गाना। अब मैं पूरी कविता नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन आप कहीं से भी उनको उठा लीजिए। एक कविता उनकी धेनुए हैं, ओ रंभाती नदियों बेसुध कहाँ भागी जाती हो, वंशी रव तुम्हारे ही भीतर है, ओ पेफेन गुच्छ लहरों की पूछ उठाए, भाव दौड़ती नदियों इस पार उस पार भी देखो, जहाँ फूलों के कूल सुनहले धान के खेत हैं, कल कल छल छल अपनी ही विरह व्यथा, प्रीति कथा कहते मत चली जाओ, सागर ही तुम्हारा सत्य नहीं, वह तो गतिमय स्रोत की तरह गतिहीन स्थिति भर है, तुम्हारा सत्य तुम्हारे भीतर है, राशि का ही अनंत अनंत नहीं, गुण का अनंत बूंद बूंद में है। तो अचानक आप पाते हैं कि संवाद तो वो कभी नहीं छोड़ते हैं, उनके यहाँ चित्र भी है प्रकृति के, वो सुंदर चित्र हैं, और वो भी कहीं मैं खोज निकालूंगा। लेकिन जहां भी आप उठाइए, काले रंग का दुकुल, माँ काले रंग का दुकुल नव मुझको बनवा दो सुंदर, जिसमें सब कुछ छिप जाता है, रहती नहीं धूली की डर। तो संवाद के बिना प्रकृति से वो कम टकराते हैं, हमेशा वो संवाद की मार्फत प्रकृति के हलचल के बीच उसको देखते हैं। तो जो गतिमयता है जीवन की, निराला के पास वर्षा के जितने गीत हैं, लगता है कि वो वर्षा को लेकर या वसंत को लेकर कई लोगों ने लिखा है।
1: और नदियों की कलकल बहती ध्वनि तो हम सब
2: सुनाती
1: है नदियां, क्योंकि नदियों का जो पानी बहरा होता है तो उसके लिए जो बिंब गढ़ा गया, जो ध्वनि चयनित की गई, वो कलकल बहती नदियां।
2: चांद उनकी एक छोटी सी कविता है, टूटी चूड़ी सा चांद, न जाने निर्जन नभ में किसकी मृदुल कलाई से गिर पड़ा, हाय दूज की चांद कौन जग से अदृश्य गोरी होगी वह। अभी बड़ी छोटी सी कविता है, लेकिन इसमें इतने बिंब हैं, और एक तरह की, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, सजीवता, वो शायद पंत को अपने समय के स्थिर बिंबों वाले दूसरे कवियों से थोड़ा अलग बनाती है। पंत को इसलिए पढ़ना भी मुश्किल होता है, शायद चारों कवियों में जिनकी बात हम बार बार कर रहे हैं, पंत को सबसे कम श्रेय मिला। वाकई उनकी टक्कर बहुत बड़े कवियों से थी, प्रसाद बहुत बड़े कवि हैं, महादेवी को हम लोग आंसू आंसू की मार्फत याद करते हैं, लेकिन महादेवी में प्रलय भी है, मोती भी है। आज जिस पर प्रलय विस्मित में लगाती चल रही नित मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला, तो मोती की हाट और चिंगारी

0: का मेला लगाने वाली कवित्री के मुकाबले पंत लेकिन जिस तरह की उपमाएं चुनते हैं, जिस तरह से प्रकृति से संवादरत रहते हैं, जिस तरह उसको देखते निहारते हैं, वो अनूठा है।
1: रामकिशोर जी,
2: मैं मदन कश्यप जी की बात से अपना सूत्र ग्रहण करता हूँ कि सुमित्रानंदन पंत जी को सिर्फ प्रकृति के सुकुमार कवि कहने तक सीमित रखना शायद उनके साथ अन्याय होगा। जैसे बायोलॉजी में कहते हैं मेटामॉर्फोसिस होता है, कायांतरण होता है, वैसे ही जो जो हम पंत जी को पढ़ते हुए जाते हैं, उनकी रचनाओं को पढ़ते हुए जाते हैं, तो हम उनका एक क्रमिक विकास देखते हैं। वो प्रकृति के चित्रण से आते हैं, फिर वो धीरे धीरे समाजवाद की भी बात करते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति प्रौढ़ होने लगता है और जीवन के यथार्थ से वो सामना करने लगता है, वैसे ही उसके अंदर परिवर्तन आने लगता है। हालांकि उन्होंने प्रकृति को बहुत सुंदर दृष्टि में देखा, उन्होंने प्रकृति को कभी कठोरता की दृष्टि से व्यक्त किया, लेकिन जीवन की कठोरता से वो मुक्त कहां हो पाए। तभी तो उन्होंने अंत में आते आते समाजवाद की भी बात करने लगे, मानववाद की भी बात करने लगे, राष्ट्रवाद की भी बात करने लगे, मार्क्सवाद की भी बात करने लगे। वो गांधी पर भी कविता लिख रहे हैं,
1: जवाहरलाल नेहरू पर भी,
2: अरविंद पर भी कविता लिख रहे हैं। वो एक ऐसे कवि हैं जिसको बहुत व्यापक रूप से हमें देखना चाहिए कि वो सिर्फ प्रकृति तक ही सीमित नहीं है, कि वो अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्वरूपों में, जैसे जैसे उनका विकास होता गया वैसे वैसे उनकी कविताओं का भी विकास होता गया। तो प्रकृति का तो जो उनका सुंदर चित्रण है, पल्लव जो उनकी बहुत ही प्रौढ़ कृति है और उसमें जो चित्रण है वो तो अद्भुत है। उसके पास जो शब्द है, जो उनके पास चित्रात्मकता है, लाक्षणिकता है, वो अद्भुत है, वो दूसरे में नहीं मिलती। और इसी जैसे निरालाकार उनके साथ विवाद ही भी इसी बात पर हुआ कि प्रांजलता की जो बात करते थे वो पंत जी करते थे। वो प्रांजलता की एक विवाद भी हुआ उनका और उन्होंने उस पर लिखा भी, और उन्होंने अबेओ गुलाब जो है, निराला ने उस पर ही लिखा, अबेओ गुलाब जो है वो सुमित्रा नंदन पंत को अप्रत्यक्ष रूप से संबोधित करते हुए कहा।
1: लेकिन एक चीज जो मुझे कहनी भी चाहिए, क्योंकि उनका परिचय भी बीच बीच में थोड़ा सा आता रहे, जब सुकुमार कवि की हमने बात की और आपने इसको इतना बड़े पैमाने पर इसको खींचा, उत्तराखंड की उस जगह पे उनका जन्म, कौसानी के किसी भी हिस्से में आपका घर हो तो आप सुबह उठते हुए त्रिशूल की चोटी देखते हैं हिमालय की, और आपके सामने जो सूर्योदय होता है वो स्वर्णिम हिमालय दिखता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कौसानी है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। 7 वर्ष की आयु तक वो उत्तराखंड के उस
3: हिमालय
1: में, उसके बाद वो अल्मोड़ा आ गए, वहां पर भी उन्होंने हिमालय देखा। माता जी कमोवेश जन्म के वक्त ही चल बसी, तो ये एक ट्रॉमा भी रहा जीवन में, एक कमी तो कहीं ना कहीं खड़ी होगी। तो मदन जी, क्या किसी व्यक्ति के जीवन का एक ट्रॉमा उन्हें प्रकृति के इतने करीब ले गया कि उन्होंने जब अपने बिंब चुने तो उन्हें प्रकृति अपनी माँ के रूप में दिखाई दी, या वही अपनी जो पहली चेतना माँ से मिलती है वो उन्हें वहां से मिलती हुई दिखी?
3: बिल्कुल है। देखिए, होता क्या है कि इस हद तक प्रकृति जहां सुंदर हो कि जिसके आकर्षण से नहीं बचा जा सकता है, तो बहुत सारी चीजें आती हैं स्वाभाविक रूप से। एक संवेदनशील कवि तो लाता है, तो जहां के वो थे और वहां के जितने कवि अच्छे आए हैं पहाड़ से, वहां से लेके मंगलेश डबराल तक, सबने उस प्रकृति को अलग से देखा है। और कई चीजें हैं, जैसे मंगलेश जी की एक जो कविता है वसंत, जिसमें वो कहते हैं कि मुसाफिर की तरह गुजरता चला जाएगा अंधकार। यह अच्छा बिंब था, लेकिन इसको मैं ठीक से समझता नहीं था कि यह कैसे होता है। जब मैंने बारिश के मौसम में नैनीताल को देखा और बादल जब पहाड़ी से गुजरता है तो लगता है कि अंधकार जो है वो एक
1: आ रहा है,
3: हाँ, अंधकार जा रहा है, उसकी छाया, बादल की छाया। तो वह जो दृश्य है, अनूठा दृश्य वहां पर बनता है, उस अनूठे दृश्य को सबसे पहले शब्दबद्ध करने का काम पंत जी ने शुरू किया, उसके पहले कोई ऐसा कवि नहीं है। बाद में बहुत सारे कवि आए हैं वहां भी। तो एक तो ये बात थी, दूसरी बात यह है कि गतिशीलता की बात बहुत अच्छी कही हमारे मित्र
1: प्रियदर्शन,
3: तो प्रियदर्शन जी ने, लेकिन उसमें एक और चीज देखिएगा कि छायावाद का जो एक सूत्र बना कि प्रकृति का मानवीकरण, यानी प्रकृति का ऐसा रूप जो मनुष्य जैसा हो, तो यह फॉर्मुलेशन जो बना है ये भी पंत के कारण बना है। वो बाद में और कवियों में भी है, निराला में भी है, जूही की कली जो कविता है वो पूरी तरह से स्त्री पर लगता है लिखी हुई कविता है। लेकिन शुरुआत मैं ऐसे पे ही कह रहा था कि ये जो नया बन रहा था सब कुछ, भाषा नई बन रही थी, संवेदना की एक नई बनावट थी, प्रकृति को, जीवन को देखने का एक नया नजरिया था, ये सब कुछ नया नया था। जो परंपरागत हिंदी कविता है सरापा से लेके मैथिली शरणगुप्त तक, जो पूरी परंपरा है हमारी कई भाषाओं और कई काल की, उससे बिल्कुल अलग। इसी को मैं कहता हूँ कि कविता का स्थापत्य बदल रहा था, सिर्फ शिल्प नहीं बदल रहा था। तो ये काम पंत ने वहां से शुरू किया था। तो प्रकृति को भी मनुष्य के रूप में देखना, जीवन के रूप में देखना, हाँ ये बात जरूर थी कि मनुष्य के रूप में जब निराला देखते हैं तो ताकतवर मनुष्य दिखाई देता है, संघर्षशील मनुष्य दिखाई देता है। पंत जी के यहाँ थोड़ा कोमल, थोड़ा संकुचित, कुछ अलग तरह का है, ये भी है। लेकिन आप किसी भी दृष्टि से शुरुआती 3 संग्रहों तक जब देखेंगे, तो पल्लव वीणा वगैरह तक पंत को पढ़ेंगे, तो पंत किसी भी दृष्टि से कमतर नहीं, किसी भी बड़े कवि यानी निराला से कहीं पीछे नहीं। उसके बाद जो एक विकास की यात्रा निराला की शुरू होती है वो बिल्कुल विकासमान है, बहुत दूसरी तरफ चली जाती है। और पंत जी ग्राम्या वगैरह में आते हुए गाँव के

0: जीवन का जब लिखने लगते हैं तो वहां उनकी कविताएं थोड़ा यांत्रिक थोड़ा दबती है अलग, और वहां से लेके जब वो अरविंद दर्शन में जाते हैं तब, और फिर अंत में जब महाकाव्य जो लिखा उन्होंने, तो वहां तक आते आते चीजें अलग तरह की हुई हैं, उस पर बात होती रहती है, और वहां तक आते आते निराला बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं। लेकिन शुरुआती दशक में निराला और प्रसाद दोनों से बड़े कवि, और सबसे पहले भाषा की संरचना को, नए शिल्प रचने की प्रवृत्ति को, सब चीज को विकसित करने का काम पंत ने किया। तो पंत की है जो अग्रगामी भूमिका है, एक समय के परिवेश को बदल देने की भूमिका है, वो बहुत बड़ी है। इस रूप में उनका रेखांकन नहीं किया।
1: मुझे लगता है प्रियदर्शन जी को अच्छी कविता खोज के
2: नहीं, क्योंकि बात हो रही थी पंत जी के आगे के दौर की, जिसमें उन्होंने नेहरू पे कविता लिखी, तिलक पे लिखी, महात्मा गांधी पे लिखी। बल्कि मैंने पाया ये कि निराला की वो कविताएं तो बड़ी चर्चित हुई, जैसे वह तोड़ती पत्थर और ये सब, पंत जी ने जिन समुदायों का नाम लेना वर्जित है उन अनुसूचित जातियों पे कविताएं लिखी हैं। लेकिन इसमें एक प्रयत्न दिखता है, वो जो उनकी सहजता, जो नैसर्गिक गति उनकी है, वो पुरानी प्राकृतिक कविताओं में ही दिखती है। जैसे बहुत अच्छी कविता है बापू के प्रति, मुझे लगा कि हम लोग बापू स्टूडियो में बैठे हैं। हाँ, और सब तरफ बापू की तस्वीरें भी हैं। तो कविता तो बहुत लंबी है, लेकिन तुम मानसहीन, तुम रक्तहीन, अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। ये लंबी कविता है, तिलक पे कविता है, विवेकानंद पे कविता है। तो लगता है कि अपने समय के मूर्धन्यों पे, जिन व्यक्तित्वों ने भारत की राष्ट्रीयता का निर्माण किया, उन सब पे पंत लिख रहे हैं। कई बार वो प्रयोग भी करते हैं
0: दायित्व की तरह,
2: यानी गुलाब को लेकर अगर निराला ने लिखा तो पंत ने तो कहा कि ताज का, मृत्यु का ऐसा पूजन हम क्यों करें। और वो कविता मुझे तो थोड़ी विस्मय में डालती है, क्योंकि ताज को मुझे याद है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो कहा था कि काल के कपोल पे आंसू की बूंद है, और साहिर ने उसका दूसरे ढंग से कहा था कि एक शहंशाह ने हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। पंत इसको क्या देखते हैं, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, स्फटित सौध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न क्षुधातुर वास विहीन रहे जीवित जन, मानव ऐसे भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रती, प्रेम अर्चना यही करें हम मरण को वरण, स्थापित कर कंकाल करें जीवन का प्रांगण, और विलवशव को दे रूप रंग आदर मानव का, मानव को हम कुत्सित चित्र बना दे शव का। ताजमहल को लेकर किस मिजाज में उन्होंने ये कविता लिखी होगी, यहाँ वो सिकुमार नहीं बिल्कुल एक तरह के कि आक्रामक वैचारिक मुद्रा में दिखाई पड़ते हैं,
0: कठोर कवि,
2: बहुत कठोर दिखाई पड़ते हैं। तो शायद अपने आप को बदलने की कोशिश है, शायद कुछ नए चिंतन की कोशिश है, जो कई बार विफल भी रहती है। विफलता कोई ऐसी चीज है जिस पर किसी को शर्मिंदा होना चाहिए, विफलता से ही सफलता का रास्ता बनता है। लेकिन जहां पंत अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई पड़ते हैं, वो वही हिस्सा है जिसको आप बताते हैं कि वो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। वहां प्रकृति से लगातार बतियाती उनकी कविताएं, और प्रकृति के मानवीकरण की जो बात मैं भूल गया था उन्होंने ठीक याद दिलाई। तो उस छायावादी कविता का चरम पंत के यहाँ मिलता है।
1: थोड़ा मैं आपके इस बात पे भी दृष्टि चाहूंगा, रामकिशोर जी आपसे चाहूंगा कि आप इस बात की शुरुआत करें कि भाषा और शिल्प की जब हम बात करते हैं, तो आज जब हम इंग्लिश के दौर में गुजर रहे हैं, जैसा कि मदन जी ने कहा कि साहसिक कार्य उन्होंने किया वहां पे, खड़ी बोली से फिर हिंदी की तरफ आने का जो साहस था, तो उसे फिर हम अब आज थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि इसे आप आज वर्तमान समाज के हिसाब से जरा समझाएं कि उनकी भाषा आज कितनी अब प्रासंगिक रह गई है और क्या क्रांति थी वो।
3: देखिए, पंत का जब जन्म हुआ तो हम लोग औपनिवेशिक काल में जी रहे थे, और द्वितीय युग के बाद ये कार्य शुरू हुआ, रोमांटिसिज्म की जिसको बात करते हैं, स्वच्छंदतावाद की बात करते हैं, उस समय का एक काल आया। और उस समय जो हिंदी लिखी जा रही थी, या उस समय जैसे कि अक्सर कहा भी जाता है कि शुरू में रविन्द्रनाथ टैगोर का उन पर प्रभाव रहा, और वो अंग्रेजी कवियों से भी प्रभावित हुए, शैली या कीट्स से तो वो ज्यादा प्रभावित रहे, और उस समय के वो उनके पूर्ववर्ती थे, तो उनकी कई रचनाओं पर आरोप भी लगता है,
2: शैली
3: की छाया दिखाई पड़ी,
0: पूरी एक किताब ही निराला ने लिख दी।
3: हाँ,
0: पंथ और पल्लव,
3: तो उनकी जो एक टिंटर्न एबे जो है, टिंटर्न एबे वो, और अगर आप नौका विहार को आप अध्ययन करते हो, उसमें वही आध्यात्मिकता, वही रहस्यवाद आपको उसमें देखने को मिलता है। तो हर काल की अपनी एक आवश्यकताएं होती है, हर काल की परिस्थितियां बदलती हैं, तो उस समय जब हम लोग विकास के क्रम में थे तो जैसी आवश्यकताएं

0: अनुसार कविता होनी चाहिए। और कविता वही है कि जो सरल भाषा में पाठक के हृदय तक पहुंच जाए। किसी भी साहित्य को पढ़ने के लिए अगर पाठक को शब्दकोश उठाना पड़े, उसका अर्थ ढूंढना पड़े, तो मैं समझता हूँ कि कविता का प्रवाह कहीं ना कहीं अवरुद्ध होता है, क्योंकि वो सहज मन में नहीं जाती। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविता है एक बूंद, अब एक बूंद कविता को पढ़े तो आप उसको आत्मसात कर सकते हो कि जो निकल कर बादलों की गोद से एक बूंद थी आगे बढ़ी, तो बहुत प्रभावी रचना है, लेकिन उनमें कोई ऐसा प्रांजलता का कोई उसमें आग्रह नहीं है। तो आप एक आम पाठक भी उस कविता को पढ़ करके अपने जीवन में ग्रहण कर सकता है कि जीवन में चुनौतियां आती हैं, और जब वो अपने घर को छोड़ता है या जब किसी नए कार्य को करता है तो उसमें कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को सोच करके व्यक्ति पढ़ना छोड़ दे। लेकिन जहां तक इंग्लिश वाली बात जो है, उस बात को भी हम नकार नहीं सकते कि वो आज ऐसा हो रहा है, लेकिन इंग्लिश लिखना वो मैं समझता हूँ हिंदी के लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात ये होगी अगर हम अपनी हिंदी में हम भारतीय भाषाओं के शब्दों का प्रयोग अधिक बढ़ाएं अंग्रेजी भाषा के बजाय, तो हमारे उससे जो है ना राष्ट्रीय एकीकरण में, राष्ट्रीयता की भावना में भी विकास होगा। लेकिन अंग्रेजी तो इस मामले में रुकती नहीं, अंग्रेजी तो और दूसरी भाषाओं के शब्द भी बाकायदा ग्रहण करती है, हर वर्ष वो अपने नए शब्दों का स्वीकार करती है।
1: भाषा पे आपको जोड़ना चाह रहे हैं मदन जी?
2: देख, भाषा तो निरंतर विकसित होती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, और हमेशा वो आगे ही जाती है। और जो पुराणपंथी लोग होते हैं उनको हमेशा लगता है कि भाषा का पतन हो रहा है। जब प्रसाद निराला लिख रहे थे तब भी उनके पूर्ववर्तियों को लग रहा था कि ये कविता का भी पतन है, भाषा का भी पतन है। तो पीछे के लोगों को हमेशा लगता है, होता है कि अपने समय में भाषा सामाजिक जीवन और उसकी संवेदना से कितनी जुड़ी हुई है, यही महत्वपूर्ण होता है। तुलसीदास की भाषा आज की भाषा कहाँ से है, कौन समझता है? एक अवध में छोड़ दीजिए तो, लेकिन पूरे हिंदी प्रदेश में तुलसीदास पढ़े भी जाते हैं, समझे जाते हैं, सम्मानित हैं। उनकी भाषा तो है नहीं, हमारी समझ के बाहर की वाली भाषा है वो, फिर भी अपने समय में वह भाषा अपने समाज से गहरे जुड़ी हुई थी। आप देखिएगा कि पंत का जो प्रारंभिक लेखन है, प्रारंभिक जिन कविताओं की हमने चर्चा की है, वो कविताएं अपने समय से वो जुड़ती है और समाज में संवेदना की नई बनावट का उद्घाटन करती है, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। लेकिन बाद में दिक्कतें पैदा होने लगी थी, जैसा कि हमारे प्रियदर्शन जी ने बताया कि बाद में बहुत बार ये लगता है कि प्रयत्निक है मामला, बहुत कुछ प्रयत्न करके वो लिख रहे हैं, इसमें ऐसा लगने लगता है, तो ये एक अलग चीज हो जाती है। इसलिए लेकिन जब पंत पर हम बात करते हैं तो हमें प्रारंभिक पंत और उनका जो मौलिक योगदान है उसी पर बात करनी चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। ऐसा कई बार हुआ है विदेश में, वर्ड्सवर्थ के साथ हुआ है, उन्होंने 30 वर्ष तक जो कविताएं लिखी वही महान कविताएं थी, उसके बाद भी तो लिख रहे थे, उनको कोई अकाउंट्स में नहीं रखता। तो बाद का जब आप रखेंगे ना, लोकायत को जब आप रखेंगे, तो लोकायत में तो छंद भी लगता है कि बहुत कोशिश करके बना रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या वहां यही है कि वो लग रहा है कि कविता कोशिश करके बनाई जा रही है, जहां निराला में बिल्कुल नहीं लगता है राम की शक्ति पूजा में कि कोशिश कर रहे हैं, वो एक प्रवाह है, एक उद्यम, तो वो बाद की चीजें हैं। इन चीजों को भूलकर मैं ये मानता हूं कि पंत को हमें इसीलिए याद रखना चाहिए कि पंत ने हिंदी की कविता के पूरे स्थापत्य को, हिंदी समाज की संवेदना की नई बनावट को समझते हुए बदलने का प्रयत्न किया, और ये एक ऐतिहासिक कोशिश थी। उसके बाद ही वो निराला है, उसके बाद ही प्रसाद है, दोनों उनसे बड़े कवि हैं टोटलिटी में, लेकिन वो शुरू करने वाले वही हैं।
1: जिस हिमालय की गोद में सुमित्रानंदन पंत पैदा हुए, इतना विशाल है कि उनके बारे में चर्चा करना भी के लिए बहुत समय चाहिए, लेकिन प्रदर्शन जी मैं चाहूंगा कि आप इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं तो संक्षिप्त।
3: देखिए, भाषा को लेकर उनकी एक कविता है, वाणी वाणी मेरी तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये शायद बाद की उनकी कविता है, जब उनको लगता है कि वाणी को आभरण मुक्त होना चाहिए, अलंकार मुक्त होना चाहिए। क्योंकि भाषा पे हमने बात की तो जो मदन जी ने कहा वही ठीक है कि बिल्कुल सहज होनी चाहिए। शुद्धतावाद तो भाषाओं का शत्रु होता है, वो जान ले लेता है भाषाओं की, और भाषाओं में सिर्फ भारतीय भाषाओं की नहीं, अंग्रेजी के भी कई ऐसे शब्द है जो इतने सहज हिंदी में हो गए हैं। साइकिल अंग्रेजी का शब्द है, उसका अर्थ बदल गया है। अंग्रेजी में साइकिल का अर्थ चक्र है, हमारे यहाँ वो बाइसिकल के अर्थ में साइकिल है। और कई कविता संग्रहों के नाम, केदार जी के संग्रह का नाम साइकिल है, वो साइकिल से जुड़ता है, टॉलस्टॉय साइकिल, नीलेश रघुवंशी के उपन्यास का नाम है साइकिल।
2: ऐसे बहुत सारे शब्द आ गए,
3: बहुत सारे शब्द शमशेर के यहाँ आपको बहुत सारे अंग्रेजी शब्द मिलेंगे, मुक्ति बोध भी मिलेंगे, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। तो कई शब्द ऐसे होते हैं जो आपकी भाषा में घुल मिल जाते हैं और भाषा उससे खिल जाती है। पंत ने जो काम किया, हालांकि हम छायावाद की समूची भाषा के बारे में बात कर सकते हैं, कि जो स्वच्छंदता हिंदी को दी, हिंदी के सौष्ठव को लेकर उसके पहले थोड़ा संदेह था, लेकिन एक अलग तरह की उदात्तता, एक अलग तरह की विराटता, एक अलग सी प्रांजलता छायावाद ने और पंत ने हिंदी कविता को दी, जहां तक आज भी पहुंचना बहुत मुश्किल काम है।
1: इन रंभाती नदियों के विचार

0: प्रवाह को रोकने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नदियों का जल वाष्पित हो के वो बादल बने और बादल बन के बरसे। तो इन पंक्तियों के साथ पहले मैं आप सबका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और श्रोताओं के लिए इन पंक्तियों के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छम छम छम गिरती बूंदे तरुओं से छन के, चम चम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, ऐसे पागल बादल बरसे नहीं धरा पर, जल फुहार बौछारें धारें गिरती झरझर, आंधी हर हर करती दल मरमर तरु चर चर, दिन रजनी और पाख बिना तारे शशि दिनकर। नमस्कार,
1: नमस्कार आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: प्रगति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत, अभी आप इस विषय पर परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे वरिष्ठ कवि और आलोचक श्री मदन कश्यप, वरिष्ठ साहित्यकार श्री राम किशोर उपाध्याय, वरिष्ठ लेखक और पत्रकार श्री प्रियदर्शन। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्री दिनेश कांडपाल। और आइए अब सुनते हैं सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियाँ। प्रस्तुत कर रही हैं युवा पत्रकार श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव।
3: रविवार दिनांक 10 मई को प्रतिष्ठित संस्था साहित्य उपवन रचनाकार के तत्वाधान में एक ऐतिहासिक साहित्यिक आयोजन किया गया। इस अवसर पर कवि डॉक्टर आर डी गौतम विनम्र द्वारा रचित कृति शब्दों की विनम्रता का भव्य विमोचन देश प्रदेश के ख्याति लब्ध रचनाकारों और सैकड़ों सुधीजनों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय कवि डॉक्टर राकेश सक्सेना ने की। विमोचित कृति शब्दों की विनम्रता पर चर्चा करते हुए वक्ताओं ने इसे साहित्य जगत के लिए एक अनमोल थाती बताया। कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री नवीन कुमार, श्री सुरेंद्र कुमार श्रोत्री एवं श्री किशन लाल भारती का विशेष योगदान रहा। समारोह के समापन पर संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर रोहित रोज एवं डॉक्टर आर डी गौतम विनम्र ने सभी साहित्य प्रेमियों का हृदय से आभार व्यक्त किया। दिनांक 11 मई शिलोंग साहित्य महोत्सव का दिल्ली में पूर्वाभ्यास किया गया। मेघालय सरकार द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम बीकानेर हाउस में जारी रहा, जिसमें पूर्वोत्तर की संस्कृति साहित्य और स्वदेशी परंपराओं पर विशेष ध्यान दिया गया। दिनांक 12 मई मंगलवार को दिल्ली के हिंदी भवन में वैश्विक हिंदी परिवार की साहित्यिक गतिविधियों के संबंध में विशिष्ट कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वैश्विक हिंदी परिवार एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के संयुक्त तत्वाधान में डायस्पोरा से संवाद कार्यक्रम श्री सुभाष शर्मा के साथ आयोजित किया गया। भारत की प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था साहित्य अकादमी ने 14 मई को वर्ष 2026 के लिए अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की। ये पुरस्कार 24 भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों को प्रदान किए जाते हैं, जिसमें उपन्यास, कविता संग्रह, लघु कथाएं और आलोचना शामिल हैं। इस वर्ष युवा और क्षेत्रीय लेखकों को मान्यता मिली है, जो भारतीय साहित्य की बढ़ती विविधता और समृद्धि को दर्शाता है। पुरस्कार समारोह दिसंबर 2026 में आयोजित किया जाएगा। साहित्य अकादमी में दिनांक 14 मई बहुभाषी कवि सम्मेलन और बाल साहित्य से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह कार्यक्रम साहित्य अकादमी, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में आयोजित किया गया। इन बहुभाषी सम्मेलनों में विभिन्न भाषाओं के कवि अपनी मातृभाषा में कविता पाठ करते हैं। इस सत्र में कुल 12 भारतीय भाषाओं में काव्य रचना प्रस्तुत की गई। सांस्कृतिक संगम के इस अवसर पर अनेक साहित्यकारों ने भाग लिया। ऐसे आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर कवियों की प्रतिभा को मंच देने के लिए किए जाते हैं। दिनांक 15 मई को दिल्ली के मंडी हाउस स्थित रवींद्र भवन में मुख्य रूप से संगीत नाटक अकादमी का विशेष सत्र रवींद्र प्रणति आयोजित किया जा रहा है। यह सत्र गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की साहित्यिक, सांगीतिक एवं सांस्कृतिक विरासत को समर्पित है, जिसमें पुस्तक लोकार्पण और व्याख्यान भी शामिल किए गए हैं। दिनांक 16 मई को ढाई आकर साहित्योत्सव का आयोजन किया गया। यह दिल्ली में हिंदी भवन सहित अन्य संस्थानों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित महत्वपूर्ण साहित्य उत्सव है। यह 16 मई 2026 में होने वाला एक प्रमुख साहित्यिक संगम है। यह कार्यक्रम विरासत से भविष्य तक की थीम पर आधारित है, जिसमें साहित्य, कविता और सांस्कृतिक संवाद शामिल है।
2: अभी आप सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रही थी युवा पत्रकार श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
4: हमारे अतिथि कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। सूरज हूँ चमकते हुए मंजर की तरह हूँ, सूरज हूँ चमकते हुए मंजर की तरह हूँ, माथे पे जमाने के मुकद्दर की तरह हूँ। नमस्कार सभी का स्वागत, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त काजल। और आज हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत हैं, उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रोफेसर रह चुकी हैं। तहे दिल से आपका इस्तकबाल करना चाहूंगी, आपको खुशामदीद कहना चाहूंगी। प्रोफेसर विदुषी रीता गांगुली जी आज हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत।
5: सामान की खिदमत में मैं रीता गांगुली आदाब पेश करना चाहती हूं, और बहुत खुशी होती है जब भी आकाशवाणी मुझे बुलाती कोई भी खिदमत के लिए, क्योंकि मैं आज जो भी हूं आकाशवाणी के लिए हूं। मैं बचपन से अचानक गाने लगी, नाचने लगी, पेंटिंग करने लगी, और आकाशवाणी लखनऊ के उन्होंने हमको ढूंढ के निकाला। तब तो कुछ नहीं, मेरे पहला यानी जिंदगी में पहली जो कमाई मेरी हुई
4: जी,
5: वो 5 रुपए।
4: क्या बात,
5: एक चेक। लेकिन तब 5 रुपए बहुत होते थे
4: जी।
5: ओहो, मैं भूल नहीं सकती हूँ, सबको हमने आइसक्रीम खिलाया। आई वाज वेरी प्राउड। ऑल इंडिया रेडियो में मेरी जो भी ग्रेजुएशन हुई, घुसी थी बी होकर, उसका बी हाई हुई, उसके बाद ए हुई, फिर ए प्लस हुई, उसके बाद टॉप ग्रेड हुई, ये सब न मैं जानती हूँ किसने दे दिया, मैं भूल नहीं सकती। ये एक महकमा है जिसको मैं सल्यूट करती हूँ।
4: मैम, आपने अपना सफर जब शुरू किया कला के क्षेत्र में, तो किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? फैमिली का कितना सपोर्ट रहा?
5: देखिए, फैमिली ऑर्थोडॉक्स थी या खराब थी ऐसे नहीं
4: जी।
5: बात ये है कि हमने एक्सीडेंटली कहीं पर, हमारे शहर के बड़े बड़े लोग सब मिलके एक थिएटर कर रहे थे
4: जी,
5: कुछ रिलीफ फंड के लिए
4: जी।
5: मिसेस टैगोर आई हुई थी, रविंद्रनाथ की पुत्रवधू, और 3 महीने रह के मेहनत करी सबको लेके। उसमें मेरी माँ भी बहुत खूबसूरत थी, वो उनको एक रोल मिला हुआ था, वो भी हमको भी तैयार ऐसे करके लेके गई और खुद मेकअप रूम में चली गई, और जो स्क्रीन के इंचार्ज था उसको दे दिया, भाई बहुत नटखट है
4: जी।
5: 2 साल 4 महीने 5 महीने की थी मैं
4: जी,
5: बहुत हाथ मत छोड़ना। पर नहीं नहीं, क्यों छोड़ेंगे, जब चाहे स्क्रीन खोलना है और बंद करना और क्या
4: जी।
5: तो पहला आइटम हो गया। दूसरा आइटम के वक्त वो बहुत बड़ी बात है, वो मैहर बैंड का प्रोग्राम था। मैहर बैंड मतलब तब बाबा अलाउद्दीन कंडक्ट कर रहे हैं, अली अकबर, रविशंकर
4: जी,
5: निखिल बनर्जी नहीं थे तब, शरण रानी बाकरीवाल, तिमिर वरन, ऑल द टॉप परफॉर्मर्स, पन्नालाल घोष, ये सब बजा रहे थे। अचानक वो स्क्रीन नहीं खुला, तो उसको जाना ही था ठीक करने के लिए। उस जमाने ऑटोमेटिक स्क्रीन नहीं होता कि बटन दबाया खुल गया
4: जी जी।
5: तो वो कहे हमको लेके गए, उन्होंने कहा था छोड़ेंगे नहीं, तो कहीं भाग जाएंगे, खो जाएंगे, हमको ले गए। फिर दोनों हाथ इस्तेमाल करना, नहीं तो खुलता नहीं था
4: जी।
5: वो दोनों हाथ इस्तेमाल करके साइड में गए, मैं बीच में ही रुक गई थी, बहुत आदाब से मैं नमस्कार करके खड़ी थी, और दोनों विंक से सब लोग बहुत गुस्सा करने लगे, कोई लॉलीपॉप दिखा रहा है, कोई चॉकलेट दिखा रहा है। मैं हिलने वाली नहीं हूँ, मैंने जब तक चला ऑर्केस्ट्रा मैं नाचती रही। उस जमाने में टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, पायनियर, ये अखबार होते थे
4: जी,
5: तो उसके फ्रंट पेज में मेरी तस्वीर थी और मिसेस टैगोर क्रिएट्स वंडर बाय ट्रेनिंग अ 2-year-old चाइल्ड, हमको वो नशा लग गया। उस प्रोग्राम में सरोजिनी नायडू आई हुई थी क्योंकि वो फंड रिलीफ का था, तो जो भी रेज हुआ वो फंड रिलीफ के लिए किसी को दिया उन्होंने, इसलिए उनको बुलाया गया। अब उन्होंने जो मुझे देखा, वो तो जहाँ जाती थी हमें ले जाती थी। मैंने कहा वो जो बहुत बुजुर्ग आदमी है वही बजाएंगे तो होगा, नहीं तो नहीं नाचूंगी। अब वो इतनी बड़ी स्टेट्समैन, वो किसी को बुलाए ना कैसे करे वो। तो उसके बाद मैं काफी दिन नाचती रही बेबी गीता, कुछ जानती वानती थी नहीं, सीखा उखा कुछ नहीं
6: जी।
5: कोई छोटी सी लड़की हो, लंबे लंबे बाल हो, बड़े आंख हो, तो उसको अच्छे ही लगता, लोग छोटी बच्ची नाच से ही फुदक रही है। लेकिन जब मैं 5-6 साल की हो गई, मेरे पिताजी ने बुलाया, कहे बेटा बहुत हो गई
6: जी,
5: तुम पढ़ो क्योंकि यही काम है
6: जी,
5: तुम विद्या दान करो, उसके लिए तुमको खुद पहले विद्वान होना, विदुषी होना पड़ेगा।
6: बिल्कुल,
5: पढ़ो तुम। तो मैंने कहा ठीक है, अब जो कह रहे ठीक है, डांस तो नहीं छोड़ूंगी मैं। तो थोड़ी जिद्दी थी बचपन में से, मेरे माँ ने कहा कि काय को उसके पीछे बोले, छोड़िए अपने आप छोड़ दिए खराब। पिताजी ने कहा अच्छा चलो शर्त लगाते हैं, जिस दिन तुम सेकेंड हो जाओगी उस दिन खुद ब खुद छोड़ दो। फिर उन्होंने सोचा कि हम बड़े होंगे सब टाइम पे फर्स्ट रहेंगे, कोई जरूरी नहीं, हम भी सेकंड नहीं आए, और उन्होंने भी छोड़ने के लिए नहीं बोला। पढ़ाई में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, जिस वक्त बच्चे खेलते कूदते हैं उस वक्त मैं बहुत सिंसियरली वेरी कन्विक्शन के साथ मैं पढ़ती थी।
6: कला अपने आप में एक साधना है और पढ़ाई जो तालीम है वो भी अपने आप में एक साधना, और आप दोनों को साथ लेकर चली और दोनों पे में आप टॉप पे रही हैं। ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आने वाली जो जनरेशन है या जो जनरेशन हमें इस वक्त सुन रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है।
5: शांति निकेतन में हमारा दाखिला हुआ
6: जी,
5: बहुत छोटी उम्र में थे, इसलिए हमारी शर्त ये रखी गई कि हम नाच भी सीखेंगे, एक गाना भी सीखेंगे, उसके अलावा ग्रेजुएशन करेंगे
6: जी।
5: इस तरह से हमारी गाना भी शुरू।
6: ये जानना चाहूंगी कि मौसीकी की पहली तालीम ध्रुपद से आपने शुरू की, तो जी, क्या कहेंगे इस बारे में आप?
5: उसकी वजह ये थी कि पिताजी ने मेरी बड़ी बहन जो अपने भी बहुत मशहूर बंगाल की लता मंगेशकर कहा जाता है, उनके लिए पिताजी ने घराने के तानसेन जी हैं
6: जी,
5: गौड़ी घराने का उसका गोपेश्वर बंदोपाध्याय, घर बुला के रख, और उन्होंने हमको तालीम दी। हमको भी तालीम लेने के लिए कहा गया
6: जी,
5: हमको तो बहुत बोरिंग लगती थी, तो लेकिन बैठना पड़ता था। बहरहाल इस तरह से हमारा शुरुआत तो गोपेश्वर बंदोपाध्याय से तालीम मिली। फर्क सिर्फ ये है जो नींव है हम लोगों की परफॉर्मिंग आर्ट की, उसके नींव रहा भक्ति और प्रेम, रोमांस, वो रोमांस खो गया है, वो इश्क का इंटरप्रिटेशन बदल गया है, क्योंकि ये विरह था जो बेस था हमारे गाने का। जैसे बाबा फरीद ने कहा बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, जिस तन बिरहा न उपजे वो तन जान वसान, यानी बिरह अगर है तो उसको सजो के भी रखना पड़ता है। खूबसूरत चीजें हैं, भावनाएं हैं, समझ है, उसको सजो के रखना पड़ता है ताकि वक्त आने से उसको आप इस्तेमाल कर सकें
6: जी।
5: यही इमोशनल मेमोरी करके बाद में स्ट्रावस्की ने थिएटर में बताया।
6: आपने 2 साल की उम्र में डांस की परफॉर्मेंस दी, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी। फिर आप संगीत की तरफ से मुड़ी, जिस तरह से आपने बताया, फिर आप थिएटर की तरफ आई, ये सब आपने कैसे किया? क्योंकि डांस अपने आप में बहुत एक रियाज और साधना, उसके बाद संगीत और फिर रंगमंच थिएटर।
5: डांस में भी हमारे देश के तीनों किस्म के डांस हमने सीखा है
6: जी,
5: और उसमें टॉप लोगों से सीखा है
6: जी।
5: कुंजू के रूप में एकमात्र महिला कथकली डांसर हूँ जिन्होंने मंदिर में नाचा, हमारी गुरुओं की कृपा रही। एक ही चीज मेरे पिताजी ने हमको सिखाया था कि बेटा अगर गुरु है, बहुत कुछ क्वालिफिकेशन एक गुरु के होने चाहिए, उसकी समझ अच्छी होनी चाहिए, बोलने का अंदाज अच्छा होना चाहिए, पैर साफ होना चाहिए, आंखें खूबसूरत होना चाहिए, आवाज ठीक होनी चाहिए, ऐसे 32 गुण चाहिए
6: जी
5: एक गुरु को। और शिष्य को सिर्फ 2 चीज, फेथ एंड सरेंडर। गुरु अगर आपने आपको मिल गया और मान ली, तो उसमें विश्वास रखिए और अपने को कंप्लीटली उनके चरणों में न्योछावर करिए, अपने आप आ जाएगा। नहीं तो मेरी एक पीढ़ी के गाना नाचना कैसे हो सकता है? ये तो उन लोगों की देन है, इसमें मेरी कोई तारीफ की बात नहीं है। हाँ, मेहनत करी विश्वास के साथ। मणिपुरी में यही सीख गई थी, शांति निकेतन में
6: जी।
5: हमारा

0: नाच देख के और गाना सुन के स्टेज पे शंभू महाराज जी आए, हमको सिखाने लगे। फिर उनसे सीखने को मिला, अरे भीमसेन जोशी जी की पहली तालीम तो उनके अंडर ही हुआ है, बहुत अच्छा सीखा हमने उनके पास
1: जी।
0: फिर उसके बाद में जब अमेरिका गई तो वहाँ मार्था ग्राहम से सीखा, तो बहुत अच्छा सीखा वहाँ। वो उसका परफॉर्मेंस के लिए मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उन्होंने बुलाया।
1: मल्लिकाई ठुमरी सिद्धेश्वरी देवी जी के साथ भी, उनसे भी आपने तालीम हासिल की, कैसा अनुभव रहा?
0: वो भी देखिए, ये तीनों लोगों को, शंभू महाराज जी, सिद्धेश्वरी देवी जी और बेगम अख्तर साहिबा, बात सच है कि तीनों के पास मैं नहीं गई, ये किस्मत कहते हैं। मैं महाराज जी के पास जब सीखती थी
1: जी,
0: भाव कौन गली गए, वहीं पर अम्मा आई हुई थी, उनको स्पेशली बुलाया गया था बनारस से दिल्ली कि वो एक दो स्टूडेंट को सिखाए
1: जी,
0: ताकि वो बनारस घराना जीवित रहे, और जिनको सिखाना सिखाएंगी उनको भी स्कॉलरशिप था
1: जी,
0: अच्छा था
1: जी।
0: तो उस जमाने में आप सोचिए, मालविका कानन, एटी कानन, क्या कहते हैं, माणिक वर्मा, ये लोग सब आए थे
1: जी,
0: रोज परफॉर्म होता था, सिलेक्शन में बैठती थी।
1: तो मल्लिकाई गजल, बेगम अख्तर जी से आपका उस्ताद और शागिर्द का बहुत ही खूबसूरत रिश्ता रहा, बहुत ही गहरा रिश्ता रहा, जानना चाहेंगे इस बारे में आपसे जरूर।
0: ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या हुआ कि मेरे शौहर गए हुए थे उनको बुलाने के लिए, बहुत बड़ा प्रोग्राम था हिंदुस्तान में, शायद वो सबसे बड़ा प्रोग्राम, जितने भी गालिब के स्कॉलर थे
1: जी,
0: उनका कुछ एनिवर्सरी था जिसमें ये लोग आए हुए थे, बड़े बड़े जितने भी क्लासिकल गाने वाले उस्ताद उस जमाने में आए हुए थे, सबको एक एक गजल गाना था,
1: जी
0: और वो गजल संगीत नाटक एकेडमी ने दिया था। आखिरी में इंटरवल के बाद बेगम अख्तर का प्रोग्राम शेड्यूल था, तो उनको मधु करने के लिए हमको डायरेक्टर थे जिन वो ले गए, और आप आना चाहती हैं? मैंने कहा बिल्कुल, बेगम अख्तर कौन नहीं जाना चाहता। उनके पास मैं गई, आवाज, इससे पहले एक प्रोग्राम में गई हुई थी मैं लखनऊ
1: जी,
0: जिसमें अहमदजान थिरकवा हमारे
1: जी जी
0: तबले
1: जी
0: में
1: तब
0: थे
1: जी
0: हमारे
1: जी
0: साथ,
1: जी जी
0: अम्मा गा रही थी,
1: आकाशवाणी से ही थे वो भी,
0: हाँ श्रेष्ठतम तबला वादक
1: बिल्कुल।
0: बनने, और ये अपने राजन साजन जी के पिताजी हनुमान मिश्रा
1: जी
0: वो सारंगी पे थे। उसमें क्या हुआ कि अम्मा का थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया, गला फंस गया छालियों से,
1: जी
0: तो उन्होंने कहा बेटा गाते रहो, तो मैं गाने रही, गाती रही। उसके बाद जब हो गया, बेगम साहब ने हमको सुन रखा था।
1: तो अब मैं रंगमंच की तरफ आती हूँ।
0: मैं सारा श्रेय इब्राहिम अलकाजी साहब को देती हूँ, मुझे मेरे ख्याल से वो सचमुच हिंदुस्तान के सबसे बड़े विद्वान ऋषि हैं जिन्होंने थिएटर को हमारे देश में रिवाइव किया और हमें साथ लिया। इंट्रोडक्शन हुआ उनको, उनके नए एक सिलेबस का, उसमें उन्होंने मेरे से काम लिया। उसके बाद नाट्य शास्त्र उन्होंने पढ़ाया, हमको सारे हिंदुस्तान घुमाया, सारे हिंदुस्तान में मूवमेंट देख के मैंने खुद एक कोर्स तैयार किया। तभी से मेरा इंटरेस्ट था क्लासिकल थिएटर को रिवाइव करना।
1: आपने किताबें भी लिखी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब पर भी आपने पहली किताब लिखी, बेगम अख्तर साहिबा पर आपने किताबें लिखी, उन पर पहली डॉक्यूमेंट्री भी आपने बनाई
0: जी,
1: क्या कहेंगे इस?
0: बिस्मिल्लाह खान एंड शहनाई, द सीट ऑफ शहनाई, बिस्मिल्लाह खान एंड बनारस
1: जी,
0: द सीट ऑफ शहनाई, इस तरह से वो किताब लिखी गई
1: जी।
0: फिर अम्मी पे कि उनकी जो ये सोच है, जो समझ है
1: जी,
0: उसको हम बरकरार रख सकते हैं, और उनके बारे में रिसर्च करके।
1: बहुत ही खूबसूरत ही बातों का सिलसिला चलता रहा है, लेकिन वक्त हमसे कह रहा है कि हमें समेटना होगा, बहुत कुछ है पूछने के लिए। चलते चलते ये ज़रूर कहना चाहूँगी, हम खुद तराशते हैं मंजिल के संगे मील, हम वो नहीं जिनको ज़माना बना गया। और ये बात प्रोफेसर विदुषी रीता गांगली जी पर बिल्कुल सही बैठती है, और हम बहुत खुशनसीब हैं कि आज वो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी तहे दिल से कि आप हमारे स्टूडियोज़ में आई और अपना जो अनुभव हमसे बांटा, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: प्रस्तुतकर्ता काजल सुनील।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम हमारे अतिथि रीटा गांगुली पद्मश्री, जानी मानी रंगकर्मी और गायिका, भेंटकर्ता व प्रस्तुति काजल सूरी की। आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स। और अब समय है मिट्टी दी महक का, कंपेयर संदीप कौर।

अम्मा इस्तेहजा इनके दरहाली के सिनेमा यहीन गांधी या नजरियाताश राबे शिकले बस्ते बंदी ये मुजद्दद बीमारी से नुमाइश गुजाशते बाशद वो तालीमात वेरा अस्तरीगे फिल्मी बेना में लगे रहो मुन्ना भाई बा जिंदगी ये मर्दों में उमूम मुर्तबित साखते बाशद अम्मा खुद महात्मा गांधी सिनेमा रा हमानंद बदी मुतारादिफ़ कुमारबाजी ओ आज दवानी तलगहमी कर गांधी जी दरसाले 1920 तो हफ्त नजरियात नारजाइत खुजरा दर किबाल सिनेमा इबरादाश हंगामी के कुमेत फिल्म परदादी ये हिंद हमराबा यक सीरी असवालत अजवैत हजारमूद के नजरियातीश राजे बे सिनेमा ये हिंदी मुनअकिस साधन गांधी जी आन पुरसिश नामे रा बाइधारात नामुसाईद खुद उन्वान बे रई से कुमीते ती रंगा चारियार औदद्दात के हाकी दानबूत के नजरिया तश राजे बे सिनेमा हमानंद टेक्नोलॉजी ये बेतबेकार मनफी मी बशत नामे अश मौर्रिख दवाजदहों में माह नवाम रे साल 1920 तो हफ्त हाकी दानबूत के हत्ता अगर हम सू ये नजर दाश्तम मन बराये पासू खे सुवालातेतान मुनासिब नबूदम चुनके हीच वक्त बे सिनेमाई न रफ्तम वो हत्ता बराये बी गाने गान कारी के आन अंजाम दादे वो दारद अंजाम मी देहद मुनासिर ब खुदे शान मी बशद वो हत्ता अगर कम तरीन खूबी रा अंजाम दादे बाशद हुनूज बे इस बात न रसी दिया।

शक्कीनीस के मारूफ तरीन और महबूब तरीन फिल्मी बरजिंदगी ये गांधी आस फिल्म में फौक मौफक बॉक्स ऑफिस हो कामयाब तनकीदी तहिये शुदे रिचार्ड एटनबरो बेना में गांधीस के दरसाले 1922 बीमारी दे नुमाइश गुजाशते शुदे बूत वो दास्तान है पुश्त पर्दे तोरी दियान बिदू ने शक यक हमासये दरक्षंदे अस तलाश हाइये अफसानी कारेपुर मशक्क़त व इस्तिक़ामत नाब व कारेपुर ज़हमत बराइये यक मुद्दत तूलानी ये बीस सारे बुदियास उ बाबी सियारियस हिंदिया ने बरजस्ते शामिल नुखुस वजीर आजमान हिंद पांदी जवाहरलाल नेहरू मुजाकरात रा अंजाम दाद बेनुदरत मरदुम मीदानंद के पांडित नेहरू दरीन नोए मुबाहिसात शिरकत मीजूस व हत्ता आज पीश रहा तो नजरियात खुद दर मोरित सिनारियो आगाही मीसा फिल्म गांधी के दरसाले 1922 मुंतशिर शुद नफाकादीन के यक मौफियत फोगुलादेरा दर बाजाए बिलीत फरोशी ये सिनेमाई बेदसावुर्द बल्कि तेदाद काबिल तवज्जोही ये हर जायजा ओस्कार रा बेदसावुर्द पयाम मुगामत अदम खुशूनत बे यक तर्ज जालिब अस्तरीग यक जिस्म हुनर मसूर कुरंदई बे अर्ज गुजाश्त शुद इन फिल्म मिलियन हा नफर रा निशानदाद व दर आयंदे हमीशे ख्वादात के चितौर यक मर्द कूता कदे कहवेई बर अलेहे सल्तनत इंग्लिस कयाम कर्द व पीरूज नीज दरामद

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। उन्होंने उभरते क्षेत्रों में अधिक सहयोग का आह्वान किया।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रूपये की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रूपये, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रूपये और गुरूग्राम में 85.12 रूपये हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रूपये की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। यह घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। आंध्र प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम का 6ठा चरण कल से शुरू हो गया। तिरुपति के जिलाधिकारी डॉ एस वेंकटेश्वर ने जिले के येरपेडू स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, बौद्धिक विकास और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 27 मई तक चलेगा। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के जानिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 से खेला जाएगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra.

0: गृह लक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी प्यारी प्यारी बहनों को मनीषा और
1: रेनू का
0: राम राम। देखिए ना रेनू, तपती गर्मी है, इतनी तपिश है हवा में, गर्म लू भी चल रही है ना, तो मौसम में बहुत से बदलाव आ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले ठंडक भी थी, लेकिन अब बहुत गर्मी है। और ऐसी गर्मी में हमारी बहनें जो हैं वो बाहर भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं और सब कुछ संभालती हैं एक मुस्कान के साथ।
1: बिल्कुल सही बात है मनीषा, बिल्कुल ठीक कहा। और देखो, अब जैसे हम अपनी ही बात करें, हम बहनें भी तो बहुत गर्मी में चलते हुए आई, और सच में ऐसे लग रहा था कि जैसे बिल्कुल गर्म हवा लू के थपेड़े चल रहे हैं।
0: जी हाँ, बिल्कुल लू के थपेड़े चल रहे हैं। और ऐसी लू में हमें अपनों का और अपना भी बहुत ध्यान रखना है, पानी लगातार पीते रहना है, नींबू पानी पिए, शिकंजी पिए, बहुत सी चीजें हैं जो हमें गर्मी से बचा सकती हैं। और रेनू ने जैसी बात कही कि हाँ भाई, हम भी बहुत दूर से आए हैं अपनी बहनों से बातचीत करने, उनसे रूबरू होने, और साथ ही हमारी बहनें भी बहुत बेसब्री से इंतजार करने बैठी हैं आज के हमारे कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का। तो शुरुआत करते हैं इस बेहद प्यारे से गीत के साथ।

0: कर रहे हैं, तो यही जो साधन है ना, ये संचार है। यानी कि हमारे आपसी मेलजोल और रिश्तों का आधार है संचार।
1: बिल्कुल,
0: चाहे परिवार हो, दोस्तों से बात करना हो, सहकर्मियों से सहयोग करना हो, या कोई भी जानकारी देश की हो या विदेश की हो,
1: बिल्कुल,
0: तो संचार के माध्यम से बड़ी आसानी से ली जा सकती
1: बिल्कुल।
0: है।
1: बिल्कुल, और मनीषा मैं समझ भी गई कि ये बात तुमने हमारी बहनों को क्यों कही। ये बात तुमने हमारी बहनों को इसलिए कही क्योंकि आज है 17 मई और 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है।
0: बिल्कुल,
1: और हम अपनी बहनों को यह भी बता दें कि यह जो दिन है 17 मई 1865 को पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी, और इसीलिए जो पहला अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वर्शन पर हस्ताक्षर किए जाने की स्मृति में इस दिवस को मनाया जाता है। और वही उद्देश्य तो इसका तुमने बता ही दिया है कि मुख्य उद्देश्य हमारे समाज और अर्थव्यवस्थाओं में इंटरनेट और अन्य सूचना व संचार के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा करना, और साथ ही लोग इसके प्रति जागरूक हों। सबसे बड़ी बात यह जाने कि हम दूर होते हुए भी कैसे हम संचार कर सकते हैं, यही दूर संचार है। देखो जैसे अब हम अपनी बहनों से दूर रहते हुए बातचीत कर रहे हैं, अपनी बातें उन तक पहुंचा पा रहे हैं।
0: बिल्कुल रेनू, पहले होता था ना पुराने समय में हम संचार किसी महासागर के पार संदेश फेंकने जैसा था, जिसकी कोई गारंटी नहीं होती थी कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन आज बहुत से साधन है, हमारे पास टेलीविजन है, टेलीफोन है, जिसके जरिए हम अपनी बात आसानी से विश्व तक पहुंचा सकते हैं, अपने अपनों तक पहुंचा सकते हैं।
1: बिल्कुल, और हम अपनी बहनों को एक और रोचक बात भी बता दें, जैसे कि बहुत बड़ा नाम लगता है विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस, तो हम यह बता दें कि पहले ये जो दोनों दिवस थे अलग अलग मनाए जाते थे, मगर वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र सभा ने इन दोनों को मिलाकर एक ही दिन यानी कि 17 मई आज के दिन मनाने का निर्णय लिया।
0: जी हाँ, तो चलिए सुनते हैं हमारी ये बहन क्या कह रही हैं अपने पिया से।
2: मेरे पिया

0: मनीषा, हमारी रोजमर्रा की भागती दौड़ती जिंदगी में महिलाएं घर के साथ साथ बाहर का काम भी बखूबी संभालती हैं और बहुत अच्छी तरह से संभालती हैं।
1: जी हाँ, और ऐसे में कई जिम्मेदारियां कंधों पर उठाए वो अपनी सेहत को और कुछ शारीरिक जो बदलाव होते हैं उनको नजरअंदाज करती चली जाती हैं। और ऐसे में होता यह है कि अंदर कोई ना कोई ऐसे अभाव या बीमारी वो स्वयं पाल लेती हैं, जिसका भुगतान उन्हें ही नहीं उनके पूरे परिवार को भी करना पड़ता है। और ऐसी ही एक बीमारी है रेनू, कैंसर की। और खास तौर पर महिलाओं में गर्भावस्था में जो कैंसर होता है वो बेहद खतरनाक होता है। तो ऐसे में हम अपनी बहनों को जानकारी के लिए एक बातचीत सुनवाएंगे। बातचीत का विषय रहेगा महिलाओं में गर्भावस्था कैंसर की समस्या और उपचार। बातचीत में भाग ले रही हैं डॉक्टर उर्वशी मिगलानी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, और इनसे बातचीत कर रही हैं नवोदिता मिश्रा।
0: तो चलो मनीषा, हम अपनी बहनों को ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत सुनवाते हैं।
2: नमस्कार, हमारे साथ हैं आज डॉक्टर उर्वशी मिगलानी जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में। स्वागत है मैम आपका।
3: धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब, जो हमारा विषय है आज का, जिस पर हम ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, वो है गर्भाशय का कैंसर। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि गर्भाशय का कैंसर वो असल में होता क्या है?
4: गर्भाशय के दो भाग रहते हैं, गर्भाशय जिसे हम यूट्रस कहते हैं उसका कैंसर भी हो सकता है, या गर्भाशय ग्रीवा जिसे गर्भाशय का मुख कहते हैं सर्विक्स, उसका कैंसर। तो गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर है जो कि बहुत ही जरूरी है जिसके बारे में समझना। शुरुआती चरण में तो हम उसका उपचार सिर्फ सर्जरी से कर सकते हैं, लेकिन जैसे वो फैलता जाता है तो फिर हमें दवाइयां और रेडियोथेरेपी देनी पड़ती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि गर्भाशय ग्रीवा जो हमारे जिसमें बच्चा पनपता है उसके मुख का कैंसर के साइन क्या हो सकते हैं।
2: बहुत सारे कैंसर के विषय में हम सुनते हैं कि पता इतनी देर में चलता है कि जहां पर इलाज मुश्किल ही होता चला जाता है। तो ऐसे केस में गर्भाशय का जो कैंसर है उसके जो अर्ली साइंस जिसे हम कहते हैं, एकदम शुरुआत में पता चल सके, ऐसे क्या सिम्टम होते हैं?
4: हाँ, ये बहुत ही जरूरी है हमारी ग्रामीण महिलाओं को समझना। महावारी हर महिला को हर माह में आती है। अगर वो महावारी दो माह के बीच में आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है, संबंध बनाने के बाद जरा सा भी खून का दाग लगना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है कि ये कैंसर की शुरुआत हो सकती है। महावारी बंद होने के बाद, जिसे हम रजोनिवृत्ति या मीनोपॉज कहते हैं, उसके बाद अगर 6 माह के बाद कभी भी खून का दाग लगे तो उसे कैंसर का साइन माना जाता है। अब ये हमारी ग्रामीण महिलाएं और बहुत ही समझदार एजुकेटेड महिलाओं में भी ये एक प्रवृत्ति है कि जब मीनोपॉज हो रहा होता है उस टाइम महावारी ज्यादा आ सकती है, ऐसा नहीं है। नॉर्मल मीनोपॉज में हमेशा महावारी कुछ ज्यादा समय पे आएगी और कम आएगी। अगर महावारी बंद होने के समय, जैसे 45 साल की उम्र के आसपास किसी को महावारी बहुत ज्यादा आ रही है, या कम समय के बाद, मेरा अर्थ है जैसे 15-15 दिन के बाद आ रही है और ज्यादा आ रही है, ये भी शुरुआती कैंसर का चरण हो सकता है। तो इसलिए अगर ऐसा सिम्टम हो तो आपने सबसे पहले डॉक्टर के पास जाके दिखाना है। डॉक्टर जाते ही ये नहीं है कि आपको लगेगा कि ये कैंसर हो गया है, हम जांचें करेंगे, कुछ टेस्ट होते हैं जो करेंगे जिससे पता चलेगा कि वो इन्फेक्शन के कारण है या हॉर्मोन्स में कुछ गड़बड़ के कारण है या कैंसर का शुरुआती चरण है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये सब सिम्टम है तो आपने ये सोच के डर के बैठ जाना है कि कैंसर है। ये हो सकता है, ये एक संकेत है कि आप अपने घर से निकलें और अस्पताल में दिखाएं।
2: इसी बिंदु से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है डॉक्टर, कि क्या कोई खास उम्र है जिसमें इस तरह की सावधानी, मतलब जांच को लेकर ज्यादा बरतनी चाहिए कि अगर लक्षण आ रहे हैं तो किस उम्र के बाद और ज्यादा सतर्क हो जाने की जरूरत है?
4: बिल्कुल, देखिए जब हम कुछ वर्ष पहले देख रहे थे कि थोड़ी बड़ी उम्र की औरतें, जो 40 के बाद, 45 के बाद या और ज्यादा बड़ी उम्र की औरतें, उनमें गर्भाशय कैंसर देखा गया था। जो गर्भाशय का कैंसर है वो तो 50-55 साल के बाद देखा गया था, और गर्भाशय ग्रीवा का थोड़ा 40 और 60 के बीच में। परंतु अब रिसेंटली ये देखा गया है कि ये थोड़ी कम उम्र की औरतों में भी ग्रीवा का और गर्भाशय का कैंसर बढ़ने लग गया है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, पॉल्यूशन, कुछ कारण जो हमें पता है कि मल्टीपल पार्टनर से कॉन्टैक्ट हो, जिनका विवाह बहुत जल्दी उम्र में हो जाए।

0: जाए, जिनका पहला बच्चा बहुत जल्दी हो जाए, ये सब तो रिस्क फैक्टर हैं ही। तो आजकल के टाइम में ऐसा कोई उम्र नहीं है जिसे हम कह सकते हैं कि ये कैंसर मुक्त है। अगर आपको ये सिम्टम किसी भी उम्र में हो तो
1: जी
0: आपको दिखाना है। फिर भी 30 से कम की उम्र में इसके होने के संभावना बहुत ही कम है, परंतु फिर भी अगर आपको बहुत दिक्कत हो तो आपको जरूर दिखाना चाहिए। स्पेशली जो साइन है वो है संबंध के बाद अगर खून का दाग लग रहा है, ये तो एक ऐसा सिम्टम है जो किसी भी उम्र में आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। और बाकी के जो महीना ज्यादा आने की दिक्कतें हैं वो 30 के बाद।
1: यहाँ पर थोड़ा सा इसमें आपसे विस्तार में जानना चाहेंगे, जिस लक्षण का आप अभी जिक्र कर रही थी कि संपर्क के बाद जो खून का दाग आप बता रही हैं, तो वो क्या जिसे हम स्पॉटिंग कहते हैं,
0: बिल्कुल।
1: कई बार होता है शायद औरतों को पता ही ना चलता हो इस संबंध में, मतलब और अगर आप थोड़ा प्रकाश डाल सके कैसे वो इस चीज को सुनिश्चित कर सकती हैं कि हाँ ये लक्षण है या ये नहीं है।
0: देखिए, अगर वो सिग्निफिकेंट होगा या कुछ दाग लग रहा है तो वो पता चल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि गर्भाशय ग्रीवा पे कुछ चोट लगी हुई है, कोई इन्फेक्शन है या कैंसर की शुरुआत है और खून इतना कम जा रहा है कि पता ही नहीं चला।
1: जी
0: अगर वो दाग भी लग रहा है तो वो पता चल जाएगा, और अगर एक बार नहीं तो अगले संपर्क में पता चल। तो इस चीज का पूरा ध्यान रखना है, और ये ऐसी चीज नहीं है जो मिस हो जाती है।
1: अभी जिन लक्षणों की बात कर रहे थे, तो अब बात आती है जांच की, कौन कौन सी जांच है और खासकर हमारी जो ग्रामीण और कस्बों की जो महिलाएं हैं उनके लिए किस तरह की जांच अभी उपलब्ध है ताकि इसका जल्दी से जल्दी पता लगाया जा सके, उसके विषय में आप थोड़ा बताइए।
0: देखिए, महिलाओं को ये बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं कि कोई भी आपको फाइनेंशियल या पैसा देने की जरूरत होगी। सारे सरकारी अस्पतालों में कैंसर की जांच फ्री है, छोटे अस्पताल से लेकर बड़े अस्पताल में। सबसे पहली जांच जो गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की है वो है पैप्समियर। पैप्समियर हम बच्चेदानी के मुंह, जिसे गर्भाशय ग्रीवा का मुख है, उसे थोड़ा स्राव लेते हैं। इसमें कोई तकलीफ नहीं होती है, आपको कोई बेहोश नहीं करना है, आपके साथ किसी भी रिश्तेदार को आने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 1 या 2 मिनट में ये टेस्ट हो जाता है। इसका रिजल्ट 2 हफ्ते में आ जाता है और उसे हमें पता चल जाता है कि सब नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है। अगर नॉर्मल है तो आपको 3 वर्ष तक ये टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा अपने मरीजों को कहती हूँ कि प्रकृति ने हमारी बहुत मदद की है इस चीज में, कि जो गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर है उसके शुरुआती चरण से आखिरी चरण तक जाने में 15 से 20 वर्ष लगते हैं, जो कि नॉर्मल से कैंसर बनने के बीच में भी 3 चरण है जिसको 15 वर्ष लगते हैं। तो हम अगर उस 15 वर्ष में एक बार भी पैप्समेयर करा लेते हैं और उस चरण को पकड़ लेते हैं, तो हम उसको कैंसर बनने से पहले ही उसका रोक लेते हैं। और उसमें बच्चेदानी नहीं निकालनी पड़ती, हम सिर्फ गर्भाशय ग्रीवा के मुख का इलाज करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि पैप्समेयर कराने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आपका नॉर्मल आ गया पैप्समेयर तो 3 वर्ष तक आपको कुछ नहीं कराना है। एक और टेस्ट है जो HPV टेस्ट है, जो कि अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। हम काफी कोशिश कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ जाए। अगर वो टेस्ट, जैसे हमारे कुछ मरीज जो करा पाते हैं, अगर वो टेस्ट बाहर से पैप्समेयर के साथ कराते हैं, वो किट ले आते हैं और हम कर देते हैं और वो टेस्ट नॉर्मल है, तो आपको 5 वर्ष तक कुछ नहीं कराना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर 6 महीने में अस्पताल जाने की जरूरत है। आप एक बार वो टेस्ट कराएं और 3 वर्ष या 5 वर्ष तक आपको दोबारा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कैंसर के बारे में, अगर वो नॉर्मल आया है।
1: जब हम ग्रामीण और कस्बों की महिलाओं की बात करते हैं या कुछ अर्बन महिलाओं की भी बात कर सकते हैं, इसमें एक थोड़ा संकोच का एक तत्व होता है, जैसे इस तरह का जो टेस्ट है उनको लगता है दिमाग में ऐसा है कि
0: बिल्कुल
1: जो प्राइवेसी है वो कहीं भंग हो रही है, तो उस विषय में अगर आप थोड़ा सा हमारी सुनने वाली महिलाओं को अगर आप थोड़ा जागरूक करना
0: हाँ,
1: चाहें।
0: ये बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है, क्योंकि ये हमने भी महसूस किया। हमने बहुत सर्वे किए तो हमने ये देखा कि सबसे ज्यादा महिलाओं को अस्पताल आने में यही डर और संकोच होता है कि वो दिखाना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए एक HPV टेस्ट की ही एक किट आ गई है, जिसे हम सेल्फ सैम्पलिंग किट कहते हैं। वो किट अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं आई है, हम काफी कोशिश कर रहे हैं उसको लाने की। काफी कैंप्स वगैरह में और प्रोजेक्ट्स में उसे यूज किया गया है। उसमें महिला को हम समझा देते हैं कि कैसे टेस्ट लेना है, और मोबाइल वैन्स हैं जो चलती हैं, उनको किट दे देते हैं, वो खुद ही टेस्ट लेके हमें दे देते हैं और वो टेस्ट प्रोसेस हो जाता है लैब में, उनके पास रिपोर्ट आ जाती है। तो इससे उसकी रिपोर्ट भी उतनी ही अच्छी है जितनी हमारे टेस्ट लेने की है।
1: अगर हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, थाम पहले ही होने से पहले, जैसे हम HPV वैक्सीन के बारे में बहुत सुनते हैं,
0: बिल्कुल
1: उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, क्योंकि कई सारी भ्रांतियां, कौन सी सही एज है,
0: बिल्कुल
1: किस एज के बाद ये बिल्कुल काम नहीं करेगा,
0: बिल्कुल
1: इस तरह के विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे।
0: देखिए, HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर या गर्भाशय ग्रीवा एक इकलौता कैंसर है हमारे पूरे शरीर में, जिसके लिए हमारे पास वैक्सीन है और एक ऐसा टेस्ट है। वो सिर्फ तब नहीं कराना है टेस्ट जब आपके पास कोई लक्षण हो रहे हैं, वो नॉर्मल महिला को भी कराना है। इट्स अ स्क्रीनिंग टेस्ट। जो वैक्सीन है उसकी सही एज है 9 से 14 वर्ष की लड़कियां, लड़कों को भी लगाया जा सकता है। 9 से 14 वर्ष में पहले हम 2 डोजेस लगा रहे थे, अब WHO ने कह दिया कि आप 1 डोज भी लगा सकते हो। अभी हम काफी उस पर काम कर रहे हैं कि वो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आ जाए, तो जैसे आपके बच्चों को नॉर्मल सारे

0: पोलियो डीपीटी वैक्सीन लगते हैं वैसे ही ये भी लग जाएगा।
1: क्योंकि
0: अगर आप तब नहीं लगा रहे हैं तो 14 वर्ष के बाद उसे हमारे इंडिया में हम 45 वर्ष तक लगा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा तब होगा अगर मैरिज से पहले या संपर्क से पहले उसे लगाया जाए। अगर पहले संपर्क 20 साल की महिला है जिसका एक बच्चा है और अब उसको लग रहा है कि उसको लगाना है तो वो डेफिनेटली वो लगवा सकती है। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि उसका जो असर है वैक्सीन का वो उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि 15 साल की कन्या में होगा जिसने कभी भी, क्योंकि ये वैक्सीन है एचपीवी इन्फेक्शन के अगेंस्ट। जिस मरीज को एचपीवी इन्फेक्शन कॉन्टेक्ट हो चुका है उस पर ये उतना ज्यादा असर नहीं करता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम बच्चों को पहले लगा दें। लेकिन अगर वो मिस हो गया है तो इसे बाद में भी लगाया जा सकता है और इंडिया में ये 45 साल तक अलाउड है, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी।
1: तो ऐसा कोई डेटा है डॉक्टर जहाँ पे 40 से 45 के बीच की मान ली या 35 से 45 के बीच की जो औरतें लगाती हैं तो वाकई ये प्रिवेंशन में मदद करता है?
0: देखिए यही डाटा है कि उसका इफेक्ट बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू यंग फीमेल्स। लेकिन हम आजकल पूरे ग्लोबल लेवल पे ये हो रहा है कि अगर किसी को कैंसर से पहले के शुरुआती चरण डायग्नोज हुए हैं तो उसमें इलाज के साथ हम साथ में भी ये वैक्सीन लगा देते हैं। जो शुरुआती चरण बन गया उसको सही नहीं करेगा लेकिन वो बाकी के और इन्फेक्शन में प्रोटेक्ट करेगा, तो उसमें भी हम लगाते हैं। मरीज को बता देते हैं कि ये आप लगा सकते हो, ये आपको इलाज तो कराना पड़ेगा लेकिन ये आपको बाकी इन्फेक्शन से बचा सकता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि वो उतना असरदार नहीं होगा जितना कि वो 14 वर्ष के बच्चे में होगा। और वैक्सीन जो है आजकल 20 साल की उम्र तक हम एक या दो वैक्सीन, अगर पैसे की दिक्कत है अभी हमें खरीदना पड़ रहा है तो अगर हम एक डोज भी लगा लेंगे 20 वर्ष तक वो भी सही है, और 20 वर्ष के बाद 2 डोज। अभी WHO ने उसको 3 डोज बोला हुआ है। इंडिया में अभी अलाउड ये है कि 20 वर्ष तक हम एक डोज भी लगा सकते हैं, 2 डोज भी लगा सकते हैं।
1: जैसा कि आपने भी बताया जो साइको ऑन्कोलॉजी जो आप कह रही हैं, क्या ये सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स पर भी उपलब्ध है?
0: सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे ये नहीं होगी, वहाँ ही होगी जहाँ साइकेट्री सेंटर है। पर उसमें ऐसे है कि जो डॉक्टर डायग्नोज कर रहे हैं, निदान कर रहे हैं, वो ही समझा देते हैं। जैसे जब हमारे पास अगर लगता है कई बार कोई मरीज हिचक रहे हैं या हम किसी और से नहीं बात करना चाहते तो मैं ही या मेरी जो टीम है वो ही मरीज को और उनके रिश्तेदारों को समझा देती है और वो उपयुक्त होता है ताकि वो समझ पाए कि क्या करना है। बिकॉज बात करने से मरीज भी अपनी जो सारी शंकाएं हैं वो हमारे साथ शेयर कर लेता है और जो भी उनको समझना है वो हम उन्हें समझा सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी सेंटर पे स्पेसिफिकली काउंसलर अवेलेबल नहीं होगा पर डॉक्टर भी काफी हद तक उनकी सारी शंकाएं दूर कर सकता है।
1: अंत में आप हमारी सुनने वाली महिलाओं को या उनके परिवार के सदस्यों को जो भी ये कार्यक्रम सुन रहा है कोई खास संदेश आप देना चाहेंगी?
0: मैं ये कहना चाहूंगी कि गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के बारे में तो आपने बहुत विस्तार में हमारी ग्रामीण महिलाओं को बता दिया है, लेकिन कुछ ऐसे और सिम्टम हैं जो मैं बताना चाहूंगी महिलाओं को जिनके बारे में भी ध्यान रखें, जो कि अंडाशय कैंसर के कारण हो सकते हैं, जैसे कि बड़ी उम्र में पेट फूलना, थोड़ा सा खाना खाने पे पेट भर जाना, पेट में दर्द होना या बहुत ज्यादा थकावट लगना, जो शौचालय है या यूरिन की है उसकी आदत में बहुत ज्यादा बदलाव आना, ये वाले जो लक्षण है अगर किसी को 12 या 13 दिन से ज्यादा हो रहे हैं एक माह में और 2-3 माह लगातार हो रहे हैं, इनफैक्ट 1 या 2 माह भी हो तब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। 1 या 2 दिन होने से चिंता की जरूरत नहीं है, ये सब अंडाशय कैंसर के लक्षण हो सकते हैं।
1: जैसे कि ये पैपमेयर है हमारे गर्भाशय ग्रीवा के लिए, तो क्या ऐसी कोई जांच इस केस में है या इसके लिए फिर हमें सीधे?
0: नहीं, अंडाशय कैंसर की विडंबना है कि हमारे पास उसका कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, इसलिए मैं अपने मरीजों को हमेशा यही समझाती हूँ कि आपको अगर ये कुछ भी लगे तो पहले डॉक्टर के पास जाएं। दूसरा, जिनके परिवार में किसी को भी आंत या अंडाशय का कैंसर हुआ हुआ है उनमें ये होने के चांसेस ज्यादा हैं, उनको शुरू से ही अपना चेकअप कराते रहना चाहिए।
1: तो अपने सुनने वालों को यही कहना चाहेंगे कि बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, बस लापरवाही नहीं बरतनी है, जांच समय पर कराते रहनी है और किसी भी परेशानी को छुपाने की जरूरत नहीं है। सबसे पास आपका जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां जाएं, डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे बात करें, क्योंकि ये याद रखने की जरूरत है हमें कि जागरूकता से ही हमें इन स्थितियों में जीत मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उर्वशी आपका हमारे आकाशवाणी के स्टूडियोज में आने के लिए और हमारे साथ इस विषय पर जानकारी साझा करने के लिए।
2: अभी हमारी बहनों ने सुनी बातचीत महिलाओं में गर्भावस्था, कैंसर की समस्या और उपचार। डॉक्टर उर्वशी मिगलानी से नवोदिता मिश्रा बातचीत कर रही थीं।

0: भाई मनीषा, जिंदगी हंसने गाने के लिए है और इस हंसती गाती जिंदगी में आकाशवाणी ने 90 सालों का रास्ता तय करते हुए हमारी बहनों के जीवन में एक मूक क्रांति उत्पन्न की है।
1: जी हाँ, आकाशवाणी का दिल्ली स्टेशन एक ऐसा केंद्र बन गया जहाँ कई आवाजों को पंख मिली और इतिहास रचा गया माइक के द्वारा।
0: बिल्कुल, और आज आकाशवाणी जन जन की आवाज बन चुकी है और ये जो स्टेशन है कई स्टेशन का संचालन भी करता है आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आकाशवाणी का बाह्य सेवा प्रभाग 100 से अधिक देशों में प्रसारण करता है और ये बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के आदर्शों पर खरा उतरता है।
0: बिल्कुल, और यमुना जो हमारी बहनें हैं वो रेडियो के माध्यम से ही लोक रंजनी, ग्राम संसार, कृषि जगत, गृह लक्ष्मी के साथ साथ अपने पसंदीदा कार्यक्रम भी सुनती हैं।
1: जी हाँ, और इन कार्यक्रमों से उनका ज्ञान तो बढ़ता ही है रेनु, और साथ ही साथ मनोरंजन भी होता है। तो आकाशवाणी जैसे बढ़ता जा रहा है, बहता जा रहा है हवा के संग संग, वैसे ही हमारी बहनें भी गीत गुनगुनाती जा रही हैं।

0: साथ लड़ो। ये शब्द थे 14 साल की कल्पना दत्ता के, जिन्होंने अंग्रेजों को सबक सिखाया।
1: बिल्कुल, और देखो छोटी सी उम्र में ही इन्होंने विद्यार्थियों को निडरता से आगे बढ़ने, गुलामी की सोच से उनको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भी प्रेरित किया था।
0: जी हाँ, इनका जन्म 27 जुलाई 1913 को चटगांव के श्रीपुर में हुआ था, और चटगांव से शुरुआती इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने के लिए इनकी ललक जाग उठी।
1: बिल्कुल, और चटगांव लूट के बाद वे अंग्रेजों की आंखों की किरकिरी भी बन गई थीं।
0: देश की आजादी में उनके योगदान को देखते हुए 1979 में इन्हें वीर महिला का खिताब दिया गया, और बॉलीवुड में इनके जीवन पर खेले हम भी जान से नाम की फिल्म भी बनी है। तो ऐसी बहुत सी वीरांगनाएं हैं जिनसे आज भी हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं और इनको हम शत शत नमन करते हैं।
2: प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो, आन आन शान या

0: और मनीषा, आज भारत की वीरांगना क्रम में हम अपनी बहनों को बताएंगे कल्पना दत्ता के बारे में।
1: जी हाँ, अगर माथे से गुलामी का कलंक मिटाकर गर्व से जीना है तो अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए क्रांतिकारियों का साथ दो और हमारे

ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।

लाल पर जला रहे वे जय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो

0: रेनू, आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को भी मनाया जा रहा है और वर्तमान समय में हमारी जीवन शैली और भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत सी बीमारियां हमें घेर लेती
1: बिल्कुल
0: हैं, जिनमें एक जो मुख्य बीमारी है वो है बीपी, हाई बीपी। ये आम बीमारी बन चुकी है और इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि इसके शुरुआती जो लक्षण होते हैं वो दिखते नहीं हैं, लेकिन

0: धीरे धीरे ये दिल का दौरा, स्ट्रोक
1: बिल्कुल
0: और किडनी की बीमारियों का प्रमुख कारण बनती है।
1: बिल्कुल मनीषा। और देखो, बहुत सारी बीमारियां उच्च रक्तचाप के कारण ही होती हैं, इसीलिए हर साल 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप मनाया जाता है, ताकि हमारी बहनें और सभी लोग जागरूक हों। और मनीषा, जो इस बार की थीम रखी गई है वो यही रखी गई है कि उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, और यह तभी होगा जब हमारी बहनें अपना ब्लड प्रेशर नियमित रूप से मापेंगी और इसे नियंत्रित भी रखेंगी।
0: जी हाँ, जो सामान्य बीपी होता है रेनू, वो होता है 120/80, लेकिन यदि 140/90 से ज़्यादा बीपी हो तो वो हाई बीपी की कैटेगरी में आ जाता है।
1: बिल्कुल।
0: तो इसके लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं?
1: तो इसके लिए देखो, हमारी जो बहनें हैं वो एक तो नमक कम करें, नमक का सेवन कम से कम करें, नियमित व्यायाम करें, वजन नियंत्रण में रखें, और ताजी फल और सब्जियां खाएं। और इसके साथ साथ मनीषा, नियमित जांच बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, और तनाव नहीं लेना है, नशा मुक्ति अपनानी है। तो चलिए, अगर सर चकरा जाता है ऐसे में तो ये एक प्यारा सा गीत सुनना है।
1: बिल्कुल।

0: मनीषा, हमारी बहनें अपनी रसोई में ऐसा भोजन बनाती हैं कि उंगलियां चाटते रह जाएं। और देखो, घर में जितने भी लोग फरमाइश करते हैं, अलग अलग तरह की सब्जियां भी बनाती हैं।
1: जी हाँ, फरमाइश तो करते हैं रेनू, लेकिन फरमाइशें कभी कभी बहुत महंगी भी पड़ जाती हैं, है ना। महंगाई के इस दौर में किचन का बजट संभालना किसी चुनौती से कम नहीं है।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: क्योंकि हम सब्जी जब बाजार में खरीदने जाते हैं तो सोच के जाते हैं कि भाई इतने में आ जाएगी, उसका बजट बैठता है डबल।
0: बिल्कुल।
1: तो

0: ऐसे में हमारी जो आवश्यकता बढ़ जाती है किचन गार्डन की, और किचन
1: बिल्कुल
0: गार्डन एक ऐसा समाधान बन जाता है रेनू हमारे लिए कि जो घर बैठे खाली समय का सदुपयोग कर बिना रसायन वाली ताजी सब्जियों के लिए बेहद उपयुक्त है।
1: बिल्कुल। और देखो, अब हमारी बहनें ये भी सोच रही होंगी कि किचन गार्डन का हमने सुझाव तो उन्हें दे दिया, पर वो उसको कैसे करें। तो देखो, बहुत ही आसान है। जब वो किचन गार्डन बनाए तो उसके लिए उन्हें कुछ भी ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है कि बाहर जाना पड़े। घर की बनाई खाद का प्रयोग करें,
0: जी
1: और सबसे बड़ी बात मनीषा, छोटे से शुरू करें। अगर जगह कम है तो पुरानी कोई बाल्टी हो गई, मिट्टी के घड़े हो गए, तो इनमें भी टमाटर, मिर्च और धनिया उगाया जा सकता है। बस धूप का एक छोटा सा कोना चाहिए होता है।
0: जी हाँ, और पौध की अच्छी ग्रोथ के लिए मिट्टी का सही होना जरूरी है। आप पास की किसी नर्सरी से मिट्टी लें, या फिर साधारण मिट्टी में भी
1: बिल्कुल
0: गोबर की खाद मिला सकते हैं। और एक बात और है अहम रेनू, कि इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र भी लोगों को जागरूक कर रहा है।
1: बिल्कुल। और देखो, जैसे कि तुमने मिट्टी की बात कही, अगर उसमें कीड़े लग जाते हैं फिर तो कीड़ों से बचाव का भी बड़ा देसी नुस्खा है कि अगर कीड़े लग जाएं तो आपको घबराना नहीं है, नीम का पानी या राख का छिड़काव कर दें, वह पूरी तरह से सुरक्षित है और साथ ही बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छा है।
0: जी हाँ, यानी कि पैसों की बचत और स्वादिष्ट हरी ताजी
1: बिल्कुल
0: सब्जियां,
1: बिल्कुल
0: यानी आम
1: बिल्कुल
0: के आम,
1: गुठलियों
0: गुठलियों
1: के
0: के
1: दाम
0: दाम।
1: बिल्कुल।

0: और मनीषा, हमारी बहनें ये जो कार्यक्रम सुन रही हैं, हम बहनों को बता दें कि हमारे आज के इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पाराशर।
1: जी हाँ, और कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल।
0: बिल्कुल,
1: और साथ ही कार्यक्रम का पता भी हम बता देते हैं, कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, आकाशवाणी, नई दिल्ली 110001।
0: और अगर हमारी बहनें हमें मेल करना चाहती हैं तो हमें भेज सकती हैं feedback@fnh.gmail.com पर।
1: जी हाँ, और अब बात करते हैं रेनू प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, जिसने हमारी कई बहनों को
0: बिल्कुल
1: आंसू मुक्त कर दिया
0: बिल्कुल
1: है ना। 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी, और ये प्रमुख सामाजिक कल्याण योजना है। मुफ्त
0: बिल्कुल
1: कनेक्शन, गैस चूल्हा, सब्सिडी, जो सीधे लाभार्थी के खाते में आती है।
0: बिल्कुल। और देखो मनीषा, इससे जो

0: खतरनाक धुएं से भी हमारी बहनें बची रहती हैं, और एक तरह से देखा जाए तो जब वो धुएं से बची रहती हैं तो जो उनकी आंखों का कचरा है वो खराब नहीं होता, वो धुएं की राख से या धुएं की उसमें बहता नहीं है।
1: जी हाँ।

तो मनीषा, हमारी बहनों ने कार्यक्रम सुना और बातें तो करने का बहुत मन है, लेकिन बातें हम आगे भी करते रहेंगे। अभी घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि हम अपनी बहनों को बोलें, बहनों राम राम, राम।

0: अभी आपने सुना ग्रामीण बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1 बजने को है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर श्री मोदी स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
2: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, एआई, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा,

स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुस जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को उचित नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक चलेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रूपये की बढ़ोतरी की है। इस सप्ताह की शुरूआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रूपये की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमरीका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के यानिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रूली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कुमार, खूबसूरत और जुबली अदाकारा बबीता, दमदार अभिनेता प्राण, खतरनाक अंदाज वाले प्रेम चोपड़ा और ममता की मिसाल कही जाने वाली निरूपा रॉय। और दोस्तों, अब जिक्र उस चीज का जिसके बिना फिल्में अधूरी लगती हैं, यानी संगीत। फिल्म के संगीतकार थे मशहूर जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिनके संगीत ने इस फिल्म को और भी यादगार बना दिया। तो क्यों ना शुरुआत की जाए फिल्म के एक बेहद प्यारे से गीत से, मोहब्बत की खुशबू से ये भरा नगमा, जिसे सुनते ही पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने।

0: वाह क्या बात है दोस्तों, पुराने गीतों की मिठास ही कुछ और होती है और इन गीतों का आनंद आप सिर्फ और सिर्फ इंद्रप्रस्थ चैनल पर ही ले सकते हैं। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्सर आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही फिल्म से। अब बात करते हैं फिल्म अनजाना की कहानी के बारे में। कहानी है एक सीधे साधे नेक दिल नौजवान की, जिसका किरदार निभाया है राजेंद्र कुमार ने। उनका अंदाज हमेशा की तरह सादगी और भावनाओं से भरा हुआ है। राजेंद्र कुमार उस दौर के ऐसे अभिनेता थे जिनकी फिल्मों को जुबली हिट कहा जाता था, क्योंकि उनकी फिल्में लंबे समय तक सिनेमाघरों में चलती थी। फिल्म में उनकी मुलाकात होती है खूबसूरत और चंचल लड़की से, यानी बबीता से। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ती हैं, बातचीत होती है और कब दोस्ती प्यार में बदल जाती है इसका एहसास उन्हें भी नहीं होता। लेकिन प्यार की राह इतनी आसान कहाँ होती है। कहानी में प्रवेश होता है लालच, गलतफहमियां और साजिशों का, और यहीं से फिल्म में आता है बड़ा मोड़। लेकिन कहानी आगे बढ़े उससे पहले सुनते हैं फिल्म का एक और खूबसूरत गीत, जिसे गाया है मुकेश और लता मंगेशकर ने।

0: जी हाँ, वो कौन है जो आपको 1:10 पर फिल्मी कहानी के साथ साथ गाने सुनवाता है? बोलो बोलो। जी हाँ, वो है सिर्फ और सिर्फ इंद्रप्रस्थ चैनल। तो कहानी को जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक ही फिल्म से प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं साल 1969 की फिल्म अनजाना की, और मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्सर, और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रोग्राम एक ही फिल्म से। फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी में आता है एक बड़ा मोड़, और इस मोड़ को और ज्यादा दिलचस्प बनाते हैं हिंदी फिल्मों के मशहूर खलनायक प्रेम चोपड़ा। उनकी मुस्कुराहट में भी एक चालाकी दिखाई देती थी, और फिल्म अनजाना में भी उनका किरदार कहानी में उलझने पैदा करता है, और दोस्तों फिल्म में एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराता है। प्राण साहब, अब अगर प्राण किसी फिल्म में हो तो समझ जाइए कि अभिनय अपने उच्च स्तर पर होगा, कभी खलनायक कभी चरित्र अभिनेता। हर भूमिका में जान डाल देने वाले प्राण ने फिल्म अनजाना में भी अपने अभिनय का शानदार रंग दिखाया है। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का अगला बेहद प्यारा सा गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर ने।

इस खूबसूरत से गीत के बाद दोस्तों को बेसब्री से इंतजार होगा अपने मेल्स का, जो हम मेल शामिल कर लेते हैं। दोस्तों आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, इसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। जो श्रोता अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो कृपया हमारा ईमेल पता नोट कर लें। हमारा ईमेल पता है ip.radiodelhi@gmail.com। तो ये पत्र हमें मिला है, ये ईमेल हमें मिला है। प्रिय प्रसारक जी, नंदा जी नमस्कार। नमस्कार आपको भी। फिल्म अनजाना जिसमें राजेंद्र कुमार बबीता निरुपा रॉय की लाजवाब जोड़ी है, बिल्कुल सही आपने लिखा। ये पत्र, ये मेल हमें मिला है वीरमगाम जंक्शन, अजीत भवसार, प्रमिला भवसार, भावेश सनी, जैमिन कुमार भवसार जी ने हमें ये मेल भेजा है। अगला मेल हम शामिल कर लेते हैं। ये मेल हमें भेजा है सुर संगम रेडियो श्रोता संघ ने हमें ये मेल भेजा है। राजेंद्र कुमार बबीता अभिनीत 1969 की फिल्म अनजाना एक बेहतरीन रोमांटिक ड्रामा है, बिल्कुल आपने सही कहा। और मेल भेजने के लिए हमें आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेल के साथ आपने इस फिल्म की कहानी भी हमें लिखकर भेजी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मेल हम शामिल कर लेते हैं आर कुमार जी का। इन्होंने आर कुमार जी ने ये भेजा है हमें मेल वडिंग खेड़ा पंजाब से, और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने हमें ये मेल भेजा है और लिखा है कि प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है। अगला मेल हम शामिल करते हैं सुरेश नारंग जी का। ये मेल हमें भेज रहे हैं सहारनपुर चंद्र नगर से। इनके साथ हैं आशु नारंग, सोनाली। इन्होंने कहा है कि कोई फिल्म का गीत सुना दें। ये कोई भी फिल्म का गीत वाला प्रोग्राम नहीं है, ये है एक ही फिल्म से, और आप फिल्म अनजाना की कहानी के साथ साथ उसी फिल्म के गीत सुन रहे हैं, और कृपया हमें बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है। तो और भी मेल शामिल करेंगे, पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बारे में और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आपने जाना कि प्यार की राह में गलतफहमियां और मुश्किलें दस्तक दे चुकी हैं, और यहाँ फिल्म में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हिंदी सिनेमा की मां कही जाने वाली निरूपा रॉय। फिल्म अनजाना में उनका अभिनय कहानी को भावनात्मक गहराई देता है। गलतफहमियां इतनी बढ़ जाती हैं कि रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं, लेकिन दोस्तों हर अच्छी कहानी की तरह अनजाना भी हमें यही सिखाती है कि सच्चाई देर से सही सामने जरूर आती है। धीरे धीरे कहानी की सारी उलझने सुलझने लगती हैं, सच सामने आता है, कई गलतफहमियां दूर होती हैं, और जिन रिश्तों में दूरी आ गई थी वो फिर से करीब आने लगते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म का आनंद लेने के लिए आपको ये फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए, और फिल्म का संदेश भी बेहद खूबसूरत है कि प्यार और भरोसा अगर सच्चा हो तो हर मुश्किल पार किया जा सकता है। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक और प्यारा सा गीत जिसे गाया है मोहम्मद रफी और

गीत के साथ साथ मैं मेल भी शामिल कर रही हूँ। ये मेल हमें मिला है प्रवीण एस जी का, सूर्यनगर गाजियाबाद से इन्होंने भेजा है। एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन एंड मूवी सिलेक्शन, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेल हमें आया है सूर्यनगर गाजियाबाद से। अगला मेल मैं शामिल करती हूँ कुलदीप गुप्ता जी का। मैडम जी नमस्कार, आपको भी नमस्कार। मैं भी प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बहुत सुंदर प्रस्तुति, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप गुप्ता जी आपका। और इन्होंने मेल हमें भेजा है बघोली बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, हमें ये मेल मिला है। अगला मेल हमें मिला है धर्मेंद्र छिप्पा जी का, इनको भी प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है, फिल्म अनजाना बेहतरीन जानकारी, धन्यवाद। भोपालगढ़ राजस्थान से इनके महेंद्र छिप्पा और इनके साथ है कपिल छिप्पा जी ने हमें ये मेल भेजा है।

समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम एक ही फिल्म से पसंद आया होगा। अब विदा लेने का समय है, लेकिन अगली बार एक ही फिल्म से में फिर मुलाकात होगी हिंदी सिनेमा की एक और यादगार फिल्म के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्सर, सुनते रहिए इंद्रप्रस्थ चैनल।

एक और मेल हम शामिल कर लेते हैं। एक ही फिल्म से प्रोग्राम इनको बहुत पसंद आ रहा है, इसके लिए धन्यवाद। उम्दा जानकारी मिली, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेल हमें मिला है पंजाजी नवकर जी और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने हमें ये मेल भेजा है, नलेश्वर नगर नारवेल महाराष्ट्र से।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबरां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तो स्वीडन के 2 दिन दौरे से गोटनबर्ग पहुंचे। भारत और नीदरलैंड अपने दुवाले संबंधों को रणनीतिक भाईवाली के पद्धर तक वधाने लई सहमत हो गए ने। भारत ने कहा कि होरमूज स्ट्रेट विच व्यापारक जहाजा ते हमले प्रवानयोग नहीं ने। जनगणना 2026 तहत 5 राज्यों में मकानों की गिनती के पहले गेड़ का काम शुरू हो गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु नाल ते राजस्थान रॉयल्स का दिल्ली कैपिटल्स नाल मुकाबला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तो स्वीडन के 2 दिन दौरे से गोटनबर्ग पहुंचे। श्री मोदी का यह दौरा स्वीडन के प्रधानमंत्री ओल्फ क्रिस्टेसन के सदे से हो रहा है। श्री मोदी के 2018 स्वीडन दौरे तो बाद दोवां देशों विचकार संबंध खरीददार विक्रेता संबंधों तो अगां वध गए ने। स्वीडन दौरे दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री ओल्फ क्रिस्टेसन नाल दुवल्ले संबंधों के समुचे पहलुओं की समीक्षा करन अते दुवल्ले व्यापार नूं वधाउण लई सहयोग के नवे तरीकों की भाल करन लई दुवल्ली गलबात करनगे। उन्हां वल्लों आर्टिफिशियल

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी स्वीडन के दो दिन के दौरे पर आज सहपहर गोथेनबर्ग पहुंचने वाले हैं, जहां वो स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक का जायजा लेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने बाहमी ताल्लुकात को क्लीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचा दिया है। अहम शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम करने के लिए 17 समझौतों पर दस्तखत किए गए। भारत ने आबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमलों की मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। आलमी सेहत तंजीम ने कांगो और युगांडा में एबोला बीमारी फैलने को बैन अलाक्वामी तशवीश की हामिल सेहत आम्मा की इमरजेंसी करार दिया है। मौसमियात महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है और नेपाल के कोहपैमा कामी रीटा शेरपा ने खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं मरतबा माउंट एवरेस्ट को सर करके तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के

0: तीसरे मरहले में स्वीडन के दो रोजा दौरे पर गोथेनबर्ग पहुंचने वाले हैं। इस साल जनवरी में भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तिजारत का समझौता होने के बाद से जनाब मोदी का यूरोप का ये पहला दौरा है। वजीर आजम मुत्तहिद अरब अमारात और नीदरलैंड्स के दौरे के बाद स्वीडन जा रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: अपने इस दौरे में वजीर आजम मोदी स्वीडन के वजीर आजम उल्फ क्रिस्टनसन से मुलाकात करेंगे, जिसके दौरान वो बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेंगे और दो तरफा तिजारत में इजाफे के लिए इश्तराक के नए रास्ते तलाश करेंगे। दोनों रहनुमा माहौलियात के लिए साजगार तवानाई की जानिब मुंतकली, मसनूई जहानत AI, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, स्टार्टअप्स, मजबूत सप्लाई चेन्स, दिफा, खला, मौसमियात के लिए इकदामात और अवाम से अवाम के राब्तों से मुतालिक शोबों में तावुन के बारे में भी तबादला ख्याल करेंगे। इसके अलावा दोनों वज़ीरे आज़म यूरोपीय कमीशन की सदर इज्जत माब मोहतरमा उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ यूरोप के मुमताज कारोबारी रहनुमाओं के एक क्लीदी फोरम यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री से भी खिताब करेंगे। पूरे स्वीडन के कारोबारी घरानों में वजीर आजम मोदी के इस दौरे से काफी जोश खरोश देखा जा रहा है और वो इस दौरे के नतायज से बहुत पुरउम्मीद हैं। स्वीडन के शहर गोथनबर्ग से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: वजीर आजम के दौरे के दूसरे मरहले में कल भारत और नीदरलैंड्स ने अपने बाहमी ताल्लुकात को क्लीदी साझेदारी की सतह पर ले जाने से इत्तेफाक किया था। नीदरलैंड्स के शहर हेग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के उनके हमनसब रॉब जेटेन के दरमियान बातचीत के बाद ये इत्तेफाक राय हुआ। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दीगर क्लीदी शोबों में इश्तराक बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर दस्तखत किए। दोनों उजराए आजम ने मगरबी एशिया की सूरत हाल, खासतौर पर आलमी तवानाई सप्लाई निज़ाम और तजारती नेटवर्क में रुकावट पड़ने से खित्ते और दुनिया के दीगर हिस्सों में पड़ने वाले इसके संगीन मुजमिरात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने मसनू जहानत और डीप टेक को मुस्तकबिल की मईशत के अहम सुतून करार दिया है। वो आज अहमदाबाद में एक कैंपस के इफ्तिताह के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। जनाब अमित शाह ने कहा कि भारत दुनिया के हर उभरते हुए शोबे में एक सरकर्दा मुल्क बन गया है।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: जनाब अमित शाह गुजरात के दो दिन के दौरे पर गए हुए हैं। वो आज गांधीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के इनोवेशन और इंक्यूबेशन मरकज का इफ्तिताह भी करने वाले हैं। मर्दुमशुमारी 2027 के पहले मरहले के तहत 5 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाके में मकानों की फहरिस्त तैयार करने और मकानों की गिनती के लिए घर घर जाकर फील्ड कार्रवाई का अमल शुरू हो गया है। इनमें राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलाका शामिल है। पूरे मुल्क में जारी मर्दुमशुमारी के अमल के तहत ऐसा किया जा रहा है। इधर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन, दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी मुतल्लिका अहलकार घर घर जाकर मकानों की फहरिस्त तैयार कर रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने अबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाजों पर हमलों की सख्त मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि सिविलियन अमले को निशाना बनाए जाने और जहाजरानी की आज़ादी में खलल डालने को सही नहीं ठहराया जा सकता। वो आलमी तवानाई और सप्लाई निज़ाम के तहफ्फुज के बारे में अक्वामे मुत्तहिदा इक्तसादी और समाजी कौंसिल की खसूसी मीटिंग में इजहार ख्याल कर रहे थे। ओमान के साहिल के नज़दीक भारतीय परचमबरदार कमर्शियल बहरी जहाज पर हमले के चंद रोज बाद जनाब हरीश का ये बयान सामने आया है। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने अवामी जमहूरिया कांगो और युगांडा में एबोला बीमारी के फूट पड़ने को अवामी सेहत से मुतालिक बैन अलाक्वामी तश्वीश वाली हंगामी सूरत हाल करार दिया है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधनोम गेब्रेसिस ने 300

0: or above. According to the IMD, a strong heat wave is likely in Ratlam, Khargone and Khandwa today. Temperature may cross 44 degrees there. Heat wave conditions will also continue in Indore, Ujjain, Sagar, Rewa, Chhatrapur and more than a dozen other districts. The IMD says severe heat will continue across most part of the state till May 19. No rain alert has been issued anywhere today. Abhinav Goyal, Akashvani, Bhopal.
1: On to sports now. In badminton, world number 4, Indian pair Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty went down 12-21, 23-25 to Indonesia's Leo Rolikanando and Daniel Martin in the men's doubles final of the Thailand Open in Bangkok today. In tennis, Ukraine's Alina Svitolina stunned world number 4 Coco Gauff of the US 6-4, 6-7, 6-2 to win the women's title at the Italian Open yesterday. In the men's section, Jannik Sinner will face Norway's Casper Ruud in the final today. The match will start at 8:30 p.m. Indian Standard Time. In IPL cricket, today Punjab Kings will take on Royal Challengers Bengaluru at Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala. The match is scheduled to begin at 3:30 p.m. In another match, Delhi Capitals will face Rajasthan Royals at Arun Jaitley Stadium in Delhi. The match will begin at 7:30 p.m. World Hypertension Day is being observed today. The theme for this year is Controlling Hypertension Together. Check your blood pressure regularly. Defeat the silent killer. The day is a part of Hypertension Awareness Month, aiming to raise global awareness about high blood pressure, promote prevention, detection and control. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to reach Gothenburg this afternoon on a two-day visit to Sweden will hold talks with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson to review cooperation in trade, green transition, AI and defence. India and Netherlands elevate bilateral relationship to strategic partnership. 17 agreements signed to strengthen collaboration in key areas. India condemns attacks on commercial shipping in Strait of Hormuz as unacceptable. Says disrupting freedom of navigation cannot be justified. World Health Organization declares Ebola outbreak in Congo and Uganda a public health emergency of international concern. IMD issues heavy to very heavy rainfall alert at isolated places over Andaman and Nicobar Islands, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And Nepali mountaineer Kami Rita Sherpa creates history by climbing Mount Everest for 32nd time, breaking his own record. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बताया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
3: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में साका

0: माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
1: आई वर्क फ्रॉम अ बिजनेस काउंसिल।
2: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूँ जहाँ लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
0: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
3: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
4: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
3: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
5: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
3: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर

0: क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह दो दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से CNG की कीमतों में 1 रूपये की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80.09 रूपये, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रूपये और गुरुग्राम में 85.12 रूपये हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी CNG की कीमतों में 2 रूपये की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार यह फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट COVID-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है, उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट

0: उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले दो दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के दो पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। और भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम एक ही कलाकार।

तो समाप्त और लेकर हाजिर हूं मैं अरुणेश कुमार, आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

बैकग्राउंड में चल रहे इस गाने को सुनकर आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज के हमारे कलाकार कौन हैं। जी हां, आज के हमारे कलाकार हैं जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक प्रकाश मेहरा, और आज हम उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। तो दोस्तों, आज प्रकाश मेहरा साहब के बारे में बहुत सारी बातें होंगी, उनकी फिल्मों के बारे में, उनके करियर के बारे में और उनकी जिंदगी के बारे में। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन की उपाधि दिलाई। बहुत सारी होंगी बातें, बस आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार, अपने रेडियो दोस्त अरुणेश कुमार के साथ।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं एक ही कलाकार कार्यक्रम, और ये जो गाना आप सुन रहे हैं ये बता रहा है यारी दोस्ती मित्रता के महत्व को। और इस गाने को गाया है मन्ना डे साहब ने, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने, और इस गाने को लिखा है गुलशन बावरा ने। और ये फिल्म जंजीर का गाना है जो कि 1973 में रिलीज हुई थी, और इस फिल्म के डायरेक्टर थे प्रकाश मेहरा साहब। तो दोस्तों, आज बात प्रकाश मेहरा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है, और आज हमारे कार्यक्रम एक ही कलाकार में प्रकाश मेहरा के बारे में बातें होंगी। तो मेहरा साहब का जन्म 13 जुलाई 1939 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर बिजनौर में हुआ था। वे भारतीय सिनेमा के जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक थे, और कुछ लोग तो उन्हें अमिताभ बच्चन के गॉडफादर के रूप में भी जानते हैं। अब ये बात इसलिए भी है क्योंकि इन दोनों की जोड़ी ने कई फिल्मों में बहुत ही अधिक जानदार, शानदार, दमदार और जोरदार पहचान बनाई है। और अमिताभ बच्चन को एक तरह से एंग्री यंग मैन की भूमिका जंजीर फिल्म के बाद ही मिली है। और अगर बात करें प्रकाश मेहरा साहब की, उनके करियर की, उनके जीवन की शुरुआत की, तो वे अपने घर, अपने गांव जो कि बिजनौर शहर में वो था, वहां से वो सिर्फ अपनी जेब में केवल 13 रुपए लेकर मुंबई की ओर गए। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, रेलवे स्टेशन पर भूखे सोए। सपनों के शहर मुंबई में उन्हें कुछ पता नहीं था कि नियति उन्हें कहाँ ले जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत करते हैं, आपके अंदर जोश, जज्बा और जुनून है अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर, तो एक न एक दिन पूरी कायनात आपको सफल बनाती है, भले ही आपको कितना भी अधिक लंबा संघर्ष करना पड़ा। और उनकी जो है शुरुआत हुई थी 1968 में, जब उन्हें पहली बार एक ब्रेक मिला, और उनकी किस्मत बदल गई जब उन्होंने शशि कपूर और बबीता अभिनीत फिल्म हसीना मान जाएगी, इस फिल्म के साथ अपने फिल्मी निर्देशन की शुरुआत की। और ये फिल्म अपने गीत संगीत के साथ साथ बहुत ही बड़ी सुपरहिट साबित हुई बॉक्स ऑफिस पर, और इसके बाद तो जैसे सफलता की राह पर उनके कदम आगे बढ़ते ही गए, और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और इसके बाद 1971 का वो साल आया जब उन्होंने मेला नाम की एक फिल्म का निर्देशन किया, जो कि फिरोज खान और संजय खान अभिनीत एक फिल्म थी, और इस फिल्म ने भी बहुत अधिक सफलता प्राप्त की। इसके बाद 1972 में आई समाधि, जिसमें धर्मेंद्र, आशा पारिक और जया बहादुरी ने अभिनय किया था। और इस फिल्म की सफलता के बाद प्रकाश मेहरा साहब जाने माने फिल्म डायरेक्टर बन गए। तो आगे बढ़ने से पहले लता मंगेशकर जी की आवाज में एक बहुत ही प्यारा सा, दिल को भा जाने वाला, दिल को छू जाने वाला गाना आपको सुनाते हैं कि दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए।

और इसी बीच आपके मैसेज, आपके संदेश लगातार हमारे पास आ रहे हैं। मेरठगंज से दिग्दर्शन और कविता जी ने लिखा है कि प्रकाश मेहरा जी पर केंद्रित आज का कार्यक्रम बेहद ही अच्छा लग रहा है, आपकी बेहतरीन और उत्तम प्रस्तुतिकरण है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गाने और रोचक जानकारी जो आप बता रहे हैं वो बेहद पसंद आ रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए, हमारे चैनल आकाशवाणी दिल्ली के निष्पक्ष चैनल को सुनते रहिए और अपना फीडबैक देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।

एक और में संदेश आया है कैथल हरियाणा से, मधु नायक, अनिल मोहन, उषा मोहन और टिल्लू नायक का। इन्होंने लिखा है कि एक ही कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा की फिल्मों के गाने हम अभी सुन रहे हैं और आपकी शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए हमारी बधाई स्वीकार करें। जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।

एक और संदेश को ले लेते हैं। ये मैसेज आया है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस न्यावकर, निर्मला न्यावकर और विशाल न्यावकर का। इन्होंने लिखा है कि आदरणीय उद्घोषक जी, प्रेम पूर्वक सप्रेम नमस्कार। क्या बात है, प्रेम पूर्वक भी है और सप्रेम भी है। तो इन्होंने लिखा है कि शानदार लाजवाब प्रस्तुति के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत गाने और बहुत ही सुनी और अनसुनी बातें। प्रकाश मेहरा जी के बारे में आप बता रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ही कलाकार में, प्रकाश मेहरा साहब के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जो समाधि फिल्म थी, इसकी सफलता के बाद तो प्रकाश मेहरा के पास बहुत सारा काम आ गया। और 1973 के मई महीने में जब उनके घर और पत्नी के गहने सब कुछ गिरवी रखना पड़ गया, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उस दौरान वे काम कर रहे थे अपने प्रोडक्शन हाउस, प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन की पहली फिल्म जंजीर की। और जंजीर एक ऐसी फिल्म थी जिस जो रिलीज होने के बाद तो इतिहास रच दिया। और इस फिल्म के बाद ही अमिताभ बच्चन साहब को एंग्री यंग मैन कहा जाने लगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म को बनाने में प्रकाश मेहरा साहब ने कितनी मेहनत की, कितना संघर्ष किया? कई बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के पास वो गए, लेकिन किसी ने उनकी इस फिल्म को साइन नहीं किया था। और उस समय

अमिताभ बच्चन साहब की भी कई फिल्में फ्लॉप हो चुकी थीं, जिसके बाद किसी न किसी रोज एक प्राण साहब से उनकी मुलाकात हुई और इसके बाद मेहरा साहब प्राण साहब को एक वरिष्ठ और मार्गदर्शक और कलाकार के रूप में सम्मान देते थे और उन्हें बड़े प्यार से प्राण साहब कहकर संबोधित किया करते थे। और एक जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उन्होंने उनको कोई अच्छा कलाकार जंजीर फिल्म के लिए चाहिए क्योंकि बड़े बड़े जो हीरो हैं वो इस फिल्म को नहीं साइन कर रहे हैं, तब प्राण साहब ने ही अमिताभ बच्चन का नाम सजेस्ट किया था और इस तरह से अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर मिली और इस फिल्म की रिलीज होने के बाद तो इतिहास ही बन गया क्योंकि ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। और इसके अलावा भी बहुत से गाने हैं, जैसे लावारिस फिल्म का है अपनी तो जैसे तैसे, और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें प्रकाश मेहरा साहब ने अपने टैलेंट का परिचय दिया। तो आगे बढ़ने से पहले आपको लावारिस फिल्म से ही एक गाना सुनवाते हैं, किशोर कुमार की मस्त मौला आवाज़ में, उम्मीद है आपको पसंद आएगा।

आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गाने को लिखा है प्रकाश मेहरा साहब ने खुद ही, उनकी ही कलम से ये गाना लिखा गया है जो कि आज भी बेहद लोकप्रिय है।

इसी बीच आपके एक मैसेजेस लगातार हमारे पास आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशहाक, अशफाक और अल्ताफ साहब का मैसेज आया है और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने इस कार्यक्रम की प्रशंसा की है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नियमित श्रोता हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, और इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, रिस्पेक्टेड अरुणेश कुमार जी, वेरी हैप्पी एंड हेल्दी आफ्टरनून, वी आर लिसनिंग योर प्रोग्राम एक ही कलाकार एंड टुडे यू आर डिस्कसिंग अबाउट प्रकाश मेहरा साहब, नाइस प्रेजेंटेशन, रेयर फिल्म इन्फॉर्मेशन एंड ऑल टाइम सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल फीडबैक।

और एक और मैसेज आया है भोपाल गढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार का, ये भी हमारे नियमित श्रोता हैं और इन्होंने लिखा है, सर नमस्कार, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम आप पेश कर रहे हैं, बेहतरीन प्रस्तुति आप दे रहे हैं और प्रकाश मेहरा साहब के बारे में हमें बहुत ही अच्छी जानकारी मिल रही है और हमारा ज्ञान भी बढ़ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।

और दोस्तों प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन साहब ने एक साथ 6 बड़ी फिल्मों में काम किया और सभी की सभी ब्लॉकबस्टर्स हिट, सुपर डुपर हिट साबित हुई। ये फिल्में थीं हेरा फेरी, खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिश, नमक हलाल और शराबी। प्रकाश मेहरा को अपनी टीम के हिस्से में कुछ बेहतरीन प्रतिभाओं ने सिनेमा के इतिहास को बनाने में मदद किया, जैसे कि संगीत उस्ताद जोड़ी कल्याण जी आनंद जी और महान गीतकार अनजान साहब। और वैसे तो प्रकाश मेहरा साहब खुद ही भी लेखन प्रतिभा का पावर हाउस रहे हैं। उन्होंने कई सुपर डुपर हिट गाने लिखे हैं, जैसे कि अभी हमने कुछ आपको सुनाया, अपनी तो जैसे तैसे, आपका क्या होगा जनाबे अली, और इसके अलावा बप्पी लहरी साहब जो कि नमक हलाल में उन्होंने बहुत ही चार्ट बस्टर संगीत देने के बाद प्रकाश मेहरा की टीम के स्थायी सदस्य बन गए। वहीं सुपर टैलेंटेड कादर खान साहब को कैसे भूल सकते हैं, उन्होंने मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के कुछ असाधारण संवाद यानी डायलॉग लिखे। और जो दिवंगत महान अभिनेता थे अमजद खान साहब, उनको वे अपने बहुत ही अच्छे दोस्तों और उनके परिवार के सदस्य की तरह मानते थे। इसके अलावा प्राण साहब, राज कपूर साहब, संगीत जोड़ी कल्याण जी आनंद जी, बप्पी लहरी के साथ भी उनका रिश्ता बेहद ही प्यारा था। अमिताभ बच्चन साहब के साथ तो खैर वो ये कहते हैं ना, जादुई रिश्ता था और उनका जादू बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन कर रहा था। और आगे बढ़ने से पहले एक और प्यारा सा नगमा आपको सुनाते हैं।

गांव लोहगढ़ ठाकुरांवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज का मैसेज आया है कि ये कार्यक्रम उन्हें बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद।

प्रकाश मेहरा साहब ने 1991 में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित के साथ जिंदगी एक जुआ इस फिल्म का भी निर्माण और निर्देशन किया। वहीं 1993 में आई सुपर डुपर हिट फिल्म दलाल, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती की मुख्य भूमिका थी और इस फिल्म के डायरेक्टर थे पार्थो घोष साहब और निर्माता थे हमारे प्रकाश मेहरा साहब। और मेहरा साहब 2006 में इंडिया मोशन पिक्चर डायरेक्टर एसोसिएशन यानी IMPDA से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उनको मिला था। और इसके बाद प्रकाश मेहरा साहब का निधन 17 मई 2009 को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुआ था, जहां पर उनका निमोनिया से उत्पन्न जटिलताओं के बाद उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और इस तरह से उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। भले ही जो हमारे प्रकाश मेहरा साहब हैं वो आज हमारे बीच ना हो, लेकिन वे अपने गीत संगीत, अपने फिल्मों के माध्यम से और अपने जो उनकी कला है, जो फिल्में आज भी हम उनकी देखते हैं, उसके माध्यम से वे अपने दर्शकों के दिलों में हमेशा रहेंगे। तो इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम समाप्त होने का समय हो गया है। तो अपने रेडियो दोस्त अरुणेश द्विवेदी को दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: ब्रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोतान को श्रुति बुरी की
1: और वंदना की
0: राधे राधे। वंदना,
1: हाँ जी,
0: देखो हम ब्रजवासियों को जीवन कितना बढ़िया है।
1: जी बात तो आप बिल्कुल साची कह रही हो।
0: चाहे कोई ऋतु होए, कोई मौसम होए,
1: हाँ।
0: हम सुबह उठते ही सबसे पहले जामे हैं
1: यमुना जी पे,
0: यमुना जी के घाटन पे बैठ के कितनी शांति मिले, और सबसे पहले जाए के डुबकी लगावे यमुना जी में, और फिर घाट पे बैठ के आरती देखो, चाहे वहाँ पे यमुना दर्शन करो, कितना आनंद आवे है।
1: हाँ जी जी, इनकी लहरन की कलकल की ध्वनि हमारे हृदय को कितने भावे।
0: और देखो वंदना, तुम जानो हो कि ब्रज क्षेत्र में जो मथुरा वृंदावन गोकुल महावन ये जो शीघ्र ब्रज क्षेत्र है, यहाँ में बहुत सारे यमुना नदी के किनारे किनारे घाट बसे हुए हैं, और ये जो प्रसिद्ध घाट हैं इनको धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्व है। तुम जानो हो कौन कौन से घाट है?
1: हाँ जी जी, देखो विश्राम घाट है ना, वो मथुरा में है, सबसे प्राचीन।

0: सबसे प्रमुख और मुख्य घाट माना जाए है। और मान्यता बाकी जी है कि कंस को मारवे के बाद भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे विश्राम किया हो।
1: और या के बाद देखो मथुरा में अस्कुंडा घाट है, स्वामी घाट है, ध्रुव घाट है, बंगाली घाट है। ये सब घाट ऐसे हैं कि इनके पीछे कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई कथा कृष्ण लीलान की इनके पीछे है।
0: हाँ जी जी बिल्कुल सांची कह रही हो आप। देखो वृंदावन में कुछ घाट है, वहां में तो चीर घाट है ना, वहां पे श्री कृष्ण गोपी इनकी वस्त्र चुरायो करते हैं।
1: और जो वृंदावन में ही है केसी घाट, और वहां पे कृष्ण ने केसी नामक राक्षस को वध किया हो, और वहीं पे इनकी भव्य आरती के ताई वो घाट जानो जाए है।
0: हाँ जी जी और राधा घाट है ना, वो प्रेम और भक्ति का प्रतीक है।
1: वही युगल घाट कहवे हैं यहाँ पे, कहवे हैं कि युगल सरकार विश्राम क्यों करते हैं, नित्य विहार क्यों करते हैं या घाट पे। और या के अतिरिक्त एक और घाट है
0: वंशी घाट, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान बंसी बजाते हैं।
1: बिल्कुल ठीक, तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। और या के अतिरिक्त देखो वृंदावन में घाट ही नाए हैं, वहां पे बहुत सारे कुंड और सरोवर हुए हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं, लोग आवे हैं बिनके दर्शन करे हैं, और बिनके पीछे हु कछु न कछु कहानी जुड़ी है। जैसे ब्रजमंडल में अगर बात करें हम तो गोवर्धन में चंद्र सरोवर है।
0: हाँ जी जी चंद्र सरोवर पे श्री कृष्ण राधा जी रास रचायो करते हैं। और जी जी मानसरोवर है ना,
1: हाँ,
0: वो वृंदावन के पास है।
1: और पान सरोवर है नंदगांव में, ब्रह्म सरोवर भी है। और देखो अगर हम घाटन की बात करें तो ब्रह्मांड घाट, गौ घाट, गौ घाट जाए बोले हैं, गोविंद घाट, ठकुरानी घाट, यशोदा घाट, उत्तरेश्वर घाट, बैकुंठ घाट, और विश्राम घाट की तो तुमने बात करी ही, बंगाली घाट की मैंने बात करी ही। या के अतिरिक्त
0: और जी जी जो ब्रह्मांड घाट की बात आप बता रहे हो ना, वहाँ पे तो श्री कृष्ण भगवान ने यशोदा जी को बाल रूप में अपने मुखमंडल में ब्रह्मांड के दर्शन कराए हैं।
1: ब्रजमंडल में मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन और आसपास के क्षेत्रन में भगवान श्री कृष्ण की लीलान से जुड़े कई पवित्र सरोवर हैं, कुंड हैं, और जिनमें से जो प्रमुख सरोवर हैं जिनमें राधा कुंड और श्याम कुंड है, ये ब्रज में बहुत पवित्र मान्य जाए है। और ऐसी मान्यता है कि कृष्ण ने अरिष्टासुर राक्षस को वध करके राधा रानी के संग मिलके या सरोवर को या कुंड को निर्माण किया हो।
0: और जी जी जो कुसुम सरोवर है ना, वो गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में स्थित है, और जो बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक सरोवर है जहाँ श्री राधा जी और कृष्ण जी लीला किया करते हैं।
1: और या के अतिरिक्त देखो मानसी गंगा है जो गोवर्धन में स्थित है, मान सरोवर है ये वृंदावन में स्थित है, यहाँ ऐसा कहवे हैं कि राधे रानी ने मान किया हो।
0: और जी जी विमल कुंड और चंद्र सरोवर तो हैं।
1: हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो। और देखो हमने कितनी अच्छी जानकारी अपने श्रोतान को दे दी है।
0: हाँ जी जी हाँ जी जी जानकारी तो आप खूब दे हो, और पर जानकारी देते रहे हो न्यूनाय के कछु श्रोतान के काजे कछु प्यारे से लोकगीत वो गीत सुनवाओ।
1: अरे हमें वो खूब ध्यान रहे अपने प्यारे प्यारे श्रोतान को।
0: अच्छा।
1: और देखो तुमने बड़े दिनांत जो लोकगीत ना सुना होगा जो हम अपने श्रोतान के ताई लेके आए हैं।
0: अच्छा कौन सा आने को बताइयो
1: जी। हम लेके आए हैं संवेद स्वरण में, और जो लोकगीत है कान्हा गागरिया मत फोड़े।
0: अरे जी जी जी कहाँ थे ढूंढ के निकाल डालो तुमने, बड़ो चोखो काम करो आज
1: तो सुनवाए अपने श्रोता।
0: हाँ सुनवा।

0: प्यारे भैया बहनों, अभी आप जो लोकगीत सुन रहे हैं संवेद स्वरन में। और वंदना, एक बात बताओ,
1: कहा
0: तुम मोकू कछु मोटी सी लग रही हो। मोए ऐसा लग रहे हो तुम कछु बरात फरात ज्यादा खाया ही हो, दावत ज्यादा उड़ाया ही हो।
1: ए जी, तुम नजर मत मारो, बारात में चली गई, दो चार बारात कर ली और खूब लड्डू खाए, खूब एक हलुआ खायो, चक घी को।
0: और जी बताओ, इतनी गर्मी में बारात तो करके आई हो, तो परेशान ना भईगा?
1: ए कौन आए जी, परेशान होते ने, बाद में आराम कर लेते, काहे है वो बारात तो करी आए, वो चोको खाया है।
0: ए मुकु, तो ऐसा लगे पहले तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा लत्ता पहनो, पिनते गर्मी लगे। और फिर अगर कछु लीपा पोती कर लियो और मोड़े पे, तो फिर बातों पसीना आमे, तो गर्मी तो ऐसी लगे कि मन ही ना करे बारात फरात
1: हाँ,
0: में
1: मु
0: जाए
1: पता है तुम
0: को।
1: क्यों कह रही हो, मु पता है तुम जो कह रही हो कि तुम का रही हो हैं। हाँ,
0: ना
1: मैंने मैंने जब फोटो दिखाए का है तुमको, तो मैं गोरी लग रही हूँ, अब मैं तुमको लीपा पोती हटाए गए कारी।

0: लग रही हूँ।
1: ना तुम कारी ना हो, कारी हो तो कन्हैया की प्यारी तो हो, हमारे कन्हैया वो तो कारे हते।
0: हाँ जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं कारी हूँ, जो कि कन्हैया को रूप तुम वो मिल गए
1: ए वैसे हो तुम कारी ना हो
0: हो।
1: और का
0: अच्छा, जी रहने दो, तुम माखन मिश्री लगा रही हो मोगू।
1: ना तुम्हें माखन मिश्री लगाए के का होएगो। मैं तो तुमसे जे पूछ रही कि तुम कहीं बारात में जाए के पछताई तो नहीं।
0: जी, मैं तो नेगुना पछताई, पर जो पछताए ना बिन की बात सुनवाए थे तुम।
1: हाँ मुझे पता है तुम्हारो इशारों का है, तो चलो श्रोताओं हम आपको सुनवाई दे रहे हैं एक खास से वार्ता, हम पछताए बारात में जाए के, और यहाँ के वार्ताकार हैं
0: चंद्र प्रकाश आचार्य।
2: बारात हमारे देश की महान परंपरा है। काऊ जमाने में 15-15 दिना की बारात होती, आदमी पे टेम हतो घटत घटत। अब बारात 1 दिना की रह गई। बरातन को मौसम आते ही बच्चा बूढ़े जवान ताशे बारे बाजे बारे गाड़ी बारे आतिशबाजी बारे खाएबे बारे खुश है जामते। पुराने जमाने में लोगन की पाचन शक्ति जबर हती। एक एक शेर दो दो शेर कोई कोई तो 5 शेर माल खाए जातो। 21-21 11-11 फिर चौका मिठाई के चलते। समय पलटो पेट की ताकत खत्म और फिर रिफाइंड की बहार आ गई। आज तो ऐसा बुरा जमानो है कि बारात में चला चली खाया पी नाच गानो चले। लोग कहें 2 दिन चलें 1 दिन खाएं, ऐसी बारात में मुंह रख जाएं। हमें बरातन के खट्टे मीठे चरपरे अनेक अनुभव होते हैं। कई दफे तोबा करी कान पकड़े कि अब बरातन में न जाएंगे। जाजुक की रीतन कू देख बरातन में जानो बंद कर दियो। काऊ बरात में जाओ नाच को शोर फिर टेम बे टेम खाएबो। रात में ऊधम बरात में बूढ़े जवान है जाए। बरातन की मस्ती जामे आदमी भूल जाए अपनी हस्ती देखते ही बनती। बहुत सोची के बरातन में न जाएंगे पर ऐसी आई एक बरात के फंस गई। मैया बोली लाला लोहरे मामा को ब्याह है तो बरात में टूट ला जानो है। पिछले बरातन के अनुभव के आधार पे हमने मैया थे बड़े बहाने बनाए पर नाए चली बा के सामने। लत्ता तैयार करे जूता पहरे बराती बन के चल दी। बाजगे आए जाते मोटर जानी 9 बजे बारात चलनी। सो ब्रज की बारात बराती 10-11 बजे तक इकट्ठे भई पर बस न आई। बेबस बेटा बारो बावरो सो चक्कर काटे। दूल्हे काऊ बात पे मटक गयो नेल के चक्कर में जीजा उखड़ गयो। रूसा मटकी भई राजीनामा भई। दोपहर के 12 बज गए भूखे बराती बर्रामन लगे। तवई आई गई बस बावरे से धस परे 60 की जगह 70 घुस गए। जमुना मैया की जय बोली गिरिराज बाबा की जय बोली मोटर चली। बरातीन को ऊद सूझी एक बूढ़े बोले बरात में जा रहे हो नेक तो मस्ती हों दो। सोई तो पीछे थे एक केला को छिलका उनकी गंजी टाट पे परो। वे बर्राम थे भय बैठ गए मोटर भाग रही और बराती बक रही। हम चुपचाप बैठे हमारे सामने की सीट पे एक रिश्तेदार बुढ़ऊ बैठे हते। बिनके संग 2 पट्ठा उनके बेटा बैठे हते। तभी काका जी की चांद पे केला को छिलका लगयो। सोई उनके बेटा हल्लन और ढिल्लन बिगड़ पड़े। बहुत कहन सुनन है गई राम राम कह के बरात टूंडला आ गई। 4 बज गए बराती ने अपनी अपनी जगह लई। बेटी वारे ने खूब खातेदारी को इंतजाम कर रखो। नाश्ता पे बराती टूट पड़े। भूखे ब्रजवासी पलेटन पे पलेट डारत चले गए। खाए पी के तन चह गए। बाजे 8 से 10 के हते। सो अब बरातीन को मिजाज बनाए की परी। कोई नहायो काऊ ने हाथ मुंह धोयो और काऊ ने जूतान पे पॉलिश करवाई। क्रीम पाउडर लगाए खूब इत्र लगाए बराती तैयार होन लगे। शिवजी की सी बरात है गई। बाजे बजन लगे पर चले कौन बरातीन के पैरन में तो जानी नहीं। गले चटक रहे आंखें झुक रही ब्रह्मांड घूम रहे हो। ऐसो लगो बेटा अब मरे के अब मरे। कमरा को तारो कौन लगावे जन्माशय में को रहे। बेटी वारे ने सब इंतजाम किया। बारात चली कोई बाजेन के संग नाचवे लगो। कोई नाचते नाचते गिर पड़ो जो गिरो बाय उठाए वे बारो न मिलो। कोई नेक चले और बैठ जाए। सबरे बरातीन के लगता दूर में है गई। गाम बारे ने बारात की जे हालत देखी तो बहु मजा में आए गए। काऊ ने कीच फेंकी तो काऊ ने मट्टी, जे हो सुनाया तो कि मट्टी।

0: कहां थे और कीच कित्ते आई, ले देखे रोते पीटते बारात बेटी बारे के दरवाजे पे आई। दरवाजो भयो बारात जेम्बे बैठी, बड़ी सी पत्तर 11 मिठाई, 4 सकोड़ा जिनमें 2 पतरे साग, 1 रायतो, 1 में बासुंदी, सौंठ, काजू की नमकीन, फूली फूली करारी करारी कचौड़ी, रंग बिरंगी पूरी, कई तरह की सब्जी। आजकल के कैलेंडर छाप छोरा छाप रहे तो इतने माल को देख घबराए जाएंगे। बारात को दृष्टि देख वे जो घर तो बैयर बानी छत्तन पे थे देख रही, बेटी बारो पड़ोसन बारे नाते रिश्तेदार या नाटक को देख रहे और हंस रहे। बरातीन पे खानो ना खाए जा रहे हो, कोई हंसे जा रहे हो। शेष में 1.5 घंटा में बारात जम के उठी, रोते पीटते जन्माष्टमी में आए, जाने कौन सी घड़ी के घर से चले क्या मुसीबत पे मुसीबत आए रही। जन्माष्टमी में आते ही ज्यादा खाए मरे रहते जे बराती, सो उल्टी करन लगे, हाय मचन लगी। वृंदावन वाले पंडित जी छत पे हुकरी देकर रोमन लगे, उनके दोनों बेटा हल्लन और ढिल्लन उनके गले से लिपट गए, जोर जोर से डगरावन लगे, हाय महाराज जी, हाय काका जी, हाय मेरे हल्लन, हाय मेरे हल्लन, मोगू वृंदावन ले चलो। बेटी बारे पे खबर पहुंच, खजांची साहब डॉक्टर को लेके आए। पंडित जी की हालत देख डॉक्टर बोले, जल्दी करो इनको अस्पताल पहुंचाओ। जा बात है सुन, पंडित जी और जोर जोर से चीखन लगे, बोले बेटा ढिल्लन जे शरीर वृंदावन में बड़ो भयो, टूडला में जा रहे हो है। मिलन जी बोले, काका जी धीरज धरो, मैं टैक्सी लाऊं वृंदावन पहुंचाऊं, आप वृंदावन में ही शरीर शांत करियो। पंडित जी रोमते भय बोले, बेटा जीव लड़खड़ाए रही है, पुत्री ऊपर चढ़ी जा रही है, जीवे की आशा ना है, तू अपनी मैया ते राम राम कह दीजो, बाकू प्रेम ते रखियो, सब भैया प्रेम ते रहियो, मैया को दुख मत दीजो। ऐसा प्रलाप करके पंडित जी को नींद आ गई, दो बेटा हूं काका जी के गले ते लिपट के लेट गए। रात के तनातन 3 बजे 5-7 मन चले, बदमाश बराती उठे, जन्माशे की बत्ती बिन ने गोल कर दई, एक ने काजर की डिबिया ते काऊ के एक मूछ लगाई, काऊ के दो, काऊ के बिंदा और काऊ के चंदा लगायो, एक ने लाल रंग तेल में मिलाए, लोगन के कपड़ान पर डाल दियो, केला रसगुल्ला बिस्तरन पर डाल दिए। अपनी लीला करके इन मन चले बदमाश बराती ने पहले तो सबके जूता पानी पीवे की टंकी में डाल दिए, फिर दीपक राग शुरू कर दिए, कुल्ला सकोरा फिकन लगे, बराती जगे एक दूसरे की शक्ल देख देख के हंसन लगे, वो भाई देख के हंसे, वो भाई देख के हंसे, कछु लड़न लगे, कछु हंसन लगे, कछु भगन लगे, कछु बकन लगे। हम बहुत पछताए बारात में जाए के, भैयाओ तुम हूँ कबहू न कबू तो बारात में जाए के पछताए ही होगे, सच्ची मानो हम तो बहुत पछताए बारात में जाके।
1: अभी भैया बहनाओ आप वार्ता सुन रहे हैं, हम पछताए बारात में जाएगी, या कि वार्ताकार है चंद्र प्रकाश आचार्य जी। बताओ वंदना, तुम बारात में गई और गर्मी इतनी हती, मुझे तो ऐसा लगे कि अगर बारात पहुंची हुए और वहां पे ठंडो ठंडो सीरो सीरो शरबत मिल जाए तो कितना मजा आवे।
2: हाँ जी, जब नाचे कूदे का है ना हम, तो माँ बहुत ज्यादा पसीना पसीना आए गए और सांस फूलवे लगी तो। पर लेकिन बिन छोरी वाले ने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है हमारे काज है, शरबत खूब दियो।
1: देखो छोरी वाले तो खूब मान सम्मान करे ही है
2: हाँ
1: बारातीन को। और देखो एक बात और है जी, जो शरबत होयो करे ना, तो अगर बारात में ना मिले तो घर पे आई के पी लो घर के बने
2: हाँ और का।
1: शरबत। तो तुम घर पे कछु शरबत फरबत बनाओ।
2: हाँ जी, चौना बनाऊं, देखो आम को पन्ना बना लूं, और एक दुनिया भर के जो चले ना गर्मी में फल, इनके भी पन्ना बना लूं।
1: अच्छा तो जी बता आम पनाव कैसे बनाओ।
2: ए जी, अमिया को उबाल के बनाए लियो, चाहे भूंज के बनाए लियो, बामे नमक डाल लियो, कालो नमक डाल दियो, और बामे एक जीरो डाल
1: बोलो
2: दे भून
1: जीरो
2: के।
1: डाल लो और नहीं तो पुदीना की पत्ती वो डाल रहे
2: अरे
1: हो।
2: बहुत स्वाद लगे जी।
1: हाँ और चीनी तो तुम भूल ही गए।
2: चीनी डालो, मीठो डालो, बूरो डाल दो, कछु डाल लो जी, बड़ो स्वाद लगे। तो जाके मारा मैं चीनी ही भूल गई।
1: पर तुम्हें एक बात बताऊं वंदना,
2: का
1: मोकू तो जे मौसमी फल है ना, फल से
2: हाँ
1: आलू बुखारा
2: हाँ जी
1: और वो लीची और या के बाद बेल पत्तर जो है
2: हाँ और
1: बिन के
2: शहतूत
1: शहतूत, और
2: हाँ
1: बिन के तो मुकु बहुत ही भावे
2: जी,
1: शरबत।
2: गर्मी फिर लगे ही ना है, ऐसा लगे कि देखो जी, खाए भी कुतना मिले, तो यूं चो लगे कैसा दूसरा मौसम आवे बुई आतो रहे ऐसा लगे।
1: हाँ और एक बात और है, ब्रजवासी के ताई तो छाछ और लस्सी तो या समय ऐसी लगे कि जैसे अमृत होए।
2: हाँ जी जी हमारे कन्हैयों तो खूब छाछ मठा पीते।
1: हाँ तो तुम ऐसे मटक मटक के काई को बोल रही हो।
2: ए जी जी हम तो सब ब्रजवासी ऐसी मटक मटक के बोले, ऐसी मटक मटक के चाले।
1: हाँ मुझे सब समझ में आ रही है, तुम मटक मटक के तो चलती तभी तो कन्हैया तुम्हारी मटकी फोड़ो करते।
2: जी जी हम तो कन्हैया के दीवाने हते, जे मार तो मटक मटक के चलते कहे कन्हैया हमारी मटकी फोड़े।
1: हाँ तो ऐसा ही एक लोकगीत ना अपने श्रोतान को सुनवाई दियो जाए।
2: सुनवाई दियो
1: तो सुने हैं मदन मोहन ब्रजवासी की मधुरवाणी में जी लोकगीत।

0: श्रोताओं, अब भैया आपने मदन मोहन ब्रजवासी के सुर में या मधुर लोकगीत को आनंद लियो।
1: तो श्रोताओं, या के संग गई आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम अब संपन्न हुए है।
0: मुकु यानी के वंदना को
1: और मोई यानी श्रुतिपुरी को देव अनुमति।
0: राधे राधे।
1: कार्यक्रम प्रस्तुत करता
0: विवेक कुमार तोमर।

अभी आप ब्रज माधुरी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं हमारे नन्हे मुन्ने श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो किड्स।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और समय हो गया है प्रोग्राम रेडियो किड्स का। मैं वंश दलाल और मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त।
1: मैं काशवी आहूजा।
2: मैं आशना पुरी।
3: मैं शिवांश राय।
4: मैं रिद्या शाह।
5: मैं सौम्या सिंह।
6: मैं राध्या शर्मा।
7: मैं निविता छेत्री।
8: मैं लक्षिता शर्मा।
9: मैं अनाया जैन।
10: मैं सौम्या।
11: मेरा नाम चिराग गुप्ता है।
12: मेरा नाम काविड शर्मा है।
13: मेरा नाम अयान जैन है।
14: मेरा नाम तुषार अत्री है।
15: मेरा नाम आर्यन कुमार है।
16: मेरा नाम अतिक्ष राजपूत है।
17: मेरा नाम खुशी शर्मा है।
18: मेरा नाम अव्युक्त अग्रवाल है।
19: मेरा नाम अंशपाल है।
2: अगर आप इस वक्त चाय पी रहे हैं, काम के लिए रेडी हो रहे हैं या ट्रैफिक में फंसकर सिग्नल का वेट कर रहे हैं तो बस एक मिनट के लिए रुक जाइए, क्योंकि कुछ पल सिर्फ शुरू नहीं होते, वो दिन बना देते हैं, वो वाइब सेट कर देते हैं। और आज बिल्कुल वैसा ही एक खास पल है।
0: मैं हूँ आराध्या। आज का ये प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज रेडियो स्टेशन पर कब्जा है हम बच्चों का।
4: बिल्कुल सही कहा आराध्या। और हम सिर्फ बच्चे नहीं हैं, हम हैं CRPF पब्लिक स्कूल रोहिणी के छात्र।
5: आज हम बात कर रहे उस देश की जिसे आजाद हुए 89 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आजादी की ज्वाला 150 वर्ष पहले ही वंदे

0: मातरम के रूप से धधकना शुरू हो गई थी।
1: दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ, जिसमें यह गीत पहली बार आया था, वो 18वीं सदी के सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित था। यानी वह गीत महज एक कविता नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक सशस्त्र क्रांति की गूंज थी। हैरानी की बात यह है कि अंग्रेज इस गीत से इतना डर गए थे कि उन्होंने इसके गाने और छपने दोनों पर बैन लगा दिया था। उस दौर में अगर आप सड़क पर वंदे मातरम बोल देते तो सीधे जेल की हवा खानी पड़ती। पर कहते हैं ना, जिस चीज पर पाबंदी हो उसका क्रेज और भी ज्यादा बढ़ जाता है। क्रांतिकारियों ने तो विदेशों में तिरंगे झंडे पर वंदे मातरम लिखवा दिया। यह महज एक नारा नहीं, आजादी का विजुअल सिंबल बन गया था। अब आते हैं 24 जनवरी 1950 की उस ऐतिहासिक दिन पर, जब संविधान सभा बैठी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साफ लफ्जों में कहा कि भले ही जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है, लेकिन वंदे मातरम को भी उसके बराबर का सम्मान दिया जाएगा, इसलिए आज इसे हमारा राष्ट्रगीत कहा जाता है।

0: दोस्तों, अब हम बात करेंगे वर्ल्ड कम्युनिकेशन डे की, जिसने 7 समंदर पार बैठे लोगों को भी हमारे ड्राइंग रूम तक पहुंचा दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? तो चलिए आज मैं आपको एक अमेजिंग सी बात बताती हूँ। आज हम 5G के युग में हैं, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन का असली जन्म आज से 161 साल पहले यानी 17 मई 1865 में हुआ था। उस वक्त ना इंटरनेट था ना कोई स्मार्टफोन, सिर्फ एक तार के जरिए संदेश भेजे जाते थे, जिसे आज हम टेलीग्राफ कहते हैं। इसी दिन पेरिस में इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन की नींव रखी गई थी, जो आज दुनिया की सबसे पुरानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से एक है। तो अब तुम बताओ राध्या, क्या कहना चाहती हो?
1: सोचो राध्या, उसे छोटे से तार से शुरू हुआ सफर आज सैटेलाइट और ऑप्टिकल फाइबर तक पहुंच गया है। आज दुनिया सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है, और इसमें हमारा रेडियो भी एक बहुत बड़ी कड़ी है, जो बिना किसी डाटा पैक के आप तक हर जानकारी और मनोरंजन पहुंचाता है। तो आज अपने फोन या रेडियो को एक थैंक यू जरूर बोलिएगा, क्योंकि वही तो वो जरिया है जिसने हमें अकेला नहीं होने दिया।

0: अब समय है एक सुंदर और गर्व से भरी प्रस्तुति का। अगली प्रस्तुति लेकर आ रही है काशवी, कविता के साथ जिसका विषय है मेरा प्यारा भारत। ये कविता हमारे देश की एकता, संस्कृति और शान को दर्शाती है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए काशवी का।
1: मेरी कविता का नाम है मेरा प्यारा भारत अपना। इस संसार की अद्भुत रचना, इस संसार की अद्भुत रचना मेरा प्यारा भारत। इस भारत की धरती से निकला, इस भारत की धरती से निकला अप्रतिम ज्ञान प्रकाश, अप्रतिम ज्ञान प्रकाश। ऋषियों मुनियों की तपोभूमि, ऋषियों मुनियों की तपोभूमि और मानवता का आस। वेद उपनिषद पुराणों ने दिया, वेद उपनिषद पुराणों ने दिया विश्व को ज्ञान भंडार। योग आयुर्वेद बना हर मानव के लिए अनुपम उपहार, योग आयुर्वेद बना हर मानव के लिए अनुपम उपहार। जीवन जीने की कला को गीता ने दिया आधार, जीवन जीने की कला को गीता ने दिया आधार। शांति हो त्रिभुवन में, शांति हो त्रिभुवन में, प्रकृति के कण कण में, प्रकृति के कण कण में। जल में शांति, थल में शांति, शांति हो अंतरिक्ष गगन में। जल में शांति, थल में शांति, शांति हो अंतरिक्ष गगन में। यही है चिंतन, यही है सपना मेरा प्यारा भारत अपना। यही है चिंतन, यही है सपना मेरा प्यारा भारत अपना। तेन तेन पुन

सीखा, हमें उपनिषद ने सिखलाया, महावीर और बुद्ध ने करुणा दया का मार्ग बतलाया, अहिंसा के पुजारी बन गांधी ने सत्य का मार्ग बतलाया, अब्दुल कलाम हो या मदर टेरेसा ने मानवता को समझाया, अब्दुल कलाम हो या मदर टेरेसा ने मानवता को समझाया। विचार भेद हो सकता है, विचार भेद हो सकता है, लेकिन मन भेद नहीं करना है, लेकिन मन भेद नहीं करना है, यही भारत भूमि का सपना है, मेरा भारत अपना है, यही भारत भूमि का सपना है, मेरा भारत अपना है। धन्यवाद।

0: दोस्तों, अब प्रस्तुत है राजा राम मोहन रॉय पर एक स्किट।
1: नहीं नहीं, मुझे चिता पर नहीं बैठना।
2: यही हमारा धर्म है, इस विधवा को अपनी पति की चिता पर बैठना ही होगा, यही संस्कार है।
1: नहीं, ये संस्कार नहीं, ये हत्या है। कौन सा धर्म एक निर्दोष की बलि मांगता है? शास्त्रों का ज्ञान कीजिए, वो प्रेम सिखाते हैं, क्रूरता नहीं।
2: तुम हमें सिखाओगे? तुमने अंग्रेजी पढ़ ली तो क्या धर्म भूल गए?
1: मैंने अंग्रेजी पढ़ी ताकि मैं दुनिया को जान सकूं, और उपनिषद पढ़े ताकि अपने मूल को पहचान सकूं। तर्क ही मेरा ईश्वर है।
3: राजा राम मोहन रॉय ने सिर्फ सती प्रथा का ही विरोध नहीं किया, बल्कि ब्रह्मो समाज की भी स्थापना की, बाल विवाह का विरोध किया और महिलाओं के लिए शिक्षा का द्वार खोला। उन्हें मॉडर्न इंडिया का जनक भी कहा जाता है।
4: वाह, क्या व्यक्तित्व था। दोस्तों, क्या तुम्हें पता है राजा की उपाधि उन्हें मुगल सम्राट ने दी थी? वो कई भाषाओं के विद्वान थे, संस्कृत, पर्शियन, अरबिक और इंग्लिश। आज CRPF स्कूल रोहिणी के छात्र इस किट के माध्यम से बस यही बताना चाहते हैं कि बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है।
3: राजा राम मोहन रॉय ने हमें सिखाया कि तर्क के बिना कोई भी परंपरा सिर्फ एक बोझ है। उनकी विरासत आज भी हमें एक बेहतर समानतावादी समाज बनाने की प्रेरणा देती है।
4: तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा छोटा सा सफरनामा?

अभी हमारे नन्हे मुन्हे श्रोता सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो किड्स। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर।

आइए आपको जानकारी देते हैं हमारी आज की सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे स्वांग, किस्सा अजीत सिंह राजबाला का। कलाकार होंगे कर्मपाल शर्मा, मंजू शर्मा और साथी। वहीं शाम 5:10 पर आप सुन सकते हैं लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी।

सभी तरह के खेलों से जुड़ी हुई खबरों पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं शाम 5:30 बजे। और ग्राम संसार पत्रोत्तर पर आधारित लोक संगीत पर फरमाइशी कार्यक्रम

खेती किसानी पर आधारित कार्यक्रम कृषि जगत, ये आप सुन सकते हैं शाम 7:05 पर।

कवि गोष्ठी, इस कार्यक्रम का प्रसारण रात्रि 8 बजे किया जाएगा और इसमें प्रतिभागी कवि होंगे श्री शिवशंकर, ज्वाइंट डायरेक्टर रेलवे, वरिष्ठ कवि हैं ये। इसके अलावा श्री सुरेश कुमार, सुपरिटेंडेंट जीएसटी विभाग, ये भी वरिष्ठ कवि हैं, और श्रीमती संगीता वर्मा, युवा कवयित्री। संचालन करेंगी श्रीमती सुधा कुमारी, वरिष्ठ कवयित्री। आप इस कवि गोष्ठी कार्यक्रम को सुन सकते हैं रात्रि 8 बजे। नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, ये आप सुन सकते हैं रात्रि 9:10 पर, और अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा, इस कार्यक्रम का प्रसारण रात्रि 10 बजे किया जाएगा। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश, इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं रात्रि 11:10 पर। तो ये थी जानकारी आज की हमारी शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक शाम के 4 बजने ही वाले हैं। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम।

Yeah!

0: 的理广播电台听众朋友们，今天的普通话节目播送到这里，谢谢收听。
1: अगला कार्यक्रम खेल खिलाड़ी खिलाड़ी खेलों का आईना

0: जी हाँ, घड़ी की सुई ने इशारा कर दिया है, 5:30 का समय चला है और दिन है आज रविवार। खेल खिलाड़ी हमारा दैनिक कार्यक्रम, जिसे आज लेकर मैं हूँ आपके साथ अतुल, और मेरे साथ हैं
1: मैं हूँ रेणु गुप्ता, और स्वागत करती हूँ आपका खेलों की जानकारी से भरपूर इस कार्यक्रम में।
0: जी हाँ, स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का। और रेणु, बहुत सारी इवेंट्स हैं जिस पर आज हमको बात करनी है, श्रोताओं को जानकारी देनी है, जिसमें अगर आप बात करें तो सबसे पहले थाईलैंड ओपन बैडमिंटन की बात करेंगे, जहां पर भारत की युवा जोड़ी ने आज मिक्स्ड मेंस डबल्स में पार्टिसिपेट किया और साथ में और भी फाइनल्स मुकाबले खेले गए। इसके अलावा आईपीएल 2026 में कल एक अहम मुकाबला खेला गया, आज दो मुकाबले खेले जाने हैं, उस पर भी बात होगी। एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप गांधीनगर में आज खत्म हुई है, उस पर भी जानकारी देंगे। इसके अलावा डायमंड लीग 2026 शंघाई से रिपोर्ट आपको देंगे। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की अंडर 18 मेंस और विमेंस टीम हॉकी जो खेल रही है उसके बारे में श्रोताओं को बताएंगे। इसके अलावा रोमानिया में चेस चल रहा है, जहां पे राउंड 3 के मुकाबले खेले गए और राउंड 4 के मुकाबले खेले जाने हैं। इसके अलावा हमारा साप्ताहिक जो एक अंक होता है संडे ऑन साइकिल, उस पर भी चर्चा होगी, और इसके अलावा अन्य खेल खबरें, इन सब को लेकर आज के इस कार्यक्रम को आगे लेकर चलेंगे।
1: जी हाँ बिल्कुल अतुल, और क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं तो मुझे लगता है हम जल्दी से अपनी खास खबरों के साथ शुरुआत करते हैं।
0: जी हाँ, सबसे पहले अगर बात करें तो बैडमिंटन की बात कर लेते हैं। थाईलैंड में जो चैंपियनशिप हुई उसमें आज लगभग 5 फाइनल मुकाबले खेले गए, जिसमें विमेन्स सिंगल, मेन्स सिंगल्स, विमेन्स डबल्स, मेन्स डबल्स और मिक्स डबल्स। और के लिए अच्छी खबर यह थी कि भारत की युवा मेंस जोड़ी ने वहां पे फाइनल में पार्टिसिपेट किया और सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज उपविजेता रहे। थाईलैंड के निमिबुत्र स्टेडियम में 53 तक चले फाइनल में उन्हें इंडोनेशिया की जोड़ी लियो रॉली कर्नांडो और डेनियल मार्टिन से 21-12 और 25-23 से हार का सामना करना पड़ा। मुकाबला काफी दिलचस्प था, काफी हमारे खिलाड़ियों ने जो है वो उस तरीके से फाइट की और मुकाबला रोचक बनाया। पहले गेम में सात्विक और चिराग लय हासिल करने के लिए संघर्ष करते दिखे और इंडोनेशियाई जोड़ी ने हालांकि 21-12 से आसान जीत दर्ज की, लेकिन भारतीय जोड़ी ने दूसरे गेम में शानदार वापसी की और मुकाबले को रोमांचक अंजाम तक पहुंचाया। लगातार 4 चैंपियनशिप पॉइंट बचाने के बाद वे अंत में 25-23 से गेम हारे और मैच भी हार गए और इसके साथ रजत पदक से संतोष करना पड़ा। तो ये तो ही भारतीय जोड़ी की, और इसके अलावा और भी फाइनल खेले गए। रेणु, क्या स्कोर रहे, कौन विजेता रहे?
1: बिल्कुल, जैसा आपने कहा अतुल कि आज 5 मुकाबले खेले गए हैं, तो अगर हम बात करें मेंस सिंगल की तो मेंस सिंगल में डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसन ने थाईलैंड के कुणलावुत वितिदर्सन को 9-21, 24-22 और 21-18 से हराया।
0: हाँ, ये तो रही मेंस सिंगल्स की बात, लेकिन अगर हमने भारतीय युवा जोड़ी की बात करी तो मैच के बाद क्या प्रतिक्रिया थी सात्विक साई रेड्डी की और चिराग शेट्टी की, आइए वो सुनवा देते हैं अपने श्रोताओं को।
2: आई थिंक डिड स्टार्ट ऑफ दैट वेल, बट दिस वाज क्वाइट फास्ट एंड वी वर ट्राइंग टू कीप इट लो एज मच एज पॉसिबल, बट वी वर ऑलवेज ऑन द बैक फुट, बट सेकंड गेम वी वर टेकिंग द शटल अ लॉट हायर एंड मिक्सिंग इट अप विद सम फ्लिक्स एज वेल, बट इन द एंड इट वाज़न्ट इनफ।
3: First side, we played on the faster side. It was a little difficult for us to control, and they took us into their game style, and it was tough. Yeah. But it took time for us to adjust the way we played. I think second game, I think a little bit sharper in those few points, maybe, but I

0: quite fast. So I think when the shuttles were new, it was really, really fast, and it was very difficult to adjust. No. And the rallies were so fast that you didn't really know how hard you need to hit to control it. But it was quite fast today compared to the rest of the race.
1: Yeah, except today, I think the way we played, I think we are getting that back, that touch. I think we should believe more and be confident on court rather than playing 50-50. I think so. I feel like from the starting onward, we are 50 on when we enter on the court. But before, 1 year back, 2 year back, we are always like 90% confident.
2: Okay.
1: Maybe, but we are getting back that confidence. So happy that how we played this week, and it's more about mental rather than physical, I think. But things have started working to ourselves. I think maybe sooner or later, I think very soon, we'll be on the winning side rather than the second. But yeah, happy.
3: और ये सात्विक साई रेड्डी रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को सुना मैच के बाद उन्होंने क्या कहा. और रेणु, जो अन्य फाइनल मुकाबले खेले गए उस पर अब जानकारी दे देते हैं अपने श्रोताओं को.
4: जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको मेन सिंगल्स का बताया, तो उसी तरह अगर वुमेन सिंगल्स की अगर हम बात करें अतुल, तो यहां पर जापान की अकाने यामागुची ने चाइना की चेन युफेई को 21-14 और 21-18 से हरा कर जो मैच है वो अपने नाम किया. वहीं मेंस डबल का तो हम जान ही चुके हैं कि मेंस डबल में जो विनर रहे हैं वो लियो रोली कार्नांडो और डेनियल मार्थिन, जो कि इंडोनेशिया के हैं. और हमारे भारत का प्रदर्शन इसमें काफी शानदार रहा, जिसमें सात्विक साई राज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, जिनको अभी आपने सुना, वो रनर अप रहे हैं. वहीं अगर विमेन्स डबल की बात करें तो चाइना की बाओ लिजिंग और काओ जिहान ने जापान की रिन इवानागा और जापान की नाकानिशी को 21-16 और 21-19 से हराया. बात करते हैं मिक्स डबल्स की, तो मिक्स डबल्स में जो विनर रहे हैं वो रहे हैं डेनमार्क के मैथियास क्रिस्टियानसेन और एलेक्जेंड्रा बोजे की जोड़ी, जिन्होंने चाइना के जू यी युन और ली क्वान की जोड़ी को 21-17 और 21-15 से हराया. तो ये तो रहा हमारा आज का थाईलैंड ओपन का ये पूरा रिपोर्ट हमारे पास.
3: जी हाँ, और क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल 2026 इस समय चल रहा है, जिसमें आज एक अहम मुकाबला खेला जा रहा है पंजाब सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में. इसके अलावा शाम को भी एक मुकाबला खेला जाएगा और कल एक मुकाबला खेला गया था. लेकिन पहले ताजा स्कोर बता देते हैं, पंजाब और आरसीबी के बीच जो मैच खेला जा रहा है, एचपीसीए स्टेडियम में यह मैच खेला जा रहा है, जहां पर आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 222 रन बनाए हैं. अगर बात करें तो विराट कोहली ने 37 गेंदों पर 58 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के भी शामिल थे. इसके अलावा देवदत्त पडिकल ने 25 गेंदों में 45 रन का योगदान दिया. वेंकटेश अय्यर ने एक अहम पारी खेली, जिसमें 40 गेंदों में 73 रन, जिसके अंदर 8 चौके और 4 छक्के भी शामिल थे. और टिम डेविड ने अंत में ताबड़तोड़ 12 गेंदों में 28 रन बनाए. ये था आरसीबी का स्कोर. और अगर ताजा स्कोर की बात करें तो पंजाब 2 ओवर में 16 रन पर 1 विकेट गंवा चुकी है, और मैच जीतने के लिए उन्हें अभी भी 207 रन की दरकार है. तो ये देखना होगा कि शाम होते होते कौन सी टीम मैच जीती है और प्लेऑफ की दौड़ में आगे क्या संभावनाएं बनती हैं. और अगर बात करें, कल एक अहम मुकाबला खेला गया केकेआर और जीटी गुजरात टाइटंस के बीच में, उस पे आइए सुनवाते हैं मेरे साथी रेणु की रिपोर्ट.
4: कल आईपीएल 2026 में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए बेहद रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हराकर प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा. इस हार के साथ गुजरात की लगातार 5 मैचों की जीत का सिलसिला भी टूट गया. गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन केकेआर के बल्लेबाजों ने इस निर्णय को पूरी तरह गलत साबित कर दिया. कोलकाता ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर भी है. टीम की ओर से फिन एलन ने सिर्फ 35 गेंदों पर 93 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 10 छक्के और 4 चौके शामिल रहे. युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी ने 44 गेंदों पर नाबाद 82 रन बनाकर अपने आईपीएल करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली, जबकि कैमरून ग्रीन ने सिर्फ 28 गेंदों पर नाबाद 52 रन बनाकर टीम को मजबूत फिनिश दिया. रघुवंशी और ग्रीन के बीच तीसरे विकेट के लिए 108 रनों की तेज नाबाद साझेदारी हुई.

0: गुजरात की ओर से मोहम्मद सिराज और साई किशोर को एक एक विकेट मिला। 248 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस ने भी दमदार जवाब दिया। कप्तान शुभमन गिल ने 49 गेंदों पर 85 रन बनाए, जबकि जोस बटलर ने 57 रन और साई सुदर्शन ने चोटिल होने के बावजूद वापसी करते हुए नाबाद 53 रन की शानदार पारी खेली। हालांकि बढ़ते रन रेट के दबाव में गुजरात की टीम 20 ओवर में 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। केकेआर की जीत के हीरो रहे अनुभवी स्पिनर सुनील नरेन, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 29 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
1: जी हाँ, और आईपीएल में जो कल का मुकाबला खेला गया उसमें फिन एलन ने ताबड़तोड़ पारी खेली 35 गेंद में 93 रन। तो आइए सुनते हैं उन्होंने मैच के बाद क्या कहा।
2: Look, I think it depends on the wicket, right? Today it was definitely tricky at the start. We knew that was going to be the case. Two of probably the best opening bowlers in the comp as well. So I think I just, to be honest, had a plan of, you know, just hit what I got. And if I didn't get the ball I wanted, just try and get off strike or just not get out, really. So it was one of those wickets. And then, yeah, I just wanted to be there for a long time. Especially once Jinx got out, I knew I had to take a bit of responsibility. Yeah, I think it's just for me keeping my intent early, trying to get in good positions. If it's there, try and hit it for 4 or 6, and if it's not, just try and get off strike, really. I guess for me, I'm just trying to get in stronger positions so I can be more consistent. You know, that's going to help me combat the ball moving off the wicket and swing. So that's the plan, really, just try and keep it simple. Look, I think as a team, what we've done really well this whole tournament is stay composed. You know, we had a tough start and the dressing room was really calm. And I think that's credit to the support staff and Jinx as well, feeding that down. It's infectious for the rest of the group. So credit to them. And, you know, we just take it game by game. You know, we went 4 from 4 through the middle there, lost one, and we're back up again with another win. So I think, you know, it's pretty simple. We need to win the last two to have any chance of qualifying. So for us, we just take it game by game, keep working hard at trainings and doing our thing and hope for the best.
1: फिन एलन को आपने सुना कल मैच के बाद उन्होंने क्या कहा। और आईपीएल टूर्नामेंट जो है वो अब रोमांचक अपने मोड़ पर पहुंच चुका है। प्लेऑफ की दौड़ के लिए लगभग अंतिम मुकाबले रेनू खेले जा रहे हैं और आज उसी क्रम में एक अहम मुकाबला खेले जाने वाला है, दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। आइए सुनवाते हैं आज के मैच पर क्या संभावना है।
0: आईपीएल 2026 में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच बेहद अहम मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों के लिए मैच प्लेऑफ के दौड़ के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस सीजन में उतार चढ़ाव से गुजरी है, लेकिन घरेलू मैदान पर टीम का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा है। कप्तान अक्षर पटेल से एक बार फिर ऑलराउंडर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। बल्लेबाजी में पृथ्वी शाह, ट्रिस्टन स्टब्स और अभिषेक पोरेल पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, जबकि गेंदबाजी में कुलदीप यादव और मुकेश कुमार टीम के प्रमुख हथियार होंगे। वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम इस सीजन में संतुलित दिखाई दी है। कप्तान संजू सैमसन के अलावा यशस्वी जायसवाल और रियान पराग ने बल्लेबाजी में अहम योगदान दिया है। गेंदबाजी में ट्रेंट बोल्ट और संदीप शर्मा नई गेंद से दिल्ली के बल्लेबाजों को चुनौती दे सकते हैं। दिल्ली की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, लेकिन मैच बढ़ने के साथ स्पिन गेंदबाजों की भूमिका भी अहम हो सकती है। ऐसे में मध्य ओवरों की रणनीति दोनों टीमों के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। अंक तालिका की स्थिति को देखते हुए दोनों टीमें जीत हासिल कर प्लेऑफ की ओर मजबूत कदम बढ़ाना चाहेंगी। ऐसे में दर्शकों को एक रोमांचक और हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद रहेगी।
1: और ये तो हुई आज के मैच की बात। और ताजा स्थिति अगर पॉइंट्स टेबल की जान लें आईपीएल में रेणु, तो आरसीबी जो है वो इस समय 16 पॉइंट्स के साथ, जी हां 12 मैच खेले हैं जिसमें से 8 जीते हैं और 4 हारे हैं, 16 पॉइंट्स के साथ टेबल में टॉप पर है। इसके अलावा गुजरात टाइटंस जो है 13 मैच के बाद 16 पॉइंट्स हैं, उनके 8 मैच जीते हैं, 5 मैच हारे हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: na tutakuwa nani tena hapo kesho mpaka hapo.
1: Hey, Dr. Ramesh Kumar, Geeta Rani, Gagandeep और गुड्डू और उनका पूरा परिवार.
2: इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति और सुमन देवी की.
1: और ये है दिल्ली, ये का कलानर दिल्ली से पत्र मिला है राजनाथ सिंह प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी और ये बेहर वाला खुर्द हिसार से है. ये है बलवंत जाखड़, ममता जाखड़, प्रिया, हिमानी, शिवानी और उनका पूरा परिवार.
2: और ये फरमाइश हमें मिली है हनुमानगढ़ टाउन से, इसको भेजने वाले सुल्तान सिंह, कृष्णा, रामचंद्र और उनका समस्त परिवार. तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं बलराम बंसल से ये रागनी.

0: सुनील भाई, ये तो भाइयों ने राग नहीं सुनी अपनी पसंद पर बलराम बंसल से। और देखिए, आज भाई विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस के साथ साथ आज हम विश्व उच्च रक्षा दिवस भी मना रहे हैं।
1: जी
0: और इस दिवस को जो मनाने का उद्देश्य है यही है कि भी देखिए, इसको साइलेंट किलर कहा जाता है, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर, और इसके खतरों के प्रति जो बचाव प्रति लोगों को जागरूकता लाने के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है। और साथ ही देखिए भाई, इस वर्ष के अगर थीम की बात करें तो इस वर्ष का जो थीम यानी विषय रखा गया है, उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें।
1: बस छोटी छोटी कुछ बातों का अगर ध्यान रखेंगे ना, तो ये जो जो जानकारी है, या थोड़ा थोड़ा सा अपनी जो दिनचर्या में अगर आप थोड़ा सुधार कर लें, थोड़ा सुबह जल्दी उठें, थोड़ा व्यायाम करें, थोड़ा खान पान पर ध्यान रखें, बाहर का जंक फूड ना खाएं, ये छोटी छोटी बातें हैं अपने अगर अपने जीवन शैली में अपना लेंगे तो ये सब चीज़ें जो हैं आप तक बहुत मुश्किल से पहुँचेंगी या पहुँचेंगी नहीं। कि अब क्योंकि जीवन शैली एक ऐसा वो है कि आप अपने आप को भी बताइए, अपने परिवार को बताइए, आसपास के लोगों को भी बताइए। सब जानकारी सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमको सबको साझा करना चाहिए, हर किसी चीज़ के बारे में लोगों को बताना चाहिए और जागरूक करना चाहिए,
0: और तभी इस दिवस को मनाने का फायदा होगा और मनाने का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो अश्विनी भाई, आज के जो हमारे अगले और अंतिम कलाकार हैं वो है राजेश कुमार अट्टा। और राजेश कुमार अट्टा के लिए फरमाइश आपके हाथ में दिखाई दे रही है।
1: जी जी, पहला पत्र मैं ले लेता हूँ, ये जिन्होंने सुनना चाहा है राजेश कुमार अट्टा को। ये है ग्राम कोहरा, जिला राजनंदा गांव, छत्तीसगढ़ से है। बबलू साहू, जामुन देवी साहू, बेबी साहू, आराध्या और उनका पूरा परिवार।
0: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है धनोरी तेलीवाला से, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू की। साथ ही हमें फरमाइश मिली है जलालपुरा, जिला सहारनपुर से, स्वर्ण कुमार, शिवम, आर्यन, लविस और उनके समस्त परिवार की तरफ।
1: और एक और पत्र शामिल कर लेते हैं, ये तहसील भद्रवास, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर से भेजा है पुराने श्रोता है हमारे पुरुषोत्तम कुमार, शिव और मोतीलाल और इनका पूरा परिवार।
0: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है गांव गोविंदगढ़ मांझीवाला से, और इसको भेजने वाले राजू टुटेजा, खुशदिल, उर्मिला टुटेजा, गुड्डू, जीनू, मन्नू और उनका समस्त परिवार। इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है जसपुरा उत्तराखंड से, इसको भेजने वाले रियासत हुसैन, नाजमा बेगम और उनका समस्त परिवार।
1: और पराली छत्तीसगढ़ से पत्र मिला है हमें नितेश कुमार देवगन, दुर्गा प्रसाद देवगन और तनुजा देवगन, ईशान देवगन, उनका परिवार, जिन्होंने सुनना चाहा है राजेश कुमार अट्टा को।
0: और भाई देखिए, फरमाइश हमें काफी और भी मिली है सुनी भाई, जो हम अपने अगले कार्यक्रम कृषि जगत में शामिल करेंगे। तो देखिए अभी 7:05 पर आप कार्यक्रम कृषि जगत भी सुनते रहें, और अभी सुन लेते हैं आप सभी की पसंद पर राजेश कुमार अट्टा से ये रागनी और किस्सा रहेगा गोपीचंद का।
1: जी।

सुनी भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर रागनी सुनी राजेश कुमार अट्टा से, और किस्सा था गोपी चंद का। और राजेश कुमार अट्टा की गाई इस रागनी के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल। ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम, राम।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर अब से कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों के सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा होगी। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन के साथ यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। नीदरलैंड्स की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और नीदरलैंड्स की मित्रता आने वाले समय में और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ प्रसिद्ध अफ्सलाउडडाइक बांध का भी दौरा किया। यह यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंभात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने इस महीने की 14 तारीख को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान NID में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि यह एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। श्री जोशी ने बताया कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है।
2: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की काफी लंबे समय से लंबित मांगे पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 223 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में पंजाब ने ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 6 विकेट पर 172 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: अश्विनी भाई कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। देखिए रविवार का दिन है और आज कृषि पत्रोत्तर कार्यक्रम लोक संगीत के साथ है। भाइयों के खत भी आपके हाथ में दिखाई दे रहा है और भाई देखिए, लेकिन पहले भाइयों से कुछ बात कर लें। देखिए किसान उत्पादक संगठन किसानों का एक ऐसा सामूहिक समूह या कंपनी है
1: जी।
0: इसका मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को संगठित कर उन्हें कृषि व्यापार और बाजार के जो मुख्य धारा से जोड़ना है ताकि वो अपनी आय बढ़ा सके। और देखिए सरकार का उद्देश्य भी यही है कि किसानों की आय दुगनी की जाए, किसानों की आय बढ़ाई जाए। इसमें अगर सदस्यता की बात करें तो ये एक रजिस्टर्ड संस्था या कंपनी होती है। मैदानी इलाकों में इसे बनाने के लिए कम से कम 300 किसानों का समूह होना चाहिए और पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात करें तो 100 सदस्य इसको जो सदस्यता ले सकते हैं। और इसे देखिए किसी कंपनी अधिनियम या राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाता है।
1: और देखिए ना, जहाँ तक हम अगर हम बात करें इस योजना की कि हम किसानों की तरक्की हो, इस योजना को खेती को अधिक लाभकारी बनाने के उपयोग में ये योजना लाई गई। और हमारे देश में किसान मेहनती बहुत हैं, लेकिन कई बार छोटी छोटी जोत, महंगे महंगे बीज खाद, बाजार तक सही पहुंच ना होना, फसल का उचित दाम न मिलना जैसी समस्याएं उनकी मेहनत को कमज़ोर कर देती हैं। और लेकिन अब समय बदलता चला जा रहा है, क्योंकि किसानों की ताकत अब संगठन बन रही है और इसी सोच को शुरू किया है किसान उत्पादन संगठन यानी FPO योजना के रूप में।
0: इन संगठनों से अश्विनी भाई जो सस्ता सामान और अच्छी तकनीक जब किसान समूह में बीज खाद कीटनाशक और मशीन खरीदते हैं तो उन्हें थोक भावों में भारी छूट मिलती है। साथ ही देखिए बेहतर बाजार FPO बिचौलियों को जो खत्म करके सीधे व्यापारियों या कंपनी मंडियों किसानों की फसल बेचती हैं जैसे उनसे बेहतर दाम मिलते हैं। साथ ही मूल्य संवर्धन की अगर बात करें तो किसान केवल कच्चा माल बेचने की बजाय अपने उत्पादों की जो ब्रांडिंग और प्रोसेसिंग पैकेजिंग आदि करके कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, इन सभी चीजों का भाई योजना सभी जी
0: बिल्कुल। सुनिए भाई, एक फायदा और भी है। देखिए जो सरकार द्वारा जो वित्तीय अनुदान अगर बात करें तो भारत सरकार केंद्रीय योजना के तहत प्रति FPO पर 33 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है और साथ ही संगठन को ठीक से चलाने के लिए सरकार शुरुआती 3 वर्षों तक कार्यालय प्रबंध के लिए फंड भी देती है और सदस्यों की पूंजी बढ़ाने के लिए प्रति किसान 2000 रुपये तक का जो मैचिंग ग्रांट दी जाती है।
1: और देखिए ना, योजना किसान तक पहुंचे, ये किसान हमारी सरकारें लगातार इस क्षेत्र में काम करती हैं कि हर किसी किसान को छोटे सीमांत किसानों को संगठित करना, खेती की लागत को कम करना, किसानों को बाजार से सीधा जोड़ना, फसल को बेहतर मूल्य दिलाना और किसानों की आय को बढ़ाना, जो लगातार हमारी सरकारें कह रही हैं कि किसानों की आय दुगनी, लाभ ज़्यादा, लागत कम, इन सब चीज़ों पर मुख्य बिंदु मुख्य केंद्रित हैं सरकारें, हमारे किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले और हर योजना का फायदा किसान तक पहुँचे, तभी तो सरकारें और ये योजनाएँ आप कहीं ना कहीं क्षेत्र में खड़ी होकर कहेंगे कि हाँ, हर किसान को इस स्कीम का, इस योजना का फायदा मिला।
0: और भाई जैसा कि हमने अपने पिछले कार्यक्रम में कहा था भाई, काफ़ी फरमाइश हमें और भी मिली है तो आज के जो अगले कलाकार हैं बुलंद त्यागी है और बुलंद त्यागी को सुनने के लिए पहली फरमाइश मिली है कलानौर हरियाणा से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा की। साथ ही हमें फरमाइश मिली है ऊपरी कोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी और शाहनवाज, सरफाज, फरदीन और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: और एक और पत्र मिला है, ये है नरवेला महाराष्ट्र, पत्र में लिखा है ये PS नेहवाकर, निर्मला नेहवाकर, विशाल नेहवाकर, उनका पूरा परिवार। और शहर बांदापुर पुराना पंजाब से पत्र मिला है, ये सरदार परमजीत सिंह, गगनदीप सिंह, गुरप्रीत सिंह, परमजीत सिंह और इनका पूरा परिवार।
0: बुलंद त्यागी को ही सुनना चाहते हैं दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और उनका समस्त परिवार।

0: मेहताब अंसारी, कल्लू मुल्लू अंसारी उनका पूरा परिवार। और यहीं पर एक पत्र और शामिल कर लेते हैं, ये भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से है। रोशनलाल देवगन, कौशल देवगन, लता, बबलू, भव्या और उनका पूरा परिवार।
1: और ये अगली फरमाइश हमें मिली है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। इसको भेजने वाले बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और उनका समस्त परिवार। साथ ही हमें फरमाइश मिली है नूर महल महसूल सीतामढ़ी बिहार से, और इसको भेजने वाले मुर्शद जहानाज और तलत जहानाज और उनका समस्त परिवार।
0: और कोटा नारायणपुर बाबा पट्टी वाली से पत्र मिला है ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, उनका पूरा परिवार। और नेवादा जिला गाजीपुर से ही पत्र एक और मिला है, जिन्होंने सुनना चाहा है अबुलन त्यागी को। ये है प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और उनका पूरा परिवार।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से। उसको भेजने वाले अकरम हुसैन बेगम, इशरत वसीम अकरम और उनका समस्त परिवार।
0: खेल बाजार पानीपत से एक और पत्र मिला है, ये है नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा और पापा जी। और ये है शिवजी कॉलोनी रोहतक से एक और पत्र है, ये है पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और उनका पूरा परिवार।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। इसको भेजने वाले हैं विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा।
0: ये हमीदपुर बुलंदखंड उत्तर प्रदेश से एक और पत्र मिला है, ये रामकरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रजना, अप्रियल, दिवांशी विश्वकर्मा और उनका पूरा परिवार।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है पिंगा वाला चौक से। इसको भेजने वाले संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़ और उनका समस्त परिवार।
0: शादिलपुर से है राजस्थान से एक पत्र शामिल और कर लेते हैं, रामकुमार मेरवाड़, चंद्रकला मेरवाड़। और एक और पत्र है, ये जनकपुरी सहारनपुर से है, ये हमारे पुराने श्रोता हैं और लगातार हमें मैसेज करते हैं, जॉन डिकोस्टा, रॉजी डिकोस्टा, पारल डिकोस्टा और विलियम डिकोस्टा।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है हनुमानगढ़ से, और इसको भेजने वाले हैं रमन वर्मा, अमन वर्मा और उनका समस्त परिवार। साथ ही फरमाइश मिली है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट की। और इसी क्रम में अगली फरमाइश मिली है गांव खरखड़ा 24 से गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, आंशिक बोट, तमन्ना कांगड़ा की।
0: ये है पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से है, अनिल कुमार मोहन, उषा मोहन, टिल्लू मोहन का पूरा परिवार। और एक और पत्र शामिल कर लेते हैं, ये है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से है, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, जिग्नेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा और उनका पूरा परिवार।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली कैथल हरियाणा से मधु नायक की। और इसी क्रम में अगली फरमाइश मिली गांव खोखर वाली से विनोद बारसा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन वारसा की।
0: जलालाबाद वेस्ट से है सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया और उनका पूरा परिवार। और ये एक और पत्र है, ये पत्र लिखा है खुशी रेडियो श्रोता संघ, फातिमा कॉलोनी, श्री रामपुर, महाराष्ट्र से है, नाजिया शेख, नाजिया और इनका पूरा परिवार। यह है गोविंदपुरा अहमदनगर से है, जुनेद, जुनेद साहिबा, मिसाल जुनेद और उनका पूरा परिवार।
1: अगली फरमाइश हमें मिली है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार की। साथ ही हमें फरमाइश मिली है भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और उनके समस्त परिवार की तरफ से। इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबीर, आजाद नगर, लक्षर, हरिद्वार से।
0: और एक पत्र मिला है, ये है रामगढ़ से ये पत्र मिला है, ये है महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब का। और एक और पत्र शामिल कर लेते हैं, ये है ऊपरकोट मोहल्ला चौखटी बुलंदशहर से है, मोहम्मद अब्बासी और फरदीन अब्बासी, अरजान अब्बासी और उनका पूरा परिवार।
1: तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं बुलंद त्यागी से ये उपदेश।

0: say you'll come.
1: सुनी भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर भूलन त्यागी से उपदेश सुना और आपके हाथ में खत दिखाई दे रहा है।
2: जी देखिए, ये पत्र हमें भेजा है राजेश कुमार ने, गांव खिकड़ा है। और ये राजेश जी पूछ रहे हैं कि मैं आंवले का बाग लगाना चाहता हूँ, आंवले का बाग लगाने के लिए सही समय क्या क्या होता है, आंवले के लिए कौन कौन सी किस्में लूँ, उन्नत किस्में लूँ और जिससे अच्छे अच्छा उत्पादन मिले, लागत कम हो और फ़ायदा ज़्यादा हो, और आंवले का जो जो वृक्ष है वो कितने साल में फल देने लग जाता है, और सिंचाई की क्या व्यवस्था करूं जिससे मुझे फल उत्पादन में अच्छा मिले, लागत मेरी कम आए और फसल मुझे अच्छी से अच्छी मिले।
1: तो राजेश भाई देखिए, आंवले की रोपाई आप करना चाहते थे और रोपाई का जो सही समय और सबसे अच्छा और उपयुक्त समय जो माना जाता है, जुलाई व अगस्त का महीना माना जाता है। लेकिन भाई देखिए, इससे पहले आपको जून माह में 1x1 मीटर आकार के जो खड्डे पहले ही खोद लेने चाहिए और पौधे की रोपाई 9 से 10 मीटर के अंतर पर करनी चाहिए। जहाँ तक आपने भाई बात की है मिट्टी की, वैसे तो आंवला विभिन्न प्रकार की मिट्टी में लगाया जा सकता है, लेकिन राजेश भाई इसके लिए अच्छे जल निकासी वाली उर्वरा व गहरी दोमट मिट्टी सबसे उत्तम और सर्वोत्तम मानी जाती है। बीज की मात्रा की जहाँ तक बात, अच्छी पैदावार के लिए 200 ग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से उचित माना जाता है। और प्रजातियों की अगर बात करें तो मुख्य प्रजातियों में बनारसी, हाथी, जूल, चकैया, कृष्णा, NA4, NA9, NA10 और कंचन, बलवंत, आंवला मुख्यतः जो उन्नत किस्में मानी जाती है। इसके अलावा आप अपने क्षेत्र के हिसाब से भाई उन्नत किस्म ले सकते हैं। जहाँ तक वृक्ष की आपने फल देने की बात की, तो 6 से 7 वर्ष के में आंवले का जो वृक्ष है फल देना शुरू कर देता है। फल नवंबर दिसंबर में तोड़ने योग्य हो जाते हैं। और भाई सिंचाई की जो जहाँ तक बात है, गर्मियों में 10 से 15 दिन के अंतराल पर और बरसात ना हो तो भाई मानसून के हिसाब से सिंचाई की आवश्यकता पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही जो फल निकलने के समय भाई सिंचाई ना करें, इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे हुए तो आप ले पाएंगे आंवला फसल से भरपूर उत्पादन। और आज के जो हमारे अगले कलाकार हैं वो सुभाष चंद्र लुसाना, और उसको सुनने के लिए ये पहली फरमाइश मिली हरगोबिंद नगर से सुरेंद्र संधू, अनिता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू, शिखा संधू और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही फरमाइश मिली है बिलासपुर मध्य हिमाचल प्रदेश से सुरेश गरोर, बेबी गरोर और उनके समस्त परिवार की तरफ।
2: और एक और पत्र शामिल कर लेते हैं, ये संबलपुर काकेरा से है। ये है फागुन राम यादव, ज्योति यादव, अजस्य यादव और एक और है दत्ती तिरंगी से, भगवान भगवत शर्मा, शांति देवी शर्मा, ललावती, विनीत शर्मा वर्मा और रुद्र वर्मा, उनका पूरा परिवार।
1: तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं सुभाष चंद्र लुसाना से ये उपदेश।

0: असली भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर उपदेश सुना सुभाष चंद्र लुसाना से। और अब कल के कार्यक्रमों के बारे में बता दें, कल 5:10 पर लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी, 6:30 पर कार्यक्रम ग्राम संसार में जानकारी देंगे कृषि के विकास में आकाशवाणी की भूमिका। साथ ही योजना की अगर बात करें तो योजना के बारे में जानकारी देंगे हर घर जल योजना के बारे में। और 7:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में जानकारी देंगे खरीफ की फसलों के लिए बीजों का चयन। साथ ही वही जानकारी देंगे योजना गोवर्धन योजना के बारे में और बाजार भाव की भी जानकारी कार्यक्रम में देंगे। और भाई देखिए, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। और कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको दे सकें खेती संबंधी भाई नई नई जानकारी, साथ ही करा सके आपका मनोरंजन। इसके बावजूद भी यदि आपकी समस्या रह जाती है तो हर रविवार को हम देते हैं आपके खतों के जवाब। और इसके लिए भाई जरूरी है पता, तो पता आप लिख लीजिए। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी नई दिल्ली 110001।
1: और आप मेल भी कर सकते हैं कि आपका हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है और कार्यक्रम में क्या क्या आपको जानकारी चाहिए। हम आप हमें मेल कर सकते हैं feedback@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं कि आपकी उस फरमाइश को अपने कार्यक्रम में शामिल करके आपकी समस्या का निवारण करें।
0: और इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल। कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम
1: राम, राम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अभी आपने कार्यक्रम कृषि जगत सुना और अब समय हो चला है आपके कार्यक्रम गज़ल और कव्वाली का। गज़ल और कव्वाली में अब आप सुनेंगे फिल्म ब्लफ मास्टर से ये कव्वाली, जो मुझे बहुत पसंद है, उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आएगी।

0: सख्त जो हवा का रुख है वो बहुत तेज़ और बहुत गर्म है, तो अपने आप को लू से ज़रूर ज़रूर बचा के रखिए, हीट वेव से बचा कर रखिए।
1: शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशीं, शर्मा।

वाकई इज्जत रखना बहुत मुश्किल काम होता है, और मर मर के ही और घुट घुट के ही उसे रखा जाता है। वो इज्जत चाहे इश्क की हो, मोहब्बत की हो, या फिर आपकी किसी अजीज की हो। और फिर ऐसे में दिल चाहता है कि उसकी आंखों के समंदर में ऐसे डूबे कि फिर उबरने का कोई रास्ता ना रहे।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही क्षण बाद ठीक 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दिखा?
3: हाँ, मेरा फेवरेट कलर
4: हमेशा शॉपिंग।
5: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
6: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
7: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
8: आई नो ना।
7: RBI कहता है,
9: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
10: ओह लवली, वेल डन।
11: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
12: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
13: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
14: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ,
15: समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
16: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
17: आप कौन?
18: RBI कहता है,
19: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। दिल्ली सरकार महिला स्टार्टअप्स और स्व सहायता समूहों को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने जनकपुरी क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की। मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली मेट्रो 6 अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार महिला स्टार्टअप्स और स्व सहायता समूहों को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। श्रीमती गुप्ता ने ये घोषणा उत्तर पश्चिम दिल्ली रोहिणी वेस्ट स्थित यूनिटी वन मॉल के पास आयोजित 2 दिवसीय मेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप मेला के उद्घाटन समारोह के दौरान कही।
20: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के दृष्टिकोण को देश के सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए यह मेला महिलाओं द्वारा तैयार स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन देने और उन्हें बाजार से जोड़ने का सशक्त प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार चाहती है कि राजधानी की प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़े और अपना उत्पाद तैयार करे तथा उसे बाजार तक पहुंचाए। उन्होंने कहा कि सरकार बैंकों के माध्यम से महिलाओं को आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए भी प्रयास कर रही है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस मेले में विभिन्न बैंकों को भी शामिल किया गया है, जिससे स्वयं सहायता समूह की बैंकिंग और वित्तीय पहुंच मजबूत हो सके। इस मेगा मेला में लगभग 24 स्वयं सहायता समूह ने भाग लिया। मेले में हस्तशिल्प, खादी, घरेलू उत्पाद, खाद्य सामग्री और अन्य हस्त निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी और बिक्री की गयी। साथ ही उत्तर पश्चिम जिले के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हस्तशिल्प को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज जनकपुरी के ब्लॉक ए में लगभग 30 लाख रुपए और असलादपुर में जनकपुरी में लगभग 71 लाख की लागत के कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया। श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी को अधिक विकसित और सुविधायुक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।
21: इन विकास कार्यों में जनकपुरी के ब्लॉक ए में विभिन्न सड़कों और बैंक लेन निर्माण कार्य शामिल हैं। वहीं असालतपुर जनकपुरी में सड़क, नाली निर्माण, पार्क सौंदर्यकरण और बाउंड्री वॉल जैसे महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि बेहतर जुड़ाव, स्वच्छता और मजबूत बुनियादी ढांचे के माध्यम से क्षेत्रवासियों के जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में लगातार कार्य जारी है। इसके अलावा शहरी विकास मंत्री ने चंद्रनगर और नारंग कॉलोनी में भी विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इनमें बेहतर सड़कें, सुगम आवागमन और पार्कों का सौंदर्यकरण शामिल है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ अक्षित कुमार।
0: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली सरकार आगामी सप्ताह से दिल्ली में राशन कार्ड बनाने का कार्य शुरू करने जा रही है। श्री सचदेवा ने कहा कि इस पहल के माध्यम से दिल्ली की भाजपा सरकार 2025 का अपना एक और चुनाव संकल्प पूरा करेगी। उन्होंने कहा है कि 8 वर्ष से अधिक समय के बाद राजधानी में लगभग 2 लाख नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। साथ ही राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन भरे जाएंगे। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश साहब सिंह ने आज घिटोरनी गांव में नवनिर्मित तरला मोहल्ला चौपाल और वाल्मीकि बस्ती चौपाल का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह चौपाल सामाजिक समरसता, जनसुविधाओं और स्थानीय नागरिकों के संवाद का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली के गांव, देहात और हर वर्ग के विकास के संकल्प को भाजपा सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रही है। इस अवसर पर सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, विधायक करतार सिंह तंवर, निगम पार्षद सहित अनेक कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी उपस्थित

0: रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में एक रूपये की बढ़ोतरी की है। इस वृद्धि के बाद दिल्ली में एक किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रूपये, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रूपये और गुरुग्राम में 85.12 रूपये हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रूपये की वृद्धि की थी। सरकार ने कहा है कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। 12वीं के परिणामों पर आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने मार्किंग और उत्तीर्णता प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता व्यक्त की है। सचिव ने बताया कि सीबीएसई ने इस वर्ष ऐसी प्रणाली लागू की है जिससे मूल्यांकन में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। सचिव ने कहा कि सीबीएसई ने पुनर्मूल्यांकन शुल्क कम कर दिया है। उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय परीक्षण गृह एनटीएच की उत्तरी क्षेत्र इकाई में अत्याधुनिक जूता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रयोगशाला से एमएसएमई निर्माता, निर्यातक, उपभोक्ता और नियामक संस्थाओं को भरोसेमंद और उच्च गुणवत्ता वाली फुटवेयर परीक्षण सेवाएं मिल सकेंगी। मंत्रालय के अनुसार ये सुविधा तेजी से बढ़ रहे फुटवेयर क्षेत्र के लिए देश की गुणवत्ता जांच व्यवस्था को मजबूत करेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 6 अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार इन ट्रेन का संचालन कल से प्रत्येक सोमवार को किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि अन्य दिनों भी जरूरत पड़ने पर आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त ट्रेन चलाई जाएंगी। दिल्ली मेट्रो ने यह भी कहा है कि यह फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। साथ ही इस क्षमता का विस्तार का उद्देश्य बढ़ती यात्री संख्या के दौरान निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करना और यात्रियों का सुचारू प्रबंधन करना है। रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। आज सुबह करीब 5:15 बजे कोटा रेल मंडल के नागदा के पास त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पिछले 2 डिब्बों में आग लग गई, जिनमें एक गार्ड का डिब्बा और एक AC-3 टायर डिब्बा शामिल था। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। दोनों डिब्बों को तुरंत अलग किया गया और घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ है। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: राजधानी में 12 से 15 अगस्त तक भारतीय व्यापार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कल भारतीय व्यापार महोत्सव की वेबसाइट का शुभारंभ करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ये भारतीय व्यापार महोत्सव के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करने और भारतीय व्यापार को घरेलू तथा वैश्विक अवसरों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस महोत्सव को इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसके माध्यम से देश को वैश्विक व्यापार, संसाधनों, विनिर्माण और उद्यमिता का प्रमुख केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से भी निहित है, जिसके अंतर्गत देश भर के व्यापारियों, उद्यमियों, एमएसएमई, नवाचार कारीगरों तथा स्वदेशी उद्योगों को सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं आकर्षिता सिंह।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले पहले नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। सुझाव इस महीने की 29 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कनाडा की नागरिकता दिलाने की एवज में लगभग 1,80,00,000 रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक अप्रवासन सलाहकार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने एक महिला से कनाडा की नागरिकता दिलाने का झूठा वायदा कर यह रकम हड़पी थी। पुलिस ने आरोपी के पास से एक लैपटॉप बरामद किया है जिसमें महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत, वित्तीय लेनदेन के रिकॉर्ड, प्रवास से संबंधित दस्तावेज, सोशल मीडिया चैट और मामले से संबंधित अन्य जानकारी होने की आशंका है। वहीं एक अन्य कार्रवाई में दिल्ली पुलिस के बाहरी जिला की एक विशेष इकाई ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लगभग 8 किलोग्राम का मादक पदार्थ बरामद किया है। मामले की जांच जारी है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 58 रन बना लिए हैं। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद दिल्ली के लिए यह मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले आज एक अन्य मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। और राजधानी में आज भी गर्मी का प्रकोप जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल मौसम साफ रहेगा। हालांकि कल का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार महिला स्टार्टअप्स और स्व सहायता समूहों को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने जनकपुरी क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत वाले कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की। मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली मेट्रो 6 अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये देख कैसे?
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दिखा?
3: हाँ, मेरा फेवरेट कलर
4: हमेशा शॉपिंग।
5: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
6: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
7: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
8: आई नो ना।
7: आरबीआई कहता है,
9: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
10: ओह लवली, वेल डन।
11: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
12: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
13: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
14: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ,
15: समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
16: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
17: आप कौन?
18: आरबीआई कहता है,
19: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम कवि गोष्ठी। गोष्ठी का संचालन कर रही हैं श्रीमती सुधा कुमारी।
1: आज हम सभी यहाँ आकाशवाणी के स्टूडियो में कवि गोष्ठी के लिए एकत्रित हुए हैं और हमारे बीच मौजूद हैं श्री शिव शंकर एहसास जी। उसके अलावा हमारे बीच में उपलब्ध हैं इस समय सुरेश कुमार जी, और उसके बाद हमारे बीच में हैं संगीता वर्मा जी जो अपना काव्य पाठ करेंगी। तो सबसे पहले मैं इन्हीं को आमंत्रित करूंगी कि वो अपना काव्य पाठ आरम्भ करें।
2: बहुत बहुत

धन्यवाद। मैं सबसे पहले माँ शारदी को प्रणाम करती हूँ। एक छोटा सा गीत कहना चाहूंगी। पिता जो होते हैं वो हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं और हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, और जीवन साथी अगर अच्छा मिल जाए तो जीवन बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। तो एक छोटा सा गीत है, मैं अपनी मनोभावना कहना चाहूंगी। पत्ते

0: पत्ते पत्ते, बूटे बूटे, तरवर से गिर गिर जो टूटे।
1: बहुत अच्छा,
2: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।

0: टूटे बहुत धन्यवाद और एक गजल और कहती हूँ मैं, सुनिएगा कि बदलिए रंग लेती हैं, बदलिए रंग लेती हैं नजर की पुतलियां देखो, बदलिए रंग लेती हैं नजर की पुतलियां देखो, बड़ी अटखेलियां ये कर रही कठपुतलियां देखो।
1: बहुत अच्छा।
0: सरल पथ भा रहा इनको गगन छूने को है आतुर, सरल पथ भा रहा इनको गगन छूने को है आतुर, ललायत हो रही हैं मन चली ये तितलियां देखो, ललायत हो रही हैं मन चली ये तितलियां देखो। शुक्रिया। शुदा मिटती नहीं इनकी भले पर्याप्त हो साधन, शुदा मिटती नहीं इनकी भले पर्याप्त हो साधन, रही प्यासी समुन्दर में तड़पती मछलियां देखो, रही प्यासी समुन्दर में तड़पती मछलियां देखो। और शुक्रिया। करे ब्रह्मांड की बातें सितारा खुद को कहते हैं, करे ब्रह्मांड की बातें सितारा खुद को कहते हैं, खरीदी झूठ के बल पर जिन्होंने डिग्रियां देखो, खरीदी झूठ के बल पर जिन्होंने डिग्रियां देखो। और कहती हूँ कि जुबा शीरी नजर पहनी जो तीखी तेज धारी है, जुबा शीरी नजर पहनी जो तीखी तेज धारी है, असलियत में छलावा है ये जादूगर निया देखो, असलियत में छलावा है ये जादूगर निया देखो।
1: बहुत अच्छे, बहुत
0: शुक्रिया। और अंतिम, संभलना है गरजते बादलों से ए बशर सुन ले, कड़कती हैं बहुत ही जोर से ये बिजलियां देखो, कड़कती हैं बहुत ही जोर से ये बिजलियां देखो। बहुत बहुत धन्यवाद
1: और
0: बहुत बहुत शुक्रिया। एक सच्ची बात और कहती हूँ सिर्फ चार पंक्ति में,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: गगन छू के आना तमाशा नहीं है, गगन छू के आना तमाशा नहीं है, चकाचौंध की मुझको आशा नहीं है, मैं मंजिल तो पाऊंगी पर

0: अभी खुद को उतना तराशा नहीं है,
1: बहुत
0: अभी
1: अच्छा,
0: खुद को उतना तराशा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप
1: बहुत
0: सभी का।
1: अच्छा आपने पाठ किया
0: थैंक यू सो
1: संगीता
0: मच,
1: जी, उम्दा आपने अपनी गजल और गीत सुनाए, बहुत अच्छा
0: बहुत बहुत
1: लगा
0: धन्यवाद
1: आपका।
0: सुधा जी।
1: अब मैं श्री शिव शंकर एहसास जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। इनका हमारा तुम्हारा जीवन दर्पण नाम से काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुका है और शीघ्र ही ये एक और नया काव्य संग्रह प्रकाशित करने जा रहे हैं, तो मैं इनको अपनी दो पंक्तियों के साथ आमंत्रित करूंगी। एहसास को एहसास का जब एहसास होगा, एहसास को एहसास का जब एहसास होगा, खूबसूरत बेमिसाल जीवन का मुकाम होगा। मिट जाएंगे जुल्म और सितम हर तरफ, मिट जाएंगे जुल्म और सितम हर तरफ, प्यार और इंसानियत से जमी सुकून का मकान होगा, सुकून का मकान होगा। शिवशंकर जी आपसे मैं आग्रह करूंगी आप अपनी रचना का पाठ करें।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। एक छोटी सी रचना कहना चाहूंगा, तुमसे क्या छुपाएं और क्या बताएं, तुमसे क्या छुपाएं और क्या बताएं, तुम ही बताओ टूटे हुए दिलों की दास्तां क्या होगी, तुम ही बताओ टूटे हुए दिलों की दास्तां क्या होगी, जब खुद से मोहब्बत नहीं, जब खुद से मोहब्बत नहीं तो उनसे मोहब्बत क्या होगी, तो उनसे मोहब्बत क्या होगी। इसी प्यार की कुछ बातों को मैं अपने एक पंक्तियों में लेकर हाजिर हूं, नगमा मैंने इसको शीर्षक दिया है। हर वक्त आंखें नम रहती हैं, हर वक्त आंखें नम रहती हैं, न जाने किनके ख्यालों में रहती हैं, हर वक्त आंखें नम रहती हैं, न जाने किनके ख्यालों में रहती हैं, दूर जहां तक भी नजर जाती है, हर शख्सियत में तू ही तू नजर आती है, हर शख्सियत में तू ही तू नजर आती है, हर हंसता हुआ चेहरा मुझे रुला देता है, हर हंसता हुआ चेहरा मुझे रुला देता है, तेरा ख्याल सब कुछ भुला देता है, दिया जलाता हूँ रोशनी के लिए, अफसोस दिया ही मेरा आसियाना जला देता है, अफसोस दिया ही मेरा आसियाना जला देता है, तुझे हंसाने के लिए ही तो हंसता हूँ मैं, तुझे हंसाने के लिए ही तो हंसता हूँ मैं, मगर यही ख्याल एकांत में मुझे रुला देता है। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। यही ख्याल एकांत में मुझे रुला देता है, भूल जाना चाहता हूँ जिन नगमों को, उन्हीं की फिर याद दिला जाता है, उन्हीं की फिर याद दिला जाता है। नगमाए मोहब्बते में तुम्हें क्या सुनाऊं, नगमाए मोहब्बते में तुम्हें क्या सुनाऊं, यह ऐसा आसियाना है जहां कोई दोबारा नहीं आता, जो सूरज से डरता है उसे चांद भी नहीं मिलता, जो सूरज से डरता है उसे चांद भी नहीं मिलता, चांद मिलता भी है तो अमावस्या का पूर्णिमा का नहीं, चांद मिलता भी है तो अमावस्या का पूर्णिमा का नहीं। वो दो कदम साथ क्या चले, वो दो कदम साथ क्या चले, हमने सोचा हमें मंजिल मिल गई, हमने सोचा हमें मंजिल मिल गई, वो कभी इतने करीब आए कि हमारी अपनी पहचान चली गई, कि हमारी अपनी पहचान चली गई। धन्यवाद मैडम, किस कदर देखिए पहचान किस तरह से गई। दो जिस्म एक जान थे हम, दो जिस्म एक जान थे हम, सच कहता है जमाना, सच कहता है जमाना, बहुत अनजान थे हम, बहुत अनजान थे हम। शुक्रिया मैडम। मैं अपनी बात कुछ लाइनों से शुरू करना चाहूंगा। ए चंचल चितवन की चंचल चिड़िया, ए चंचल चितवन की चंचल चिड़िया, क्यों चित चंचल करती है, बन चंचला उड़ती है नभ में, क्यों नहीं पग धरा पे धरती है, क्यों नहीं पग धरा पे धरती है। यही जब हमारी एक नन्ही सी चिड़िया बड़ी होती है, और इसका मैं एक भूमिका से है कि जब वो बालिका से एक महिला बनती नारी बनती है, तो नारी बनने के बाद में उसकी क्या अपेक्षाएं रहती हैं, मैं उन अपेक्षाओं को अपनी चंद लाइनों के माध्यम से कहना चाहूंगा। मैं नारी हूँ मुझसे प्यार करो, ना नमन ना सत्कार करो, ना नमन ना सत्कार करो, ना ही तुम मेरा अलंकार करो, माँ बेटी बहु प्रेमिका हूँ मैं तुम्हारी, माँ बेटी बहु प्रेमिका हूँ मैं तुम्हारी, मुझसे बस प्यार करो, मुझसे ना नमन ना सत्कार करो, मैं नारी हूँ मुझसे प्यार करो, यूं ना तुम मेरा तिरस्कार करो, नारी हूँ मेरा सम्मान करो, अस्तित्व का पर्याय हूँ मैं, अस्तित्व का पर्याय हूँ मैं, मेरे सृजन को स्वीकार करो, मैं नारी हूँ मुझसे प्यार करो, मैं नारी हूँ मुझसे प्यार करो, छिड़क कर तेजाब हम पर अपनी कुंठा को न शांत करो, छिड़क कर तेजाब हम पर अपनी कुंठा को न शांत करो, निर्भया पर की गई क्रूर बर्बरता का ना यूं तुम विस्तार करो, बना द्रौपदी महफिल में ना मेरा अपमान करो, मैं नारी हूं मुझसे प्यार करो, मैं नारी हूं मुझसे प्यार।

0: गर सूख गई कोख मेरी तो इन वीरों को कहां से लाओगे, गर सूख गई कोख मेरी तो इन वीरों को कहां से लाओगे। बहन बेटियों की जो न बचाई अस्मत तुमने, तो मातृभूमि की अस्मत कैसे बचाओगे, तो मातृभूमि की अस्मत कैसे बचाओगे। धन्यवाद मैडम। गर सूख गई कोख मेरी तो इन वीरों को कहां से लाओगे। मैं नारी हूं मुझसे प्यार करो, मैं नारी हूं मुझसे प्यार करो, ना नमन ना सत्कार करो, ना ही तुम मेरा अलंकार करो। मैं नारी हूं मुझसे बस प्यार करो, मुझसे बस प्यार करो।
1: बहुत अच्छे शेर शंकर जी, बहुत अच्छा आपने पाठ किया। सुरेश जी, अब मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी। आपकी रुचि है गजल गीत और नज्म में, और आपका एकल काव्य संग्रह फरेबे मुखलिसी प्रकाशित हो चुका है, और साझा काव्य संग्रह काव्य सरोवर भावरस ये भी प्रकाशित हो चुका है। तो मैं आपसे अब कहूंगी प्रस्तुत करें।
2: शुक्रिया सुधा जी। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं चार लाइनों से माँ के नाम जो हैं उनसे शुरुआत करता हूँ। सबसे ज्यादा फिक्र उसे मेरी जाँ की होती है, सबसे ज्यादा फिक्र उसे मेरी जाँ की होती है। बेसुध को खबर न यहाँ की होती है, न वहाँ की होती है। घर से निकलने से लौट आने तक दहलीज पे रहती है, घर से निकलने से लौट आने तक दहलीज पे रहती है। वो नजर तो सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की होती है।
1: बहुत अच्छी।
2: अब इसके बाद एक मेरी गजल जिसमें बाप का दर्द भी है। बूढ़ी पलकों में कुछ तो ख्वाब रहने दो, बूढ़ी पलकों में कुछ तो ख्वाब रहने दो, थोड़ा बचा अपनी पीढ़ी का आदाब रहने दो। हसरतों की मारी झपकती भी कम है अब, हसरतों की मारी झपकती भी कम है अब, ओझल होने से पहले उनमें ये ताब रहने दो।
1: बहुत अच्छे।
2: खुद जुगनुओं से जले अंधेरों में तुम्हारे लिए, खुद जुगनुओं से जले अंधेरों में तुम्हारे लिए, मेहरबानियों का उनकी कैसे करोगे हिसाब, रहने दो।
1: बहुत अच्छे।
2: उनके बुढ़ापे से तुम्हारी जवानी को नफरत क्यों है, उनके बुढ़ापे से तुम्हारी जवानी को नफरत क्यों है, तुम्हारे बचपन पे उनका रहा निसार शबाब, रहने दो। जिम्मेदारियां प्यार से नहीं जायदाद से नापी बच्चों ने,
0: बहुत अच्छा।
2: जिम्मेदारियां प्यार से नहीं जायदाद से नापी बच्चों ने, मगर उनका था प्यार बच्चों से बेहिसाब, रहने दो। खस्ता सेहत से मजबूर पानी को तरसे थे वो कभी, खस्ता सेहत से मजबूर पानी को तरसे थे वो कभी, आज उनके नाम लगाई शबील ये सवाब, रहने दो।
1: बहुत अच्छे।
2: मेहनत और त्याग किस किस को याद है बाप के, मेहनत और त्याग किस किस को याद है बाप के, उनके बिना पाले थे ओहदे और खिताब, रहने दो।
1: बहुत अच्छे, क्या बात है।
2: एक अगली गजल उसके चंद शेर। हमारी खुद की हमें कमी नजर नहीं आती, हमारी खुद की हमें कमी नजर नहीं आती, जब आसमां में हो तो जमीन नजर नहीं आती। छान के भी देख लिया मैंने अपने माजी को, छान के भी देख लिया मैंने अपने माजी को, हुई थी गलतियां जहां वहीं नजर नहीं आती।
1: बहुत अच्छे।
2: पैर छूना आशीष लेना बात करना बुजुर्गों से, पैर छूना आशीष लेना बात करना बुजुर्गों से, हमें ये रिवायतें आजकल कहीं नजर नहीं आती।
1: बहुत अच्छे।
2: किरदार कहकों भरा निभाना पड़ता है जिनको, किरदार कहकों भरा निभाना पड़ता है जिनको, पसे पर्दा उनकी जिंदगी में हंसी नजर नहीं आती।
1: बिल्कुल आज की सच्चाई है।
2: वो जो रूह तक टटोलने की सलाहियत रखता था, वो जो रूह तक टटोलने की सलाहियत रखता था, आज क्यों उसको मेरी आंख की नमी नजर नहीं आती।
0: बहुत अच्छा।
2: ये तेरे लफ्जों की निकाशी काहे जादू सुरेश, ये तेरे लफ्जों की नकाशी काहे जादू सुरेश, उसकी तस्वीर तेरी गजलों में यूं ही नजर नहीं आती।
1: बहुत अच्छे।
2: चंद लाइनें एक और गजल की। कितने हुए दिल के टुकड़े शुमार करूं क्या
0: जी,
2: कितने हुए दिल के टुकड़े शुमार करूं क्या, तुम्हारे वादे का अब भी एतबार करूं क्या। मुझको सुधारने का तुम्हारा ख्याल अच्छा है, मुझको सुधारने का तुम्हारा ख्याल अच्छा है, हाँ मैं खुद भी अपने में सुधार करूं क्या।
1: बहुत अच्छे।
2: कहते रुखसत जब हुआ था मुड़ के न देखा उसने, रुखसत जब हुआ था मुड़ के न देखा उसने, समझ नहीं आ रहा अब उसका इंतजार करूं क्या।
1: बहुत अच्छे।
2: वो आगे निकल रहा है या छोड़ रहा है मुझे, वो आगे निकल रहा है या छोड़ रहा है मुझे, कश्म कश्म में हूँ तेज अपनी रफ्तार करूं क्या।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, क्या बात है।
2: तन

0: शुक्रिया। तंज भरे जुमले ना कसो मुझ पर तुम, तंज भरे जुमले ना कसो मुझ पर तुम, मैं भी तुम्हारी नजर चंद इशार करूं क्या। शुक्रिया शुक्रिया। ना आंखें पढ़ते हो ना खामोशी समझते हो तुम, ना आंखें पढ़ते हो ना खामोशी समझते हो तुम, अब क्या सीधा सीधा इजहार करूं क्या।
1: बहुत अच्छे
0: शुक्रिया। चंद लाइनें कह दो, गुस्से से ना छुड़ाओ हाथ रहने दो, गुस्से से ना छुड़ाओ हाथ रहने दो, अपने बीच की अभी बात रहने दो,
1: रहने दो।
0: तुम्हारी मुस्कुराहट ही काफी है मेरे लिए, तुम्हारी मुस्कुराहट ही काफी है मेरे लिए, बाकी अपने बेशकीमती सौगात रहने दो,
1: रहने दो।
0: किनारा ही अगर करना है तो कर लीजिए, किनारा ही अगर करना है तो कर लीजिए, मगर ये बेमायने तर्क वजूहात रहने दो।
1: बहुत अच्छे, बहुत
0: शुक्रिया। कुछ लम्हे खामोशी के भी दरमियान रहने दो, कुछ लम्हे खामोशी के भी दरमियान रहने दो, बेतुके जवाबों से बेहतर कुछ सवालात रहने दो,
1: रहने दो। बहुत अच्छे।
0: सीने पे रखो सर थोड़ी देर धड़कने गिनो मेरी, सीने पे रखो सर थोड़ी देर धड़कने गिनो मेरी, मूंदी आंखें रखो निगाहों की मुलाकात रहने दो। आजकल बाजार में बहुत नए खिलौने आए हैं, आजकल बाजार में बहुत नए खिलौने आए हैं, छोड़ो दिल मेरा और मेरे जज्बात
1: रहने दो। बहुत अच्छा
0: लगता है। जब ओखली में सर दे ही दिया है सुरेश तुमने, जब ओखली में सर दे ही दिया है सुरेश तुमने, अब मूसले से क्या करे एहतियात रहने दो।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
0: एक छोटी सी एक गजल और
1: जी, बिल्कुल।
0: पलक से निकल रुखसार पर रहता है, पलक से निकल रुखसार पर रहता है, मेरा है मेरा, मेरा है रही मेरा, तुम्हें क्या कहता है,
1: तुम्हें क्या कहता है।
0: पलक से निकल रुखसार पर रहता है, मेरा है रही मेरा, तुम्हें क्या कहता है। कई बार लबों में जा जज्ब हो जाए, कई बार लबों में जा जज्ब हो जाए, अश्क मेरा कहां से कहां तक बहता है, दर्द सहने का खूब हुनर आए है उसको, दर्द सहने का खूब हुनर आए है उसको, गुफ्तार कम हंसी ज्यादा ऐसे वो सहता है, गुफ्तार कम हंसी ज्यादा ऐसे वो सहता है, मोहब्बत में सूद व जिया में रहे दिल तुम्हारा, मोहब्बत में सूद व जिया में रहे दिल तुम्हारा, हमारा दिल तो इसके इबादत कहता है, झूठ के पाँव नहीं होते फिर भी दौड़े खूब, झूठ के पाँव नहीं होते फिर भी दौड़े खूब, मुंसिफ के आगे भी गवाह कहाँ सच कहता है,
1: सच कहता है। बहुत अच्छे।
0: एक छोटी सी गजल,
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए।
0: अब तेरे हम पाँव के खार बने हैं, अब तेरे हम पाँव के खार बने हैं, लगता है ताजा कोई प्यार बने हैं।
1: बहुत अच्छे,
2: बहुत अच्छे।
0: अब तेरे पाँव के खार बने हैं, लगता है ताजा कोई नए प्यार बने हैं, सब लहजे से तेरे महसूस हो रहा है ये, इस बार बिछड़ने के पूरे आसार बने
1: हैं। बहुत अच्छे।
0: तुम आदत ना पालो हमें हमेशा बनाने की, तुम आदत न पालो हमें हमेशा बनाने की, बेशक वैसे हम तो हर बार बने हैं,
1: बने हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
0: नया हो या इश्क पुराना तुम्हारा अब निभाना, इश्क की मंडियों में जिस्म के बाजार बने हैं,
1: हाँ।
0: रोक टोक में पोशीदा प्यार नहीं दिखता अक्सर, रोक टोक में पोशीदा प्यार नहीं दिखता अक्सर, इसी रोक टोक से आपके गुनहगार बने
1: हैं। बहुत अच्छे।
0: रसूख वाले ओहदे वाले हैं तुम्हारे करीबी सब, हम चाहने वाले सिर्फ सजा के हकदार बने हैं, कस्में वादे दिल लगी इजहार मोहब्बत, नॉलेज सुरेश ये सब के सब व्यापार बने,
1: व्यापार बने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सुरेश जी, आपने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। तो अब
2: नहीं नहीं, बहुत अच्छा सुनाया सुरेश जी ने और बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं कि श्रोताओं को भी बहुत पसंद आएगा। हमारे बीच एक सफल मंच संचालन कर रही हैं सुधा मलिक जी, अपने मन के भावों को इन्होंने एक काव्य संग्रह के रूप में प्रस्तुत किया है एहसास। देखिए कितना एक संयोग है, मैं भी पसंद करता हूँ शिवशंकर एहसास के नाम से लिखना, और मैडम ने तो किताब ही लिख डाली था एहसास के ऊपर। तो मैं आमंत्रित करूंगा मैडम सुधा मलिक को कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें।
1: धन्यवाद, धन्यवाद शिवशंकर जी। औरत के ऊपर कुछ लाइनें हैं। मेरे नाम से बुलाओ मुझे, मैं औरत हूँ, थोड़ा तो सम्मान दिखाओ मुझे।
2: जी जी।
1: मेरे नाम से बुलाओ मुझे, मैं औरत हूँ, थोड़ा तो सम्मान दिखाओ मुझे। जन्म दिया पाला अपनी रातें कर, अस्तित्व मिटाया बस तुझे देखकर, तेरी परवरिश पे जान झोंक दी, तुझे खिलाया खुद का निवाला छोड़कर। बड़े होकर ना आंख दिखाओ मुझे, मेरे नाम से बुलाओ मुझे, मैं माँ हूँ, कुछ तो सम्मान दिखाओ मुझे।
2: बहुत अच्छी, बहुत अच्छी पंक्ति।
1: मैं माँ हूँ, कुछ तो सम्मान दिखाओ मुझे। जवानी तेरी रंगीन बना दी, प्यार भरी दुनिया दिखा दी, प्यार में तेरे खुद को सौंप दिया, असमत भी अपनी तुझ पे वार दी। तूने वक्त निकलते ही राह बदल दी, गैर के साथ जिंदगी बसर कर ली। धोखे से यूं ना मिटाओ मुझे, मेरे नाम से बुलाओ मुझे, मैं प्रेमिका हूँ कुछ तो सम्मान दिखाओ मुझे।
2: बहुत अच्छी।
1: मैं औरत हूँ कुछ तो सम्मान दिखाओ मुझे। घर बसाया तुझे अपना मानकर, जान झोंक दी कर्तव्य जानकर, वंश बढ़ाया सबकी देखभाल की, तेरे लिए अपनी हस्ती भेंट दी। जिम्मेदारी के बोझ में मैं जरा जो मुरझाई, जिम्मेदारी के बोझ में मैं जरा जो मुरझाई, तूने मुझ में लाखों कमियां बताई, पराई औरत में दिलचस्पी दिखाई, यूं धोखा देकर ना तड़पाओ मुझे।
2: बहुत अच्छी।
1: मेरे नाम से बुलाओ मुझे, मैं बीवी हूँ कुछ तो सम्मान दिखाओ मुझे। मेरे ही रिश्तों से मैं छली जा रही, मेरे ही रिश्तों से मैं छली जा रही, सड़कों पे भी ना हवस का शिकार बनाओ मुझे। मैं औरत हूँ कुछ तो सम्मान दिखाओ मुझे। मैं बेटी बहन माँ तुम्हारी, प्रेयसी पत्नी बहु हितकारी, देवी सी ना करो पूजा, देवी सी ना करो पूजा, पर इंसान सा आदत दिखाओ मुझे। मैं औरत हूँ, मेरे नाम से बुलाओ मुझे, मैं औरत हूँ, थोड़ा तो सम्मान दिखाओ मुझे। धन्यवाद, धन्यवाद।
2: बहुत अच्छी कविता।
1: अब मैं आपको एक अपनी दूसरी रचना सुनाना चाहूंगी
2: जी।
1: इसमें थोड़ा कहना चाहूंगी कि हम किसी का भला करना चाहें तो उसके लिए हमें धन दौलत बहुत होना हमारे पास अनिवार्य नहीं है, हमारी नियत होनी चाहिए। तो उसी पे है, भला करने के लिए दौलत नहीं नियत है लाजमी, बहुत कुछ करके पुण्य कमा सकता है आदमी। रास्ते से किसी के पत्थर हटा दो, अपनी सीट पे जरूरतमंद को बिठा दो, किसी का बोझ उठा दो, पंछी को पानी पिला दो, भूखे को खाना खिला दो, कोई अगर हो परेशान उसे देख मुस्कुरा दो, दो मीठे बोल साझा करो उसका गम भुला दो, अनजान भले हो किसी बुजुर्ग को हंसा दो, दो कदम हाथ पकड़ के चला दो, लड़की कोई अकेली तो उसका हौसला बढ़ा दो, दो कदम साथ चल मंजिल पे सुरक्षित पहुंचा दो।
2: बहुत अच्छे, बहुत को।
1: दो कदम साथ चल मंजिल पे उचित पहुंचा दो, बच्चा किसी का राह भूले, बच्चा किसी का राह भूले उसे सही सलाह दो, राह उचित पकड़ा दो, और कुछ नहीं कर सकते तो मौन रहो, और कुछ नहीं कर सकते तो मौन रहो, अफवाहों को ना हवा दो, भला करने के लिए दौलत नहीं नियत है लाजमी, बहुत कुछ करके पुण्य कमा सकता है,
2: बहुत कुछ करके
1: पुण्य कमा सकता है आदमी। मैंने अपने आप को कान्हा जी के रूप में रख के अपने सोचा और कुछ विचार मेरे मन में आए कि कृष्ण भगवान ने अपने जो जीवन यापन किया तो कितने कष्ट उसमें सहे, तो वो मैंने भाव अपने अंदर महसूस किया और उनको मैं उजागर करना चाहूंगी।
2: स्वागत है।
1: जो मैं सोचूं कान्हा बन गई, जो मैं सोचूं कान्हा बन गई, कितनी पीड़ा हृदय में भर गई, जन्म पूर्व कारागार का बंधन, जन्म पूर्व कारागार का बंधन, जन्म उपरांत माँ भी मुझसे बिछड़ गई, मुझको जन्म देने के हेतु ज्येष्ठ पुत्रों के वध को सह गई, देखकर मुझको जन्म देव की गोद में लेने से वंचित रह गई।
2: बहुत अच्छा, बहुत
1: जो
2: अच्छा।
1: मैं सोचूं कान्हा बन गई, कितनी पीड़ा हृदय में भर गई, जन्मदाई से तो पहले ही था वंचित, जन्मदाई से तो पहले ही था वंचित, यशोदा की ममता भी जल्दी छिन गई, गोकुल छूटा बचपन छूटा, मित्रों की टोली भी रह गई, गोकुल छूटा बचपन छूटा, मित्रों की टोली भी रह गई, धर्म का पालन करने हेतु तीस विरह की मुझको डस गई, बरसाने की गोरी राधा, बरसाने की गोरी राधा, प्यारी देखो कैसे मुझसे बिछड़ गई, अत्याचार मिटाने को जनता को बचाने को निज मामा की हत्या करनी पड़ गई, सत्य और धर्म जिताने को अन्याय भूमि से मिटाने को महाभारत भी मुझको रचनी पड़ गई, और चक्र चलाकर अपनों पर ही रक्त की होली खेलनी पड़ गई, हाय कितना दर्द हृदय में, हाय कितना दर्द हृदय में, देख धरा जो शवों से पट गई, शोक विलाप करती गांधारी के श्राप की छाया लेनी पड़ गई, अपने ही पुत्रों के कारण यदुवंश की विध्वंस सहनी पड़ गई, और मैं जगत का पालनहारा तीनों लोकों का तारणहारा, एक तीर से प्राण आहुति देनी पड़ गई, मेरा मर्म न जाने कोई क्या क्या परिस्थिति मुझको सहनी पड़ गई, मैं जगन्नाथ मैं नारायण मैं प्रजापति मैं सर्वेश्वर भूलोक में अवतरण की क्या क्या कीमत चुकानी पड़ गई, अपना कर्तव्य निभाने को अधरों पर मुस्कान, हृदय में पीड़ा छुपानी पड़ गई, जो मैं सोचूं कान्हा बन गई, कितनी पीड़ा हृदय में भर गई। जो मैं सोचूं कहना बन गई, कितनी पीड़ा हृदय में।

0: बहुत ही खूब कविता, बहुत ही खूब कविता।
1: और अब मैं लास्ट में एक थोड़ा सा हल्का फुल्का माहौल बनाने के लिए।
0: जी जी स्वागत है।
1: ये मैंने अपने अंतर्मन के भाव हैं, जब हमारा कोई अपने अंतर्मन में चल रही होती है विचार भावना, तो उसका है कि अपने आप को ही मैं जवाब दे रही हूँ, अपने आप से ये सवाल कर रही हूँ। आज फिर कुछ लिखूं क्या, दिल की बातें शब्दों में कह दूं क्या। आज फिर कुछ लिखूं क्या, दिल की बातें शब्दों में कह दूं क्या। कहने को तो है बहुत सी बातें, सारी की सारी कह दूं क्या। पर कुछ बातें ना हो तो बेहतर, पर कुछ बातें ना हो तो बेहतर, तो वो बातें रहने दूं क्या। जिंदगी में खुशी बहुत कम और गम ज्यादा, जिंदगी में खुशी बहुत कम और गम ज्यादा, तो गम को खुशी से सहलू क्या। कुछ भूली कुछ बिसरी यादें, कुछ भूली कुछ बिसरी यादें, जो भूली सो भूली, जो याद वो सजा के रख लूं क्या। आज फिर कुछ लिख दूं क्या, बहुत गिले शिकवे जमाने से, बहुत गिले शिकवे जमाने से, पर किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, तो गिले शिकवे भी रहने दो क्या। चलो छोड़ दूं मैं सारी बातें, क्या रखा है बताने में। चलो छोड़ दूं मैं सारी बातें, क्या रखा है बताने में, जो जैसे खुश उसे वैसे ही रहने दो क्या। आज फिर कुछ लिखो क्या, दिल की बातें शब्दों में कह दूं क्या। आज फिर कुछ
0: बहुत अच्छा है सुधा मलिक मैडम ने बोला। और ये तो मैं कार्यक्रम के बारे में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरा प्यार तो हिना था, मेरा प्यार तो हिना था, कुछ तो वक्त देते रंग चढ़ने का, कुछ तो वक्त देते रंग चढ़ने का।
1: बहुत अच्छे।
0: इसी के साथ में
1: अब इस काव्य गोष्ठी का हम समापन करते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ उपस्थित हुए और अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
2: अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे, प्रतिभागी कवि थे श्री शिव शंकर, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती सुधा कुमारी और श्रीमती संगीता वर्मा। गोष्ठी का संचालन कर रही थी श्रीमती सुधा कुमारी। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यही संपन्न होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्रवण मीणा।
3: श्रोताओं आप सुन रहे थे अभी कवि गोष्ठी का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीटर वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, वक्त शाम के 8:30 हो चुके हैं और ये समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम का।

श्रोताओं, अभी आपने गीत सुना फिल्म विरासत से कुमार सानू और चित्रा की आवाज़ में। आप जुड़े हुए हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम से। मैं हूं आपके साथ चेतना और समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:37 हुए हैं।

0: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। ये भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
0: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
2: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इन्क्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
3: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान है। जब एनआईडी की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
4: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
5: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगे अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश

51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबू धाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबू धाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे चार दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस

की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ स्टर्सन से वफ्द की सतह की बातचीत कर रहे हैं, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से दो तरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिली है। कांग्रेस रहनुमा वीडी सतेसन को कल केरलम के नए वज़ीर-ए-आला का हलफ दिलाया जाएगा। मास्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर समेत चार अफराद हलाक हो गए। भारत के महकमे मौसमियात ने शुमाली भारत में कल शदीद गर्मी की पेशगोई की है, और बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी विलिशेट्टी ने बाउजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में चांदी का तमगा जीता, और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने दो रोजा दौरे में इस मुल्क के अपने हम मनसब के साथ दो तरफा बातचीत की। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दिगर बुनियादी शोबों में तआवुन को मुस्तहकम बनाने से मुतल्लिक 17 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया की सूरत हाल और आलमी सतह पर तवानाई की सप्लाई, नेस तजारती नेटवर्क्स पर इसके असरात पर गहरी तशवीश का भी इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक नई रफ्तार पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने मुस्तकबिल में अपने ताल्लुकात को फरोग देने और आबी वसायल, सेमीकंडक्टर्स, इख्तिरा, दिफा, पायदारी और नखलो हमल के शोबों में तआवुन को वसी करने के बारे में एक खाका तैयार किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में आज स्वीडन के शहर गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं, जहां उनका खैर मकदम गोथेनबर्ग लैंडवेटर हवाई अड्डे पर स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म वुल्फ क्रिस्टर्सन ने किया। जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म का तैयारा स्वीडन की फजाई हदूद में दाखिल हुआ, मेहमान खसूसी के तौर पर उनके हवाई जहाज की मुहाफजत स्वीडन के ग्रिपन

0: लड़ाई जेट तैयार जेट तैयारों ने शुरू कर दी। वजीर आजम मोदी को हवाई अड्डे पर बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और उनका इस्तकबाल भारतीय बिरादरी के अरकान ने बड़ी गर्मजोशी से किया। इस दौरे की खासियत दो वजरा आजम की एक मुश्तरका खिताब है जो वो सनद से मुतालिक यूरोपीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस से करेंगे। सीओज की इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जनाब मोदी के साथ यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वोन देर लेयन शामिल रहेंगी। गोदनबर्ग से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वफद की सतह की बातचीत कर रहे हैं। तवक्को है कि दोनों रहनुमा तिजारत एआई स्टार्टअप समेत मुख्तलिफ शोबों में तबादले ख्याल करेंगे। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीशन की क्यादत में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में हलफ लेगी। कांग्रेस ने इस महीने की 14 तारीख को वी डी सतीशन को केरलम का अगला वजीर आला नामजद किया था, जिसके साथ ही 10 दिन से जारी सियासी ड्रामा और गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म हो गई। कांग्रेस की क्यादत वाले मुत्तहदा जमहूरी महाज यूडीएफ ने केरलम असेंबली इंतखाबात में 2/3 से ज्यादा अक्सरियत हासिल की। तहम मुख्तलिफ ग्रुपों की लॉबिंग और कारकुनों के एहतजाज के बायस मस्कूरा इत्तेहाद वजीर आला के नाम पर फैसला नहीं कर पा रहा था। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: कांग्रेस के सीनियर लीडर वी डी सतीशन कल केरलम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। उनके हमरा 20 दिगर वोदरा भी हलफ लेंगे। नामजद वजीर आला वी डी सतीशन ने आज शाम गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और उन्हें वोदरा की फेहरिस्त पेश की। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 अफराद के बैठने के इंतजाम समेत वसी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज गुजरात के शहर गांधीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID के इख्तिरा और इब्तदाई कारोबार के मरकज का इफ्तिताह किया। जनाब शाह ने इस मौके पर इस इदारे की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा इदारा है जो तख्लीकी सलाहियत को कारोबार से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि NID जैसे इदारे नौजवानों को इख्तिरा और पेशेवराना तरक्की के मौजूं प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं।
3: NID एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, इन तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब NID की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
1: मरकजी वजीर पीयूष गोयल भी इस मौके पर मौजूद थे। जनाब शाह गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने आज गांधीनगर में मदर डेयरी के 5 लाख लीटर की गुंजाइश वाले 9 तामीर शुदा प्लांट का भी इफ्तिताह किया। अहमदाबाद में उन्होंने मिलियन माइंड्स टेक पार्क और ग्लोबल कैपेबिलिटी मरकज कैंपस का भी इफ्तिताह किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को साल 2026 के लिए पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दाखिला ने कहा है कि सदर जमहूरिया राष्ट्रपति भवन में मुनक़िद होने वाली पहली शहरी एजाज से मुतअल्लिक तकरीब के दौरान पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री अवार्ड्स अता करेंगी। इस साल भारत सरकार ने मजमूई तौर पर 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। रेलवे की वजारत ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पीछे के 2 डिब्बों में आग लगने के वाकये की आला सतह पर तहकीकात का हुक्म दिया है। आज सुबह तकरीबन 5:15 बजे कोटा डिवीजन के नागदा जंक्शन के करीब त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पीछे के 2 डिब्बों में आग लग गई। इन डिब्बों में एक गार्ड कोच और एक AC 3-टियर कोच शामिल था। वजारत के मुताबिक कोच में नस्ब हिफाजती निजाम फौरी तौर पर मुतहर्रिक हो गया और ट्रेन खुद बखुद रुक गई। ट्रेन के अमले ने फौरन आग से मुतासिर दोनों डिब्बों को अलग किया, जिसकी वजह से किसी भी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रेलवे के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने आज बेंगलुरु और मुंबई के दरमियान एक नई एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअल वसीले से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन से कर्नाटक और महाराष्ट्र के दरमियान रेल कनेक्टिविटी में इजाफा हुआ है। جناب ویشنو نے اس موقع پر کہا کہ جنوبی اور مشرقی کرناٹک کے لوگوں کا ایک دیرینہ مطالبہ پورا کیا جا رہا ہے. انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ امید ہے کہ بنگلورو اور ممبئی کے درمیان وندے بھارت سلیپر ٹرین جلد ہی شروع ہو جائے.

आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के जरिए दिए गए 223 रन के निशाने को हासिल करते हुए पंजाब किंग्स मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 199 रन ही बना सकी। इससे कबल बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 222 रन बनाए थे। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दिन के एक और मैच में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने जीत के लिए 194 रन का निशाना रखा है। इससे कबल दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से वफ्त की सतह की बातचीत कर रहे हैं, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने दो रोजा दौरे में इस मुल्क के अपने हमनसब के साथ दो तरफा बातचीत की। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दिगर बुनियादी शोबों में तआवुन को मुस्तहकम बनाने से मुतल्लिक 17 माहदों पर दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से दो तरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिली है। कांग्रेस रहनुमा वीडी सतेसन को कल केरलम के नए वजीर आला का हलफ दिलाया जाएगा। मास्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर समेत 4 अफराद हलाक हो गए। भारत के महकमे मौसमियात ने शुमाली भारत में कल शदीद गर्मी की पेशगोई की है। और बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वाली शेट्टी ने बाउजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में चांदी का तमगा जीता। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। इससे कबल बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 222 रन बनाए थे। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

अम्मा इस्तेहजा इनके दरहाली के सिनेमा यहीन गांधी या नजरियातश राबे शिकले बस्ते बंदी ये मुजद्दद बीमारी रे नुमाइश गुजाशते बाशद वो तालीमाते वेरा अस्तरीगे फिल्मी बेना में लगे रहो मुन्ना भाई बाजिंदगी ये मर्दों में उमूम मुर्तबी साखते बाशद अम्मा खुद महात्मा गांधी सिनेमा रा हमानंद बदी मुतारादिफ़े कुमारबाजी आज़ब दवानी तलगहमी कर गांधी जी दरसाले 1920 तो हफ्त नजरियात नारजाइत खुदरा दर किबाल सिनेमा इबरादाश हंगामी के कुमेत फिल्म परदादी ये हिंद हमराबा यकसीरी असवालात अजवैत हजारमूद के नजरियातीश राजे बे सिनेमा ये हिंदी मुनअकिस साधन गांधी जी आन पुरसिश नामे रा बा इधारात नामुसाई दे खुद उन्वान बे रई से कुमीते तीर रंगा चारियार औदद्दात के हाकी दानबूत के नजरियातश राजे बे सिनेमा हमानंद टेक्नोलॉजी ये बेतबेकार मनफी मी बशत नामे आश मौर्रिख दवाजदहों में माह नवाम रे साल 1920 तो हफ्त हाकी दानबूत के हत्ता अगर हम सूये नजर दाश्तम मन बराये पासु खे सुआलातेतान मुनासिब नबूदम चुनके हीच वक्त बे सिनेमाई न रफ्तम वो हत्ता बराये बी गाने गान कारी के आन अंजाम दादे वो दारद अंजाम मी देहद मुनासिर ब खुदे शान मी बशद वो हत्ता अगर कम तरीन खूबी रा अंजाम दादे बाशद हनूज बे इस बात न रसी दिया।

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

ही पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ स्वीडन के चुनिंदा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और स्वीडन लोकतंत्र, पारदर्शिता, नवाचार और स्थिरता के साझा मूल्यों से जुड़े हैं। उन्होंने भारत के विकास में स्वीडिश कंपनियों के लंबे समय से चले आ रहे योगदान का स्वागत किया और अनुसंधान, नवाचार, हरित बदलाव और विनिर्माण के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग को प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जैसी पहलों के तहत और स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा, सेमीकंडक्टर तथा उन्नत विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का लाभ उठाते हुए भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाया जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूँ। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से भी सम्मानित किया। यह प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे थे। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन

0: और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में कल हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। यह आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की थी। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सिंतुआंग को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो ने बताया कि ये गिरफ्तारी व्यापक निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने, अंतर्राज्यीय समन्वय और निरंतर कार्रवाई के बाद संभव हुई है। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। वहीं दिल्ली में कल हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। एक अन्य मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में क्वालिफाई किया। भारत के श्रेयांसी वलिशेट्टी ने चीन के बाउजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Shri Narendra Modi, along with Her Royal Highness Crown Princess Victoria of Sweden and the Prime Minister of Sweden, His Excellency Mr. Ulf Kristersson, interacted with select Swedish CEOs today. During the interaction, PM Modi highlighted that India and Sweden are connected by shared values of democracy, transparency, innovation and sustainability, which provide a strong foundation for an ambitious and forward-looking economic partnership. He underlined that the India-Sweden partnership today is not merely an economic relationship, but a partnership of ideas, technology, innovation and co-creation.
2: Sweden-India technology and AI corridor ko majboot karne ke liye thos initiatives par kaam karenge. Dono deshon ke startups aur research ecosystems ke beech sampark badhane ke liye हम इंडिया स्वीडन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने जा रहे हैं।
1: He welcomed the long-standing contribution of Swedish companies to India's growth and encouraged deeper collaboration in research, innovation, green transition and manufacturing. PM highlighted India's rapid economic transformation driven by reform, strong domestic demand, digital public infrastructure, manufacturing expansion and next-generation infrastructure development. He invited Swedish companies to enhance their presence in India under initiatives such as Make in India, the National Green Hydrogen Mission, the National Critical Mineral Mission, and expanding opportunities in sectors including clean energy, defense, semiconductors, and advanced manufacturing. The discussions also focused on strengthening cooperation in resilient supply chains, green transition, sustainable mobility, life sciences, and digital technologies. PM Modi underlined the importance of combining Sweden's strengths in innovation and sustainability with India's scale, talent and growth momentum to co-create solutions for the 21st century. The new Keralam government led by Congress leader V.D. Satheesan will be sworn in Thiruvananthapuram today. Congress had announced Satheesan as the next Chief Minister of Keralam on the 14th of this month, putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days. The Congress-led United Democratic Front secured a more than two-thirds majority in the Keralam Assembly elections. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has inaugurated and laid the foundation stone for development works worth over 700 crore rupees in Gandhinagar, Gujarat. Mr. Shah, who is on a two-day visit to the state, launched projects worth over 600 crore rupees of Gandhinagar Municipal Corporation yesterday. He also inaugurated a newly built milk processing plant.

0: plant of Madhur Dairy in the city, built at a cost of around 128 crore rupees. Earlier in the day, Mr. Shah inaugurated the Innovation and Incubation Center at the National Institute of Design in Gandhinagar. Union Minister of New and Renewable Energy Pralhad Joshi said India has now successfully managed a record peak power demand of 256.4 gigawatt in a single day. In a conversation with the private English news daily, Mr. Joshi said nearly 33% of the power demand met through renewable energy sources. He said India's power infrastructure has become stronger, more resilient and future ready. The minister added that this transformation reflects the rapid expansion of energy capacity, grid strengthening and the growing contribution of clean energy in powering country's growth journey. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has allocated portfolios to the newly inducted and promoted ministers of his cabinet. The portfolio distribution follows the second cabinet expansion of the government, which took place on May 10. During the reshuffle, two cabinet ministers and four ministers of state were inducted into the government, while two ministers of state were elevated to ministers of state with independent charge. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Rajasthan Royals by 5 wickets at Arun Jaitley Stadium, Delhi tonight. Chasing a target of 194 runs set by Rajasthan Royals, Delhi Capitals were 197 for 5 in 19.2 overs. KL Rahul was the top scorer with 56 runs. For Rajasthan Royals, Jofra Archer and Brijesh Sharma scalped 2 wickets each. Earlier, Delhi Capitals won the toss and elected to field. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है 1:10 और 5 सेकंड। साथियों, ये समय होता है बहुत ही सुंदर खूबसूरत कार्यक्रम का। जी हाँ, गीत सुनहरे। गीत सुनहरे कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार। तो साथियों, गीत सुनहरे, आखिरकार गीत सुनहरे क्यों कहा जाता है? गीत सुनहरे, जी हाँ, एक से एक बेहतरीन, लाजवाब, बेहद खूबसूरत रचनाएं होती हैं। एक से एक गीतकार, संगीतकार और न जाने जितने भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो भी कार्य होते हैं गीत संगीत के, फिल्मों के, वाकई बहुत ही सुंदर सुंदर बेहतरीन लाजवाब गीत होते हैं। ऐसी रचनाएं होती हैं जो बहुत ही कम साथियों ने सुनी होगी। जी हाँ, तो आज की जनरेशन शायद उन गानों को पसंद नहीं करती हैं, लेकिन जो जनरेशन रही है हमारे या आपके जैसे जो जनरेशन रही है, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीत सुनना पसंद करते हैं, हमेशा गोल्डन एरा। जी हाँ दोस्तों, गोल्डन एरा यानी कि गीत सुनहरे। तभी तो कहा जाता है गीत सुनहरे फिल्म संगीत। जी हाँ, ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ गोल्डन एरा। तो आज सबसे पहले एक बेहतरीन खूबसूरत गीत आ रहा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार गीत से शुरुआत कर रहे हैं और ये गीत वाकई बहुत ही लाजवाब है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तलत महमूद साहब की। तलत महमूद साहब की आवाज में सुंदर बेहतरीन खूबसूरत रचना आ रही है, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, फिल्म दाग से। दाग फिल्म 1952 प्रदर्शित फिल्म रही है और संगीत शंकर जय किशन का है। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत सुनहरे की पहली और खूबसूरत रचना।

तो वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत आए मेरे दिल कहीं और चल, दिल की दुनिया से दिल भर गया। जी हाँ दोस्तों, एक और गीत आ रहा है बहुत ही शानदार बेहतरीन, वो दिन याद करो, फिल्म हमराही से। हमराही फिल्म 1945 प्रदर्शित फिल्म रही है और संगीत से सजाया है इस खूबसूरत गीत को शंकर जयकिशन ने, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में शानदार रचना।

पर है। हे

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, प्रोग्राम चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है गीत सुनहरे। गीत सुनहरे के अंत यो अभी जो रचना आने वाली है वो बहुत ही सुंदर है, बेहद खूबसूरत है, बेताब है दिल। जी हाँ, ये टाइटल है और फिल्म है दर्द। दर्द फिल्म 1947 प्रदर्शित फिल्म रही है। सुरैया और उमा देवी की आवाज में सुंदर बेहतरीन रचना है। गीतकार शकील बदायूनी और नौशाद का संगीत है। तो आइए सुनते हैं ये सुंदर बेहतरीन रचना।

0: तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: बढ़ता चल बढ़ता चल प्यारे लाखों में तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: रुकना नहीं तुझे रुकना नहीं घबराना कहीं तेरी है जमी तू बढ़ता चल
1: बढ़ता चल
0: तुझे रुकना नहीं तुझे रुकना नहीं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ स्वीडन के चुनिंदा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और स्वीडन लोकतंत्र, पारदर्शिता, नवाचार और स्थिरता के साझा मूल्यों से जुड़े हैं। उन्होंने भारत के विकास में स्वीडिश कंपनियों के लंबे समय से चले आ रहे योगदान का स्वागत किया और अनुसंधान, नवाचार, हरित बदलाव और विनिर्माण के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग को प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जैसी पहलों के तहत और स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा, सेमीकंडक्टर तथा उन्नत विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का लाभ उठाते हुए भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाया जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से भी सम्मानित किया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे थे। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। ये सभा आज से 23 मई तक आयोजित की जा रही है। श्री नड्डा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष के विषय वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, एक साझा जिम्मेदारी, वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया।

0: पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में कल हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। यह आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने सोशल मीडिया में चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल दो दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PAIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। वहीं दिल्ली में कल हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। एक अन्य मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Shri Narendra Modi, along with Her Royal Highness Crown Princess Victoria of Sweden and the Prime Minister of Sweden, His Excellency Mr. Ulf Kristersson, interacted with select Swedish CEOs today. During the interaction, PM Modi highlighted that India and Sweden are connected by shared values of democracy, transparency, innovation and sustainability, which provide a strong foundation for an ambitious and forward-looking economic partnership. He underlined that the India-Sweden partnership today is not merely an economic relationship, but a partnership of ideas, technology, innovation and co-creation.
2: स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड AI कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए ठोस इनिशिएटिव्स पर काम करेंगे। दोनों देशों के स्टार्टअप्स और रिसर्च इकोसिस्टम्स के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए हम इंडिया स्वीडन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने जा रहे हैं।
1: He welcomed the long-standing contribution of Swedish companies to India's growth and encouraged deeper collaboration in research, innovation, green transition and manufacturing. Prime Minister highlighted India's rapid economic transformation driven by reform, strong domestic demand, digital public infrastructure, manufacturing expansion and next-generation infrastructure development. He invited Swedish companies to enhance their presence in India under initiatives such as Make in India, the National Green Hydrogen Mission, the National Critical Mineral Mission, and expanding opportunities in sectors including clean energy, defense, semiconductors, and advanced manufacturing. The discussions also focused on strengthening cooperation in resilient supply chains, green transition, sustainable mobility, life sciences, and digital technologies. PM Modi underlined the importance of combining Sweden's strengths in innovation and sustainability with India's scale, talent and growth momentum to co-create solutions for the 21st century. The new Keralam government led by Congress leader V.D. Satheesan will be sworn in Thiruvananthapuram today. Congress had announced Satheesan as the next Chief Minister of Keralam on the 14th of this month, putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days. The Congress-led United Democratic Front secured a more than two-thirds majority in the Keralam Assembly elections. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has inaugurated and laid the foundation stone for development works worth over 700 crore rupees in Gandhinagar, Gujarat. Mr. Shah, who is on a two-day visit to the state, launched projects worth over 600 crore rupees of Gandhinagar Municipal Corporation yesterday. He also inaugurated a newly built milk processing plant of Madhur Dairy in the city, built at a cost of around 128 crore rupees. Earlier in the day, Mr. Shah inaugurated the Innovation and Incubation Center at the National Institute of Design in Gandhinagar. UP CM Yogi Adityanath has allocated portfolios to the newly inducted and promoted ministers of his cabinet. The portfolio distribution follows the second cabinet expansion of the government, which took place on May 10. During the reshuffle, two cabinet ministers and four ministers of state were inducted into the government, while two ministers of state were elevated to ministers of state with independent charge. Union Minister for Health and Family Welfare, Jagat Prakash Nadda,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ स्वीडन के चुनिंदा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और स्वीडन लोकतंत्र, पारदर्शिता, नवाचार और स्थिरता के साथ साझा मूल्यों से जुड़े हैं। उन्होंने भारत के विकास में स्वीडिश कंपनियों के लंबे समय से चले आ रहे योगदान का स्वागत किया और अनुसंधान, नवाचार, हरित बदलाव और विनिर्माण के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग को प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जैसी पहलों के तहत भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से भी सम्मानित किया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे थे। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। ये सभा आज से 23 मई तक आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष के विषय वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, एक साझा जिम्मेदारी वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट में नए शामिल और पदोन्नत किए गए मंत्रियों को उनके विभाग आवंटित कर दिए हैं। विभागों का ये बंटवारा 10 मई को सरकार के दूसरे कैबिनेट विस्तार के बाद हुआ है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हुए हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है, इससे और खतरनाक स्थिति पैदा होगी। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है।

0: Earlier, Delhi Capitals won the toss and elected to field. Put to bat, Rajasthan Royals scored 193 for 8 in stipulated 20 overs. Dhruv Jurel was the highest scorer with 53 runs. For Delhi Capitals, Mitchell Starc took 4 wickets, for which he was adjudged player of the match. In another match earlier in the day, Royal Challengers Bengaluru defeated Punjab Kings by 23 runs in Dharamshala this evening. With this victory, Royal Challengers Bengaluru became the first team to qualify for the playoffs. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। यह साथियों एक बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से आपके पास। जी हाँ, गीत गजल। तो आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। तो शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गजल से। जी हाँ, वाकई बहुत ही प्यारी और बेमिसाल खूबसूरत गजल से शुरुआत कर रहे हैं। और ये गजल वाकई बहुत ही प्यारी है, मुझे फिर वही याद आने लगे हैं। फिल्म वेलवेट वॉइस और जो सिंगर हैं हरिहरन साहब की लाजवाब खूबसूरत आवाज़ में शानदार रचना है। और ये रचना 1999 की एल्बम से लिया गया है और गजल सिंगिंग वही है, मुझे फिर वही याद आने लगे हैं। हरिहरन साहब की बेहतरीन लाजवाब खूबसूरत आवाज़ में आज के कार्यक्रम गीत गजल की पहली और शानदार खूबसूरत गजल आ रही है। स्वागत कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा इस शानदार बेहतरीन गजल का।

जी हाँ, मुझे फिर वही याद आने लगे हैं, ज़माने को जिन्हें भूल जाने में ज़माने लगे हैं। वाकई बहुत ही सुंदर, बेहतरीन जज्बातों के साथ खूबसूरत गज़ल अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और सुंदर बेहतरीन गज़ल की ओर। जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में शानदार गज़ल पेशे खिदमत है, तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर, लाजवाब, खूबसूरत गज़ल, हम दोस्ती एहसान वफा। जी हाँ, एक एल्बम है एहसास, जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में सुंदर बेहतरीन गज़ल है, और गीत पेयम सईदी के हैं और संगीत से सजाया है कुलदीप सिंह ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार बेहतरीन गज़ल।

जी हाँ साथियों, बहुत ही गमगीन और दर्द भरी खूबसूरत गज़ल अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह सिंह की आवाज़ में। जी हाँ, हमको किसी के गम ने मारा। जी हाँ, बहुत ही सुंदर बेहतरीन गज़ल है, हमको किसी के गम ने मारा। किसने मारा तो ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बता सकते हैं ये बहुत ही सुंदर गज़ल है और एल्बम का नाम है बज़्म-ए-लैला। अरुणा लैला की आवाज़ में बहुत ही सुंदर रचना है, बहुत ही खूबसूरत गज़ल है। बज़्म-ए-लैला जो एल्बम बनी थी वो थी सन 1996 में, तो वाकई बहुत ही सुंदर। और ये गज़ल जिन्हें सजाया था इस खूबसूरत गज़ल को, वो थे निसार बाज़मी। तो ये सुनते हैं एक और शानदार बेहतरीन गज़ल।

जी हाँ साथियों, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, लाजवाब गजल रूना लैला की आवाज में। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गजल की ओर। वाकई बहुत ही सुंदर, बेहतरीन गजल आ रही है आपके पास। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत ये गजल, अपने आप में बेहद लाजवाब है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं गजल गजल का जो सिस्टम होता है, जो गजल सुनने वाले होते हैं, दिल तक, अंदर तक, रूह तक चली जाती हैं वो खुश कुछ खास बातें, कुछ सुंदर एहसास, जज्बात। जी हाँ, एक सुंदर जज्बात, खूबसूरत रचना। वाकई बहुत ही अच्छा लगता है जब गजलों का कार्यक्रम होता है, तो वाकई बेहतरीन हो जाता है। गजल की गहराई समझना चाहते हैं तो बस क्या कहें, हमेशा गजल गजल होती है। गजल में सुख दुख दर्द अपनापन खूबसूरती सब कुछ समाहित होती है। तो वाकई मैं नसीब हूं एक शायरी है, बहुत ही प्यारी, बेहतरीन, खूबसूरत शायरी के साथ ये सुंदर रचना सुनवा रहे हैं हम। तो आइए सुनते हैं एक और सुंदर और बेहद खूबसूरत गजल।

बेहतरीन लाजवाब खूबसूरत गज़ल अभी आप सुन रहे थे। मैं नसीब हूँ किसी और का, उसे मुझे मांगता कोई और है। वाकई बहुत ही सुंदर गज़ल। बढ़ते हैं एक और शानदार गज़ल की ओर, और यह गज़ल है वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन लाजवाब गज़ल। जी हाँ दोस्तों, इस गज़ल के बारे में यदि हम कहें तो वाकई बहुत ही सुंदर गज़ल है ये, और आसमान की परी। जी हाँ, आसमान की परी एक एल्बम है, कुछ दिल ने कहा, ललित्या मंशा

सिंगर हैं, और जो एल्बम आई थी कुछ दिल ने कहा, वो साल था 2013। उसी एल्बम का सुंदर बेहतरीन नगमा आ रहा है बेहतरीन गजल के रूप में, आसमान की परी। संगीत अहमद मोहम्मद हुसैन का है, आइए सुनते हैं ये शानदार बेहतरीन गजल।

बेहतरीन अनमोल लाजवाब खूबसूरत गज़ल अभी आप सुन रहे थे। वाकई बहुत ही प्यारी सी गज़ल। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गज़ल की ओर, कितनी पलकों की नमी। जी हाँ, ये टाइटल है गज़ल का। एल्बम तस्वीर से लिया गया शानदार नगमा है, अहमद और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में सुंदर बेहतरीन रचना। तस्वीर एल्बम 1995 में प्रदर्शित हुई थी और गीत तस्नीम फारूकी के हैं और संगीत से सजाया है अहमद और मोहम्मद हुसैन ने। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत

0: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है सुबह के 4 बजे। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है अर्चना।

आज के इस कार्यक्रम में हम आपको श्री कृष्ण भक्ति रचनाएं सुनवा रहे हैं। पहले प्रस्तुत है त्यागराजा की एक तेलुगु रचना, सुनिए सहगान रूप में।

अब हम आपको श्री स्वाति तिरुनाल की एक भक्ति रचना सुनवा रहे हैं, जिसे स्वर दिया है महाराजापुरम संतानम में।

0: अब आज का अर्चना कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं EIR लाइव न्यूज 24/7। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 4:21 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 मई सन 2026, सुबह के 4:54 और 2 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर में ठीक 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 5:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग, भद्रासन और अश्वत्थासन। पांच बजकर 20 मिनट पर आप सुन सकेंगे देशभक्ति गीत और 5:30 पर आप आनंद उठा सकेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। 6 बजे आप हिंदी समाचार सुनेंगे और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। सुबह 6:10 पर समय होगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। छह बजकर 40 मिनट पर आप सुन सकेंगे चिंतन। 6:45 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस बालकांड का भाग 59 और 6:55 पर समय होगा संस्कृत समाचारों का। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 7:10 पर समय होगा कार्यक्रम संगीतिका का और 7:30 पर आप सुन सकते हैं अपने मनपसंद फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम गीतों भरी का। सुबह 8 बजे समय होगा हिंदी समाचारों का और 8:15 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। 8:30 पर समय होगा उर्दू समाचारों का। 8:45 पर आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। उसके बाद 9:15 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम अवर गेस्ट और 9:30 पर समय होगा ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। श्री मोदी 2 दिन के

0: स्वीडन दौरे पर कल गोथेनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के सम्मान में रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। उन्होंने व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार, हरित परिवर्तन, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा और सुरक्षा, लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम, अनुसंधान तथा लोगों के बीच आपसी संबंधों में प्रगाढ़ करने के बारे में चर्चा की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। बहुपक्षीय मंचों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की गई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। ये सभा आज से 23 मई तक आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष के विषय वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, एक साझा जिम्मेदारी, वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। रूस में हुए ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हुए हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है, इससे और खतरनाक स्थिति पैदा होगी। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा ओरफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्ले ऑफ में बने रहने के लिए ये मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। वहीं दिल्ली में कल हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। एक अन्य मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्ले ऑफ में क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष एब्राहम। Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. Mr. Modi arrived in Gothenburg yesterday on a two-day visit to Sweden.

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। बहुत बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के समय प्रेग्नेंट लेडीज को कई सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन तक की भी नौबत आ जाती है। और आजकल तो देखते हैं कि सिजेरियन केसेस भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मेरा सभी गर्भवती महिलाओं से यह निवेदन है कि वह गर्भावस्था के दौरान भी पौष्टिक आहार का सेवन तो करें ही, अच्छी नींद लें और साथ साथ कुछ योग अभ्यास भी जरूर करें। योग अभ्यास में जैसे प्राणायाम, ध्यान के साथ साथ कुछ आप सिलेक्टिव आसन भी कर सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान आती है तो आप योग विशेषज्ञ के निर्देशन में योग अभ्यास को पहले अच्छी तरह से सीखें, फिर घर पर उसका अभ्यास करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि प्रेगनेंसी के समय आप कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे भद्रासन। आइए जानते हैं कि भद्रासन किस प्रकार प्रेगनेंसी के समय किया जा सकता है। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर पीठ और कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपने नितंब के पास रखें। हथेलियां जमीन पर टिकी होनी चाहिए। इस स्थिति को हम दंडासन कहते हैं। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाने का प्रयास करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़ लें। श्वास लेते हुए एड़ियों को अपने शरीर के बिल्कुल नजदीक लेकर आएं। जितना समीप हो सके उतना समीप लाने का प्रयास करें। यदि आपकी जंघाएं जमीन से टच नहीं हो रही हैं, जमीन से नहीं लग पा रही हैं, तो सहारे के लिए घुटनों के नीचे एक मुलायम तकिया आप रख सकते हैं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुके तथा सामान्य रूप से श्वास पर श्वास लेते रहें। इस अवस्था में आप समय को भी बढ़ा सकते हैं। यह आसन गर्भावस्था में बहुत ही लाभकारी है तथा महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से भी मुक्ति प्रदान करता है। इसके अन्य लाभ भी हो सकते हैं दोस्तों। यह आसन शरीर में दृढ़ता लाता है और मस्तिष्क को भी स्थिरता प्रदान करता है। तो आज हमने सीखा कि प्रेगनेंसी के समय आप भद्रासन किस प्रकार कर सकते हैं। पूरे दिन में कम से कम आप यह अभ्यास सुबह शाम के समय दोहरा सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं।